0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: सुधिया संक्षिप्त समाचार आपसे अदिति नमस्कार आपको
1: नमस्कार नीतूषा श्रोताओं को भी नमस्कार कॉलेवियो में शुक्रवार को गोली चलने की वारदात में के सिलसिले में पुलिस की तरफ से कल जारी किए गए एक कम्युनिके में सूचित किया गया है कि पुलिस सर्जेंट तकू को कल 11 अक्टूबर से नौकरी से इंटरडिक्ट किया गया है। इसके साथ ही घटना के वक्त स्थल पर मौजूद और तीन पुरुष पुलिस अफसरों को भी किसी ऐसे व्यक्ति की मदद न करने के लिए इंटरडिक्ट किया गया जिसकी जान खतरे में थी। पुलिस के अनुसार इस मामले को पूरी गंभीरता से और कानून का पालन करते हुए देखा जा रहा है। पुलिस की तरफ से जनता से भी मांग की जा रही है कि सोशल मीडिया पर कोई जानकारी या तस्वीर साझा करते हुए जिम्मेदारी और सतर्कता बरती जाए। एलओजी त्योमा के ऑपरेशन के सिलसिले में आज भारत से करीब 13 स्वास्थ्य विशेषज्ञों की एक टीम मॉरिशस पहुंच रही है। इनमें 7 स्पेशलिस्ट डॉक्टर और 3 तकनीकी एजेंट भी शामिल होंगे। इस डेलीगेशन का संचालन डॉक्टर राकेश झला द्वारा किया जा रहा है और ये मदद भारत की तरफ से परोपकारी स्तर पर किया जा रहा है। वकील रामा वलायदेन और आसाद पीहू अदालत में तुमा परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनका कहना है कि फिलहाल पीड़िता की सेहत उनकी प्राथमिकता है, हालांकि वे इस मामले से जुड़े पुलिस अफसर पर लगाए गए शुरुआती आरोप में बदलाव की मांग कर रहे हैं। शनिवार को वीकेंड कोर्ट में पेश किए जाने पर उस पर पोसेशन ऑफ अ फायरआर्म विद इंटेंट टू एंडेंजर लाइफ का आरोप दर्ज किया गया था। दोनों वकील चाहते हैं कि इस आरोप को कम से कम हत्या की कोशिश के आरोप में बदला जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिबूती के तट के करीब एक नौका के उलट जाने और डूबने से कम 139 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिनमें 15 बच्चे शामिल हैं, जबकि दर्जनों लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इस नौका में 305 लोग सवार थे जो जिबूती से यमन की तरफ जा रहे थे। आखिर में स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत मास्कारिंस के दक्षिण पश्चिम से एक काफ़ी ज़ोरदार एंटीसाइक्लोन हमारे इलाके की तरफ बढ़ रहा है। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान आज सुबह और दिन के दौरान आमतौर पर मौसम सुहाना रहेगा, ऊंचाइयों पर हल्की छींटे पड़ सकती हैं और रात के दौरान पूर्व से आ रहे बादलों का असर खासकर पूर्वी दक्षिणी और सेंट्रल प्लेटू वाले इलाकों पर पड़ेगा और रह रहकर बारिश होगी। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ जगहों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाल रेखा के परे समंदर चंचल रहेगा, दक्षिण पश्चिमी समंदर में 2 मीटर तक की लहरें उठेंगी। तापमान सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम 16 से 18, अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस

0: साहिली इलाकों पर न्यूनतम 20 से 22 अधिकतम 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 5:42 पर सूर्योदय हुआ, शाम को 6:10 पर सूर्यास्त होगा।
1: सेंटर 94 नॉर्थ साउथ 95.6 ईस्ट वेस्ट 98.2 यू आर लिसनिंग योर RM3 रेडियो। Center 94 North South 95.6 East West 98.2 You are listening to RM3 Radio.

ए आले याकूब, मेरे वो एहसान याद करो जो मैंने तुम पर किए थे, और उस इकरार को पूरा करो जो तुमने मुझसे किया था। मैं उस इकरार को पूरा करूंगा जो मैंने तुमसे किया था, और मुझी से डरते रहो। और जो किताब मैंने अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की है, जो तुम्हारी किताब यानी तौरात को सच्चा कहती है, उस पर ईमान लाओ और उससे मुनकिर अव्वल न बनो। और मेरी आयतों में तहरीफ करके उनके बदले थोड़ी सी कीमत यानी दुनियावी मुनफ़ात ना हासिल करो, और मुझी से खौफ रखो।

और अल्लाह के आगे झुकने वालों के साथ झुका करो। ये क्या अक्ल की बात है कि तुम लोगों को नेकी करने को कहते हो और अपने तई फरामोश किए देते हो, हालांकि तुम अल्लाह की किताब भी पढ़ते हो, क्या तुम समझते नहीं? और रंज तकलीफ में सब्र और नमाज से मदद लिया करो, और बेशक नमाज गरा है मगर उन लोगों पर गरा नहीं जो इज्ज करने वाले हैं, जो यकीन किए हुए हैं कि वो अपने परवरदिगार से मिलने वाले हैं और उसकी तरफ लौट कर जाने वाले हैं।

हमारे उन एहसानात को याद करो जब हमने तुमको कौम फिरौन से नजात बख्शी। वो लोग तुमको बड़ा दुख देते थे, तुम्हारे बेटों को तो कत्ल कर डालते थे और बेटियों को जिंदा रहने देते थे, और उसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बड़ी सख्त आजमाइश थी। और जब हमने तुम्हारे लिए समंदर को फाड़ दिया, फिर तुमको तो नजात दी और फिरौन की कौम को गर्क कर दिया, और तुम देख रहे थे।

और जब हमने मूसा से 40 रात का वादा किया तो तुमने उनके पीछे बछड़े को माबूद मुकर्रर कर लिया और तुम जुल्म कर रहे थे। फिर उसके बाद हमने तुमको माफ कर दिया ताकि तुम शुक्र करो, और जब हमने मूसा को किताब और मौजज़े इनायत किए ताकि तुम हिदायत हासिल करो।

और जब मूसा ने अपनी कौम के लोगों से कहा कि भाइयों, तुमने बछड़े को माबूद ठहराने में अपनी जानों पर जुल्म किया है, तो अपने पैदा करने वाले के आगे तौबा करो, फिर अपनों को कत्ल करो, तुम्हारे खालिक के नजदीक तुम्हारे हक में यही बेहतर है, फिर उसने तुम्हारा कसूर मुआफ कर दिया, वो बेशक बड़ा मुआफ करने वाला है, बड़ा मेहरबान है।

जब तुमने मूसा से कहा कि मूसा जब तक हम अल्लाह को सामने न देख लेंगे तुम पर ईमान नहीं लाएंगे, तो तुमको बिजली ने आ घेरा और तुम देख रहे थे। फिर मौत आ जाने के बाद हमने तुमको अस्सरे नौ जिंदा कर दिया ताकि एहसान मानो, और हमने बादल का तुम पर साया किए रखा और तुम्हारे लिए मन व सलवा उतारते रहे कि जो पाकीजा चीजें हमने तुमको अता फरमाई हैं उनको खाओ पियो, मगर तुम्हारे बुजुर्गों ने उन नेमतों की कुछ कदर न जानी और वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ते थे बल्कि अपना ही नुकसान करते थे।

और जब हमने उनसे कहा कि उस गांव में दाखिल हो जाओ और उसमें जहां से चाहो खूब खाओ पियो और देखना दरवाजे में दाखिल होना सजदा करते हुए और हित्वतुन कहना, हम तुम्हारे गुनाह मुआफ कर देंगे और नेकी करने वालों को और ज्यादा देंगे। तो जो जालिम थे उन्होंने उस लफ्ज को जिसका उनको हुक्म दिया था बदल कर उसकी जगह और लफ्ज कहना शुरू किया। बस हमने उन जालिमों पर आसमान से अजाब नाजिल किया क्योंकि नाफरमानियां किए जाते थे।

और जब मूसा ने अपनी कौम के लिए हमसे पानी मांगा तो हमने कहा कि अपनी लाठी पत्थर पर मारो। उन्होंने लाठी मारी तो उसमें से 12 चश्मे फूट निकले और तमाम लोगों ने अपना अपना घाट मालूम करके पानी पी लिया। हमने हुक्म दिया कि अल्लाह की अता फरमाई हुई रोजी खाओ और पियो और जमीन में फसाद न करते फिरना।

और जब तुमने कहा कि मूसा हमसे एक ही खाने पर सब्र नहीं हो सकता, तो अपने परवरदिगार से दुआ कीजिए कि तरकारी और ककड़ी और गेहूं और मसूर और प्याज वगैरह जो नबातात जमीन से उगती हैं हमारे लिए पैदा कर दे। उन्होंने कहा कि उम्दा चीजें छोड़कर उनके बदले नाकिस चीजें क्यों चाहते हो? अगर यही चीजें मतलूब हैं तो किसी शहर में जा उतरो, वहां जो मांगते हो मिल जाएगा। और आखिरकार जिल्लत रुस्वाई और मोहताजी और बेनवाई उनसे चिमटा दी गई और वो अल्लाह के गजब में गिरफ्तार हो गए। ये इसलिए कि वो अल्लाह की आयतों से इनकार करते थे और उसके नबियों को नाहक कत्ल कर देते थे, यानी इसलिए कि नाफर

जो लोग मुसलमान हैं या यहूदी या ईसाई या सितारा परस्त, यानी कोई शख्स किसी कौम व मजहब का हो, जो अल्लाह और रोजे कयामत पर ईमान लाएगा और अमल नेक करेगा, तो ऐसे लोगों को उनके अमाल का सिला अल्लाह के हाँ मिलेगा और कयामत के दिन उनको न किसी तरह का खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे।

और जब हमने तुमसे अहद कर लिया और कोहे तूर को तुम पर उठा खड़ा किया और हुक्म दिया कि जो किताब हमने तुमको दी है उसको जोर से पकड़े रहो और जो उसमें लिखा है उसे याद रखो ताकि अजाब से महफूज रहो, फिर तुम उसके बाद अहद से फिर गए, सो अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी मेहरबानी ना होती तो तुम खसारे में पड़ गए होते।

और तुम उन लोगों को खूब जानते हो जो तुम में से हफ्ते के दिन मछली का शिकार करने में हद से तजावुज कर गए थे, तो हमने उनसे कहा कि जलील और खार बंदर हो जाओ। और इस किस्से को उस वक्त के लोगों के लिए और जो उनके बाद आने वाले थे इबरत और परहेजगारों के लिए नसीहत बना दिया।

और जब मूसा ने अपनी कौम के लोगों से कहा कि अल्लाह तुमको हुक्म देता है कि एक बैल ज़बह करो, वो बोले क्या तुम हमसे हंसी करते हो? मूसा ने कहा कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि नादान बनूं। उन्होंने कहा कि अपने परवरदिगार से इल्तिजा कीजिए कि वो हमें ये बताए कि वो बैल किस तरह का हो। मूसा ने कहा, परवरदिगार फरमाता है कि वो बैल न तो बूढ़ा हो और न बछड़ा, बल्कि उनके दरमियान यानी जवान हो। सो जैसा तुमको हुक्म दिया गया है वैसा करो। उन्होंने कहा, अपने परवरदिगार से दरखास्त कीजिए कि हमको ये भी बता दे कि उसका रंग कैसा हो। मूसा ने कहा, परवरदिगार फरमाता है कि उसका रंग गहरा जर्द हो, कि देखने वालों के दिल को खुश कर देता हो।

उन्होंने कहा, अब के परवरदिगार से फिर दरखास्त कीजिए कि हमको बता दे कि वो और किस किस तरह का हो, क्योंकि बहुत से बैल हमें एक दूसरे के मुशाबे मालूम होते हैं और अल्लाह ने चाहा

हो उसमें किसी तरह का दाग न हो। कहने लगे, अब तुमने सब बातें दुरुस्त बता दी। गरज बड़ी मुश्किल से उन्होंने उस बैल को जबह किया जबकि वो ऐसा करने वाले लगते न थे।

0: और जब तुमने एक शख्स को कत्ल किया तो उसमें बाहम झगड़ने लगे, हालांकि जो बात तुम छुपा रहे थे अल्लाह उसको जाहिर करने वाला था। चुनाचे हमने कहा कि उस बैल का कोई सा टुकड़ा मक्तूल को मारो, इस तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदा करता है और तुमको अपनी कुदरत की निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझो।
1: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة

आज हम बात करेंगे एक ऐसे रिश्ते की जिसकी मोहब्बत में कोई गर्ज नहीं, जिसकी दुआ में कोई दिखावा नहीं और जिसकी आगोश में इंसान उम्र के किसी भी हिस्से में पहुंच जाए खुद को फिर भी बच्चा ही महसूस करता है, और वो अजीम हस्ती है माँ। माँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि अल्लाह ताला की अता करदा एक अजीम नेमत है। वो खुद थक कर भी औलाद को आराम देती है, खुद परेशान होकर भी औलाद के सामने मुस्कुराती है, और कभी कभी वो दुआएं भी मांगती है जिसका उसकी औलाद को इल्म तक नहीं होता।

मोहतरम सामीन, माँ की दुआ एक ऐसी दौलत है जिसे बाज़ार से ख़रीदा नहीं जा सकता। कितनी मर्तबा इंसान किसी मुसीबत से बच जाता है और उसे मालूम भी नहीं होता कि शायद किसी रात उसकी माँ ने उसके लिए हाथ उठाए थे। या अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत फरमाना। माँ अपनी दुआ में अपने लिए कम और अपनी औलाद के लिए ज़्यादा मांगती है। औलाद बड़ी हो जाए, दुनिया के किसी भी कोने में चली जाए, माँ के सजदों और दुआओं में उसका नाम बाकी रहता है। लिहाजा माँ की दुआओं को अपनी ज़िंदगी का ख़जाना समझें। अगर कभी माँ किसी बात पर नाराज़ हो जाए तो अपनी अना को दरमियान में ना लाएं, आगे बढ़कर हमेशा माफ़ी मांगें।

कतरा कतरा अब पानी है कुदरत का एक पयाम इसमें छुपा है रब्बे करीम का फैज़ आम जब अब्रे रहमत बरसता है खुश्क ज़मीनों पर खिल उठते हैं गुलशन महक उठता है हर मकाम मौज़े सामेन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेशुमार नेमतों में से एक ऐसी नेमत भी है जिसके बग़ैर ना ज़िंदगी का तसव्वुर मुमकिन है ना ज़मीन की शादाबी ना खेतों की हरियाली और ना ही इंसान की बखा और वो अज़ीम नेमत है पानी वो पानी जिसका एक कतरा प्यासे के लिए ज़िंदगी का पैगाम है वो पानी जो खुश्क होंठों को तरावट देता है बंजर ज़मीन को सरसब्ज़ करता है और मुरझाए हुए फूलों को नई ज़िंदगी अता करता है मौज़े सामेईन कभी हमने सोचा कि सुबह उठते ही हमें पानी मयस्सर आता है वुज़ू के लिए पानी पीने के लिए पानी खाना पकाने के लिए पानी सफाई के लिए पानी लेकिन जब यही पानी मयस्सर ना हो तो इंसान को उस नेमत की हकीकी कदर मालूम होती है आज हमारे प्यारे वतन मॉरिशस में भी पानी की किल्लत एक अहम मसला बनी हुई है ऐसी हालात में हमें अपने रब की तरफ रुजू करना चाहिए उसकी नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए और पानी के हर कतरे की हिफाजत करनी चाहिए

इसी के साथ थोड़ी ही देर में ये मजलिस इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। मोहतरम सामईन, अगर आपके माँ बाप आपके पास हैं तो आज उन्हें सिर्फ ये मत बताइए कि आप उनसे मोहब्बत करते हैं, उन्हें अपनी मोहब्बत महसूस भी करवाइए। उनके पास बैठिए, उनकी बात सुनिए, उनके लिए वक्त निकालिए और उनसे इन दुआएं लीजिए। माँ की दुआ साथ हो तो रास्ते आसान होते हैं, ये वो चिराग हैं जिससे अंधेरे भी परेशान होते हैं। अल्लाह ताला हम सब के वालदैन को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और जो इस दुनिया से रुख्सत हो चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप तमाम सामईन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुज़ार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

0: Gavri Archil Sundaram.
1: Your music, your request.

0: जय माता दी। नमस्कार भक्तों, मैं हूं आपके साथ पूनम। आप जुड़े हैं RM3 रेडियो मनोरंजन से शो भक्ति में शक्ति के साथ। भक्तों, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। 9 दिन और 9 देवियां, 9 अलग अलग शक्तियां। आज हम बात करेंगे उन तीनों सारी माओं से, कहते हैं ना, जो माँ सरस्वती, माँ काली और माँ दुर्गा से हम बहुत कुछ सीखेंगे। तो हमारे साथ चलें माँ के दरबार। जय माता दी।
1: RM3 रेडियो।

0: भक्तों, नवरात्रि मनाते क्यों हैं? कभी सोचा है आपने ये 9 दिन ही क्यों? असल में जब महिषासुर का अत्याचार बढ़ गया, सारे देवता मिले, सबकी शक्ति एक हुई और उससे जन्म हुआ माँ दुर्गा का। माँ ने 9 दिन लड़ाई की, हर दिन एक नया रूप, हर रूप में एक नई शक्ति। नवरात्रि यही याद दिलाती है, जब बहुत अंधेरा गहरा जाए, माँ सबसे ज़्यादा तेज जलती है। भक्तों, आपकी ज़िंदगी में जब भी मुश्किल का महिषासुर आए, माँ दुर्गा को याद करो, वो आपको चलना और लड़ना सिखाएगी।
1: RM3 Radio.

0: भक्तों, सबसे पहले है माँ शैलपुत्री, पहाड़ की बेटी, बैल पर सवार, स्थिरता और धैर्य की देवी। दूसरी है माँ ब्रह्मचारिणी, तप और साधना की देवी, पैदल चलती है, कठोर मेहनत का प्रतीक है। तीसरी है माँ चंद्रघंटा, माथे पे चंद्रमा, शेर पर सवार, बुराई से लड़ने की शक्ति देने वाली। ये तीनों ही माताएं स्थिरता, मेहनत और साहस का ही बल देती है। जय माता दी।
1: RM3 Radio.

0: भक्तों, कितना अच्छा लगता है जब नवरात्रि आती है, कोई भी ऐसा दिन आता है जहाँ पे हम उस ईश्वर की आराधना, प्रार्थना, पूजा पाठ, सम्मान से उनके आगे हाथ जोड़ते हैं। कहते हैं जब दुर्गा माँ हमेशा खुश होती है तो बहुत कुछ देती है, तो इसीलिए हमें नवरात्रि इसलिए मनानी चाहिए क्योंकि माँ दुर्गा प्रसन्न हो। हमारी चौथी माँ है माँ कुष्मांडा। ब्रह्मांड की रचना इन्होंने ही की, सूरज जैसी चमक, ऊर्जा और प्रकाश। पांचवी माँ है माँ स्कंद माता, कार्तिकेय की माँ, कमल पर विराजमान। माँ का प्यार और रक्षा करना बहुत ही, कहते हैं ना, हर माँ अपने बच्चे को प्यार देती है और उसकी रक्षा करती है, वही है माँ स्कंद माता। और माँ है छठी माँ कात्यानी माता, सबसे शक्तिशाली रूप, महिषासुर का वध इन्होंने ही किया, न्याय और सत्य की देवी।
1: RM3 Radio.

0: भक्तों 11:18 हो चुके हैं और हम बात कर रहे हैं माँ नौ देवियों की। सातवीं देवी है भक्तों माँ कालरात्रि। देखने में बहुत डरावनी है लेकिन वो हमारे डर को जड़ से काट देती है। वो कहती है डरना किस बात का, जब इस संसार में हमारे माता पिता हैं या वो हैं तो फिर हमें डर किस बात का। आठवीं है माँ गौरी। जब माँ पार्वती ने तप किया तो रंग उनका काला हो गया। शिव जी ने गंगा जल से उन्हें नहलाया और वो माँ गौरी बन गई। मतलब मेहनत के बाद शुद्धता आती ही है। और माँ सिद्धदात्री नौवीं माँ। नौ दिन भक्ति के बाद जब सब दे देती है और कहती है जो तुमको चाहिए वो तुम्हें मिलेगा, पर भक्ति सच्चे मन से कीजिए।
1: RM3 Radio.

यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC wishes you all a pious navratri।

0: भूल गया कि राम का रूप लेकर तुम खुद 14 बरस वनवास काट चुके हो।
1: आज का ये दिन
2: मंगलवार 13 अक्टूबर को NBC 3 पर रात के 9 बजे हिंदी फीचर फिल्म नास्ते 1983 की मूवी अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी जी पर फिल्माई गई नास्तिक।
1: पीछे मुड़ के ना देख प्यारे आगे चल।
3: RM3 रेडियो
2: टीवी प्रोग्राम्स की झलकियाँ।
4: मेरी जागी तो है ये, तू क्या जाने, यही तो एक सूट है जो हर महीने की पहली तारीख को मेरी गरीबी छुपा लेता है। एक एक पैसा बचाकर बड़ी मुश्किल से सिलवाया ये मैंने। अरे ये सूट पहनकर राजा सचमुच का राजा लगता है। हाँ।
5: रहे झोपड़ों में ख्वाब देखे महलों के।
4: अरे अच्छे दिनों के ख्वाब नहीं देखेंगे तो गरीब घुट घुट के मर जाएंगे।
2: मंगलवार 13 अक्टूबर को NBC 4 पर दिन के 3:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म मोहब्बत की आरजू 1994 की ये मूवी ऋषि कपूर और डैनी डेंजोंगपा पर फिल्माई गई मोहब्बत की आरजू।

0: RM3 Radio. Radio.
1: मैं थी आपके साथ पूनम. अब आप जुड़े रहें RM3 रेडियो मनोरंजन के साथ. अगले सोमवार फिर मिलेंगे. तब तक माँ का आशीर्वाद आप सब पर.

Center 94 North South 95.6 East West 98.2 You are listening to RM3 Radio.

音乐能跨越语言之界限，纵使语言不通，旋律仍能传递相同之情感。

人生之快乐未必在于得到几多，而在于是否懂得珍惜手中所有。

0: 你而家收听紧嘅系无理求思广播电台819频道。
1: 大厅并未因三人局促，满的或是。

हालत स्थिर लेकिन अभी भी नाजुक बताई जाती है। इस बात की पुष्टि डॉक्टर चिनिया द्वारा की गई है। उससे उसके ऑपरेशन के लिए भारतीय डॉक्टरों की एक टीम आज मॉरिशस पहुंच रही है। इस संवेदनशील मामले से देश में फैले तनाव के बीच प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने जनता से शांति बनाए रखने की मांग की है और उन्होंने कहा कि आक्रोश के कारण और कोई दुखद घटना पेश नहीं आनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने अपने पेज पर लिखा कि हमारे देश की स्थिरता एक बहुमूल्य संपत्ति है और उसे उन्हें उम्मीद है कि समस्त जनता स्थिति को और बिगड़ने से रोकने में सहयोग करेगी। एलओजी तोमा के ऑपरेशन के लिए आज दोपहर भारत से करीब 13 स्वास्थ्य विशेषज्ञों की एक टीम मॉरिशस पहुंच रही है। इनमें 7 स्पेशलिस्ट डॉक्टर और 5 टेक्निकल एजेंट शामिल हैं। भारत के सबसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में से एक किम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर राकेश झल्ला की निगरानी में ये टीम इस सर्जरी के लिए मॉरिशस आ रही है। वकील गामा वलाइदेन और असद पीरू अदालत में तुमा परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनका कहना है कि फिलहाल पीड़िता की सेहत उनकी प्राथमिकता है। हालांकि वे इस मामले से जुड़े पुलिस अफसर पर लगाए गए शुरुआती आरोप में बदलाव की मांग कर रहे हैं। शनिवार को वीकेंड कोर्ट में पेश किए जाने पर उस पर पोसेशन ऑफ अ फायरआर्म विद इंटेंट

टू एंडेंजर लाइफ का आरोप दर्ज किया गया था। दोनों वकील चाहते हैं कि इस आरोप को कम से कम हत्या की कोशिश के आरोप में बदला जाए। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में नेपाल की गोरखा इलाके में कल अचानक बाढ़ उतर आई, जिससे कई मकान और पुल बह गए। करीब 95 लोगों को बचाया जा सका है, जबकि 5 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। ये थी अब तक की खबरें। थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। रॉयल रोड पोंकोलविल न्यू अल्फोंस में 92 साल की 92 years old बीबी अफरोज जहाली जो अफरोज नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज दिन के डेढ़ बजे के बेटे जनाब नासिर जहाली के मकान रॉयल रोड पोंकोलविल न्यू अल्फोंस से उठाकर दफनाने के लिए यूनियन पार्क का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 1:30 PM। लॉट नंबर 22 मोसलम मोगू में 61 साल के 61 years old श्रीहानील रीगा जो पेथपुल नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल सुबह नौ बजे इनकी पत्नी श्रीमती धनवंती रीगा के मकान लॉट नंबर 22 मोसलमा मोगू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दाहोची की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9 AM। शोक में डूबे परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।

0: जी हाँ दोस्तों, सुहाना सफर आपका हम स्वागत करते हैं और RM3 रेडियो मनोरंजन, जहां पर हमेशा आपके लिए हम सजाए रखते हैं इन खूबसूरत गीतों का कारवां। तो उम्मीद है कि आज का ये दिन भी आपका अच्छे से शुरू हुआ है और साथ ही साथ यहां पर आपका प्यार, आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस आप हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे नंबर पर जो है 5250-6200-5250-6200। मैं हूं परी आपके साथ और आपका प्यार, आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस, गुड विशेस तो आप हम तक पहुंचा ही सकते हैं और साथ ही साथ नवरात्रि की शुभकामनाएं लेकर आए हैं सभी हमारे लिसनर्स के नाम। साथ देने के लिए शुक्रिया। RM3 रेडियो मनोरंजन, अभी के लिए समय है आपके प्रोग्राम सुहाना सफर का, अभी से लेकर दोपहर के 2 बजे तक।
1: RM3 रेडियो

0: जरा ओढ़ो हूँ। अरे मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान धड़कपन छोड़ो।
1: You're listening to RM3 Radio.

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: और अभी के लिए ये जो खूबसूरत सा गीत है इसे हम डेडिकेट करना चाहते हैं माधुरी जी की ओर से उनके बेटे अश्विन के नाम. आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं और उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं. उनके मॉम डैड साथ में है विदेश एंड सभी परिवार सभी जो अपने लेकर आए हैं उनके लिए प्यार और शुभकामनाएं. इसी खूबसूरत गीत के साथ अश्विन आपको विश करेंगे वंडरफुल वंडरफुल बर्थडे. शुभकामनाओं की बहार यहाँ पर तो लगी हुई है पूरे परिवार के साथ एंड ऑफ कोर्स जितने भी लिसनर्स हमारा साथ दे रहे हैं जानते हैं आप सुहाना सफर प्रोग्राम अभी से लेकर दोपहर के 2 बजे तक राइट हियर ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन. लता जी की आवाज़ रखवाला फिल्म से लिया हुआ ये गाना स्पेशली गोज आउट फॉर अश्विन विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे.

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: और चलिए दोस्तों, यहाँ पर 12:40 हो रहे हैं, दोपहर का वक्त, मंडे आफ्टरनून, नवरात्रि का दूसरा दिन। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सभी लिसनर्स, स्पेशली वाकवा से गोविंद रघुनंदन जी हमारा साथ दे रहे हैं। आप इस गीत को काफ़ी गुनगुनाते हैं और इस गाने को हम डेडिकेट कर रहे हैं फॉर यू, फॉर योर ब्यूटिफुल वाइफ वेदा। इक्वली गोज आउट फॉर ऑल रघुनंदन परिवार जो इस वक्त वाकवा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके दोपहर को खास स्पेशल बनाने आपकी पसंद का ये गाना आपके नाम। और जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, है कोई गाना दिल के करीब, तो बस आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 4028070402807070, या फिर आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5250620052506200। परी का साथ दोपहर के 2 बजे तक, सुहाना सफ़र प्रोग्राम RM3 रेडियो मनोरंजन पर।

जैसे हमने कहा दोस्तों कि इट्स द गोल्डन एरा, वो दौर जहाँ पर इतने खूबसूरत गीत बने, इतने खूबसूरत यादें बनी, और हर रोज ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन 12 से लेकर 2 बजे तक कोशिश यही रहती है कि इन सुनहरी यादों को, इन खूबसूरत गीतों को हम आप तक पहुँचा सके। अभी के लिए किशोर कुमार की आवाज़ जंगल में मंगल फिल्म का ये गाना आप सभी के नाम जिस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं, साथ देने के लिए शुक्रिया। और जैसे हम हमेशा कहते हैं, रेडियो मनोरंजन को चुनने के लिए शुक्रिया। आपका प्यार, आपका साथ हमारे लिए खास एंड स्पेशल। परी का साथ दोपहर के 2 बजे तक। एंजॉय दिस वन।

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: और जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर खूबसूरत गीतों का कारवां तो जारी रहेगा. आप भी हमारा साथ निभा रहे हैं. अखिलेश इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं. डेडिकेटिंग दिस वन फॉर हिज ब्यूटीफुल वाइफ प्रिया. एंजॉय दिस वन.

और इसी गीत के साथ हम बढ़ने वाले हैं समाचारों की ओर. लौट कर आएंगे. भूलिएगा नहीं सुहाना सफर का ये खूबसूरत सा सफर यहाँ पर जारी है ऑन रेडियो मनोरंजन. परी का साथ है दोपहर के दो बजे तक. एक मुट्ठी आसमान फिल्म से लिया हुआ ये गाना वाणी जयराम और किशोर दा की आवाजें. हमारे सभी लिसनर्स के नाम, सभी दोस्तों के नाम. एंजॉय दिस वन.

0: टाइम चेक दोपहर के 1 बज रहे हैं। सभी को नमस्कार, आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। सुमायरा अकबर अली से आपको नमस्कार।
1: नमस्कार राधा। पुलिस की भारी तैनाती के तहत एलोजीटो मां को जीतू अस्पताल ले जाया गया है। एलोजीटो मां की हालत गंभीर है लेकिन स्थिर। आज भारतीय माहिर डॉक्टरों की टीम मॉरिशस पहुंच रही है। ये टीम हवाई अड्डे से सीधा अस्पताल जाएगी जहां मरीजा की स्थिति का जायजा लिया जाएगा और सर्जरी की जाएगी। एलोजी को जरूरी इलाज देने के लिए 13 डॉक्टरों की टीम आ रही है। कल रात डॉक्टर सत्यानंद सिंह देवनारायण एमबीसी के जोनल टेलीविजन में थे। उन्होंने समझाया कि एलोजीटो मां ने अब तक कोई सर्जरी नहीं करवाई है। गर्मी की शुरुआत से बहुत से लोग एयर कंडीशनर खरीदने लगे हैं। इससे बिजली पर निर्भरता बढ़ने लगी है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का अनुमान है कि इस मौसम गर्मा में 600 मेगावाट बिजली की मांग होगी। इसलिए सीईबी इस महीने से एक चेतना अभियान की लॉन्चिंग करेगी। उपभोक्ताओं से मांग है कि वो बिजली को ज़ाया ना करें। सगायतों जुवाल के निधन को 30 से ज़्यादा साल हो गए हैं। पीएमएसडी के इस राजनीतिज्ञ, पूर्व वकील और कूटनीतिक की वजह से देश के इतिहास में काफ़ी योगदान रहा है। ख़ासतौर पर उनके आर्थिक विजन और जनता से उनकी कुर्बत के जरिए आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विदेश में सूडान के सरहदी इलाके में हवाई हमले किए गए और कम से कम 72 नागरिकों की मौत हुई है। इमरजेंसी वकीलों का कहना है कि खार्तूम में ये हमले किए गए। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। मोसलमान सियाई मोटगू में 61 साल के 61 years old श्री अनिल रीगा जो पेट्रोल के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल 9 बजे इनकी पत्नी धनवंती रीगा के घर मोगू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दागुची की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9 AM। गांधी रोड लालमाची में 92 साल की 92 years old श्रीमती लीलावती कोलीचन पैदाइशी नाम रामेश्वर की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल 10 बजे इनके घर गांधी रोड लालमाची से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी रोड लालमाची की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। मिशन क्रॉस रोड लालमाची में

0: 64 साल के 64 years old श्री जयराज सुखवरिया, श्री जयराज सुखवरिया जो विवेक के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं अर्थी कल नौ बजे इनकी पत्नी कविता सुखवरिया के घर मिशन क्रॉस रोड लालमाची से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावांचुआ की शमशान भूमि दी जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 9 एम टागो स्ट्रीट खुशनुआ में 74 साल के 74 ईयर्स ओल्ड श्री तिमल सिंह लुबिन जो कुमार और फ्यूअल में काम करते थे की मृत्यु हो गई हैं अर्थी कल 11 बजे के बेटे विशाल लुबिन के घर टैगो स्ट्रीट खुशनुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए खुशनुआ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 11 एम शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है
1: You're listening to RM3 Radio, Mana.

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ।

लेकिन आपके और हमारे बीच में नो पर्दा बिकॉज आप तो हमारे डियर लिसनर्स हैं और आपकी जो ख्वाहिश है वो सर आंखों पर अभी के लिए तो हमारे लिसनर्स हमारा साथ दे रहे हैं हमारे डियरेस्ट दारिन श्वेता रविश प्रीशा लवशा और अपारू परिवार साथ देने आ गए हैं फ्रॉम होशनुआ सो आपका हम स्वागत करते हैं ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन अगला गीत आपके नाम और बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यार से हमारे साथ जुड़ने के लिए साथ ही मनीता जी आई हैं अपने आप प्यार लेकर ऑल द वे फ्रॉम फ्रांस और कहती हैं गाना हो जाए प्यारी माँ सुमंती और आपकी बहनें हैं आरती सचिता बबिता रेखा भाई सत्यम भाभी उषा दीक्षा शिक्षा सलीशा और अनिकेत है अक्षय ऋषभ ऋतिक सभी इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं एंड फ्रॉम फ्रांस मनीता जी अपने पूरे परिवार के लिए लेकर आई हैं बहुत सारा प्यार विद दिस नेक्स्ट ट्रैक सो ये गाना स्पेशली फॉर यू मनीता जी और आपकी ओर से इसे डेडिकेट कर रहे हैं आपके पूरे परिवार के नाम फिल्म आनंद आश्रम किशोरदा की आवाज़ एंजॉय दिस वन

You're listening to RM3 Radio Manoranjan. और चलिए यहाँ पर तालिब जी हमारा साथ दे रहे हैं, आप डेडिकेट कर रहे हैं गाना अपनी प्यारी सी पत्नी शहजादे के नाम, और कहते हैं सभी लिसनर्स के लिए ये खूबसूरत सा गीत, चलते चलते ज़िंदगी तो कट ही जाती है लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं जो इन ज़िंदगी को और भी खूबसूरत बनाते हैं। अभी के लिए ये प्यारा सा गाना आप दोनों के नाम और साथ ही साथ हमें मैसेज पहुंचाने के लिए तालिब जी आपका धन्यवाद। साथ दे रहे हैं आप और आपकी प्यारी सी पत्नी शहजादे, उनके लिए ये हम गाना डेडिकेट कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर हमारे लिसनर्स जो हमारा साथ देते हैं हमेशा ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन सुहाना सफर प्रोग्राम, मैं हूं परी आपके साथ दोपहर के 2 बजे तक। आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5250620005250620 पर आपका इन।

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: और चलिए यहाँ पर अरविंद जी हमारा साथ दे रहे हैं आप पोर्ट लुइस से और इस गाने को आप डेडिकेट करना चाहते हैं अपने तमाम दोस्तों के नाम. अविनाश है साथ दे रहे हैं कवि और आपके प्यारे दोस्त सीतोहल. सभी के लिए इस खास गीत को आप डेडिकेट कर रहे हैं और सभी दोस्तों के नाम, सभी सुनने वालों के नाम. तो किशोरदा की आवाज़ पिक्चराइज्ड ऑन द एवरग्रीन स्टार ऑफ बॉलीवुड अमिताभ बच्चन, जिन्होंने कल अपना जन्मदिन मनाया और कहते हैं

हैं कि पूरा जो आपका फ्रेंड सर्कल है बिग फैन ऑफ अमिताभ बच्चन तो चलिए ये गाना आपकी ओर से आपके तमाम दोस्तों के नाम फॉर ऑल द फैंस ऑफ बिग बी एंड हमारे सभी लिसनर्स के लिए इसी गीत के साथ समय हो चला है कि मैं परी लूं आपसे अलविदा और आपसे मुलाकात होगी कल इसी टाइम 12 से लेकर 2 बजे तक तब तक के लिए साथ निभाते रहिए ऑन आरएम3 रेडियो मनोरंजन एंड हैव अ ग्रेट टाइम

Yeah.

Center 94 North South 95.6 East West 98.2 You are listening to RM3 Radio.

0: मौसम गर्मा में 600 मेगावाट बिजली की मांग होगी, इसलिए सीबी इस महीने से एक चेतना अभियान की लॉन्चिंग करेगी। उपभोक्ताओं से मांग है कि वो बिजली को जाया ना करें। बेल एंड रिमांड कोर्ट ने मामी गवातुमांग को जमानत पर रिहा करने की मांग को ठुकराया है। मैजिस्ट्रेट का कहना है कि सबूतों में हेराफेरी, गवाहों के साथ बातचीत या फरार होने के खतरे हैं। मामले को अगले 3 नवंबर के लिए स्थगित किया गया। मामी गवातुमांग वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत के सामने पेश हुए। उनके वकील सुप्रीम अदालत में इस रूलिंग के खिलाफ अपील करेंगे। 30 से ज़्यादा साल बीत चुके हैं जब से स्वर्गीय तोंजुवाल का निधन हो गया है। वकील, राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ की हैसियत से उन्होंने देश के इतिहास में बड़ा योगदान दिया है, ख़ासतौर पर उनके आर्थिक विजन और जनता के साथ उनकी कुर्बत के चलते। इस संदर्भ में उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। विदेश में सूडान के सरहदी इलाके में हवाई हमले किए गए, कम से कम 72 नागरिकों की मौत हुई। इमरजेंसी वकीलों का कहना है कि कार्टूम में, यानी सूडान के नील नदी के पास खान स्थलों को निशाना बनाया गया। अब तक ना इजिप्शियन सरकार ना ही सूडानी सरकार ने टिप्पणी की है। तो अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। नमस्कार और आदाब।
1: Your news on NBC Play and NBC.mu.
2: संस्कृति की बातें,
3: नमस्कार। संस्कृति की बातें कार्यक्रम में मैं किरण आप सभी का स्वागत करती हूं। इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है एमबीसी और आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड के सहयोग से। और आज हम संस्कृति की बातें के अंतर्गत उस विषय पर बात करेंगे जिसका एक धुन सा छाया हुआ है आज सिर्फ मॉरिशस भर में नहीं बल्कि पूरे विश्व में। मैं बात कर रही हूँ नवरात्रि की। नवरात्रि एक पूजा ही नहीं बल्कि आज एक संस्कृति, एक धरोहर बन चुकी है। इसकी लिस्टिंग यूनेस्को के सांस्कृतिक धरोहर सूची में भी हो गई है। और इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं श्रीमती सविता तिवारी जी। सविता जी नमस्कार।
4: नमस्कार।
3: सबसे पहले तो मैं सविता जी का परिचय देना चाहूँगी। सविता जी एक लेखक हैं जो कि अंग्रेज

0: अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लिखती हैं और फिर आप संस्कृति संस्थान की सह संस्थापिका भी हैं, को फाउंडर, और आप संस्कृति को लेकर धर्म को लेकर काफ़ी लिखती आ रही हैं और हमारे प्रोग्राम में आप पिछली बार उपस्थित भी थी जहां पर हमने संस्कृत पर ज़्यादा बल दिया था। आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे सबसे पहले सविता जी कि नवरात्रि जिसके रंग में आज पूरा मॉरिशस रंगा हुआ है, यह है क्या, नवरात्रि है क्या और फिर हम क्यों नवरात्रि मनाते हैं?
1: जी, माँ जगदम्बिका को याद करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं।
0: अवश्य।
1: सिंदूरारुण विग्रहाम त्रिनयनाम माणिक्य मौली स्फुरत तारा नायक शेखरा स्मित मुखे मापी नवक्षोरुहाम पाणिभ्याम मलिपूर्ण रत्न चषकम रक्तोत्पलम विभ्रतिम सौम्यम रक्त घटस्थ रक्त चरणाम ध्यायेत परामंबिकाम। विश्व का पालन पोषण करने वाली माँ जगदम्बिका पूरे मॉरिशस भर में ही नहीं पूरे विश्व को आशीर्वाद दें, संरक्षित रखे, सुरक्षित रखे, खुशहाल रखे, इसी प्रार्थना के साथ हम नवरात्रि का ये पर्व मना रहे हैं। सिर्फ मॉरिशस में नहीं पूरे विश्व भर में,
0: पूरे विश्व में।
1: तो नवरात्रि क्यों मनाते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। हम सोचते हैं कि हमारा एक मास शुरू हुआ है, हम नवरात्रि मना रहे हैं, बट इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीज़न है।
0: जी हाँ।
1: कि हम पूरे वर्ष भर में चार नवरात्रि आती है, दो तो हम पब्लिकली मनाते हैं, दो जो नवरात्रि होती हैं उन्हें हम गुप्त नवरात्रि कहते हैं और ये विशेष मुहूर्त होते हैं, है ना, हर दो तीन महीने पे आता है। पहला चैत्र नवरात्रि आता है जो वर्ष प्रतिपदा होती है, उस टाइम पे आता है, उसे वासंतीय नवरात्रि कहते हैं क्योंकि वसंत ऋतु आ रही होती है उसमें, वो मार्च अप्रैल का समय होता है। उसके बाद आषाढ़ में गुप्त नवरात्रि आती है, जून जुलाई में। तो भारत में वर्षा का समय होता है कि वर्षा हो रही है, वर्षा जा रही है और अच्छा मौसम हो गया है कृषि के लिए। उसके बाद अब भी जो हम मना रहे हैं शारदीय नवरात्रि जो सितंबर अक्टूबर में आती है, उसके बाद जनवरी फरवरी में फिर से गुप्त नवरात्रि आती है जिसे माघ नवरात्रि कहते हैं। तो ये चारों जो नवरात्रि है ये संक्रांति काल है कि मौसम परिवर्तन हो रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जब मौसम परिवर्तन हो तो डॉक्टर भी कहता है ध्यान रखिए ये रखिए, तो हमारे शास्त्रों ने इन्हें त्यौहार बना दिया, मुहूर्त बना दिए कि आप संयम में रहें, ठीक ठाक खाएं, उठपटांग चीज़ें ना खाएं, साधना करें, ध्यान करें, पूजा पाठ करें और बॉडी आपकी एक स्पिरिचुअल लेवल पर रहे, तो वो ज़्यादा जो बाहर की एनर्जीज़ हैं उससे इफ़ेक्ट नहीं होती हैं।
0: जी हाँ।
1: तो ये बहुत स्पेशल मुहूर्त भी है ये साधना के
0: और अनुशासन का।
1: अनुशासन में रहें, भोजन का अनुशासन, ध्यान का, पूजा पाठ का, ये सब अनुशासन रहें, तो इसीलिए नवरात्रि मनाई जाती है।
0: जी हाँ। और जब नवरात्रि की बात हो रही है, विशेष रूप से जब दुर्गा पूजा की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो मॉरिशस में एक परंपरा सी स्थापित हो गई है कि दुर्गा नवमी के शुरुआत से अंत तक हम अलग अलग रंग के कपड़े पहनते हैं, हर एक दिन का एक विशेष रंग होता है और इस तरह से इस रंग को शायद दुर्गा के जो नवरूप हैं उससे भी जोड़कर हम इन रंगों का पालन करते हैं। हम चाहेंगे कि आप दुर्गा के जो नवरूप हैं उन नौ रूपों के बारे में कहें कि क्यों नव रूप निर्धारित किए गए हैं और इसका हमारे साथ क्या संबंध है, किस तरह से हम इन नव रूपों से जुड़ सकते हैं।
1: जी, तो नौ रूप ऐसे हैं, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति, चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। तो ये नौ रूप हैं माता जी के। पहला स्वरूप है शैलपुत्री की, शैल की पुत्री हैं। इसे हम देखें तो हमारे जैसे किसी भी महिला या किसी भी जीव के जो हम इंसान हैं उसके जीवन से आप जोड़ के देख सकते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो उसे मम्मी पापा के नाम से जाना जाता है कि ये उनका बच्चा है। तो वैसे ही माता जी का शैलपुत्री स्वरूप है, वो एक बच्ची हैं और उसे उनके पिताजी शैल वाहन जो हैं उनके नाम से जाना जाता है कि ये शैल की पुत्री हैं। और फिर दूसरा स्वरूप आता है ब्रह्मचारिणी, अब उनकी एजुकेशन स्टार्ट हो गई है, ब्रह्मचार्य में उन्होंने प्रवेश किया है। आप आइकनोग्राफी भी देखेंगे उसकी, तो उनके हाथ में कमंडल है और माला है
0: जी।
1: तो वो पढ़ने वाला बच्चा है, अभी वो जा रहा है अपने ध्येय की तरफ। तो आज की हमारी जितनी भी बच्चियाँ हैं वो सारी ब्रह्मचारिणी स्वरूप में है, जितने भी स्कूलों में पढ़ रहे हैं बच्चे ब्रह्मचारिणी के बाद कुछ

0: मांडा स्वरूप है, कुछ मांडा का स्वरूप देखेंगे तो बहुत सारे उनके पास हथियार हैं, और नहीं उसके बाद चंद्रघंटा है तीसरे नंबर पे जो माता जी का स्वरूप है, चंद्रघंटा, उनके चंद्रमा है उनके उस पे माथे पे, और उनके पास सारे हथियार हैं। मतलब अब वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गई है, उन्होंने जो एजुकेशन के माध्यम से कर्म के माध्यम से अचीव करना था वो अचीव कर लिए हैं सारे हथियार और वो सब, और वो वैवाहिक एक स्त्री के रूप में वहाँ स्थापित है चंद्रघंटा। फिर कुष्मांडा कि वो अब एक लाइफ के नेक्स्ट स्टेज में जा रही हैं जहाँ वो एक गर्भवती स्त्री के रूप में है, एंड जो कुष्मांडा है वो उन्होंने अपने आप अंदर धारण किया है इस पूरे विश्व को। कुष्मांडा के बाद आती है स्कंद माता कि अब उनका पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ है, उनके पुत्र है गोदी में कार्तिकेय बैठे हुए हैं, और इस स्वरूप की विशेषता ये है कि उनके हाथ में कोई भी हथियार नहीं है। उन्होंने सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जितना भी उन्होंने डिग्री या करियर उन्होंने लिया है उन्होंने छोड़ दिया है इस समय सारा बच्चे के लालन पोषण के लिए। फिर वो फिर से नेक्स्ट लेवल आ जाता है, एक महिला का आप जीवन देखें तो इसी तरह चलता है ना। फिर वो कात्यायनी स्वरूप में आ जाती हैं जहाँ वो योद्धा के रूप में है, कात्यायन ऋषि की पुत्री के रूप में पैदा हुई हैं वो संहार करने के लिए, तो अब वो एक नेक्स्ट लेवल पे है। जैसे बच्चा हो गया वापस से वो करियर में जा रही हैं अपने, और बहुत आक्रोशित हैं वो कि समाज में जो हो रहा है, एक मैच्योर लेडी है, शी इज़ अ मैच्योर लेडी, और जो समाज में हो रहा है उसके प्रति वो आक्रोशित है कि ये गलत हो रहा है इसका मुझे नाश करना चाहिए। और उसके बाद वो और भी ज़्यादा विकराल स्वरूप रखती हैं कालरात्रि, सप्तमम कालरात्रि की, अब तो इसका जितनी बुराइयाँ हैं समाज में उसका नाश करने के लिए वो कालरात्रि बनी, और जब सब नाश हो जाता है तब वो महागौरी बनती हैं कि अब तो सब शांति है, पीसफुल है, अब मैं महागौरी रूप में आ गई हूँ। महागौरी रूप में भी उनके पास हथियार कम है, वो ज़्यादा उसमें नहीं है, वाइट कपड़े, अच्छे से सुंदर से शांत पीसफुल लाइफ का एक स्टेज है उनका। फिर सिद्धिदात्री है जब वो सबको सिद्धि दे रही हैं, सबको वरदान स्वरूप दे रही हैं। तो ये नौ स्वरूप हैं माता जी के, नौ दुर्गा स्वरूप।
1: और जिस तरह से अभी सविता जी ने हमें स्पष्टीकरण दिया इन नौ रूपों पर, लगता है वह कोई ऐसी देवी नहीं है जो कि दूसरी दुनिया की है, बल्कि वो हमारे ही अंदर
0: कर सकते हैं, हर व्यक्ति इससे कनेक्ट कर सकता है अपने आप को।
1: मतलब कि ये जो हर एक रूप है वो हम खुद में देख सकते हैं,
0: देख सकते हैं, और हमें इससे सीखना चाहिए कि हर एक स्टेज के बाद हमें आगे बढ़ना है, हमें एक ही जगह नहीं अटकना है, हमें इस जीवन को गतिमान बनाकर रखना है माता जी से प्रेरणा लेते हुए।
1: और जब प्रेरणा की आप बात कर रही हैं तो मतलब कि हर एक जो दिन आ रहा है, जो हर एक दुर्गा का रूप हम उसकी उपासना उसकी पूजा कर रहे हैं, हमको उन शक्तियों को खुद में जो उपस्थित हैं उनको पहचाननी चाहिए और इन शक्तियों को जागृत करनी चाहिए, और फिर संयम और नियम के साथ इन शक्तियों को हमको अपने जीवन में उतारना भी चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सच है कि बहुत सारे स्वरूप हैं माता जी के, हम नौ दुर्गा नाम से भी जानते हैं, दुर्गा नाम से भी जानते हैं, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, इन तीन रूपों के रूप में जानते हैं, 64 योगिनी के रूप में जानते हैं, तो बहुत सारे स्वरूप हैं जैसे कुल देवी के रूप में। और बहुत ज़रूरी है ये समय कि कुल देवी की अवश्य पूजा की जाए, जो वंशों के हैं, जो वंश से चले आ रहे हैं जिनके परिवार में, उनकी पूजा की जाए। जैसे कुल देवियाँ तुलजा अम्बे भवानी है, किसी की बंदी माता है, किसी की शाकंभरी है, किसी की मीनाक्षी अम्मा है, तो ये बहुत सारी कुल देवियाँ हैं, इनकी भी पूजा बहुत ज़रूरी है। फिर एक होती है इष्ट देवी की, आपकी इष्ट कौन है
1: जी।
0: तो अब जैसे मैं मेरी निजी रूप से बात करूं तो मैं ज्ञान के लिए सरस्वती की, माता जी की पूजा करती हूं, बट सर मैं ज्ञान के लिए नील सरस्वती की भी पूजा कर सकती हूं
1: जी।
0: तो वो मेरी, मतलब आपके लिए कौन सी देवी ही, विच वन इज़ वर्किंग फॉर यू, है ना। कि जैसे आज हम AI की बात करते हैं कि आपके लिए पर्सनलाइज्ड हैं सारी चीज़ें, तो वैसे हमारे शास्त्रों में भी आपके लिए पर्सनलाइज देवताओं के स्वरूप हैं कि आपके लिए कौन सा देवता, आप किससे रेजोनेट करते हैं। तो मैं ज्ञान के लिए हो सकता है तारा से रेजोनेट करूं, हो सकता है मैं काली से रेजोनेट करूं, विवेकानंद ने और उनके गुरुजी ने काली की साधना से ज्ञान प्राप्त किया था, कालिदास को काली की साधना से ज्ञान प्राप्त हुआ था, सरस्वती की साधना से नहीं। तो कोई सरस्वती के रूप में वो उनकी इष्ट देवी हैं, कोई गणपति की साधना करता है ज्ञान के लिए, नटराज की साधना कोई नृत्य के लिए करता है, कोई गणपति की भी साधना करता है नृत्य के लिए। तो किस देवता से, किस देवी से आप रेजोनेट करते हैं वो आपकी इष्ट देवी हैं।

0: कुल देवी, इष्ट देवी, ग्राम देवी, जैसे हमारी कुल देवी भारत में है, इष्ट देवी जो मैं जिन्हें मानती हूँ, ग्राम देवी मैं लालोरा में रहती हूँ, तो लालोरा की जो देवी हैं वहाँ मैं नियमित रूप से जाती ही हूँ क्योंकि मैं उस ग्राम में रह रही हूँ, उस ग्राम का संरक्षण,
1: मतलब कि काली माई,
0: हाँ काली जो काली माई है, गाँव की जो काली माई है वहाँ मैं जाती ही हूँ क्योंकि मैं जिस गाँव में रह रही हूँ उसकी संरक्षक वही है,
1: वही है
0: वो, चाहे मेरी
1: कुल देवी आशीर्वाद के तले आप
0: हाँ रहेंगे। मैं उन्हीं के संरक्षण में रह रही हूँ, तो वो मेरी कुल देवी नहीं है, मेरी इष्ट नहीं है, लेकिन मेरी ग्राम देवी है
1: जी।
0: तो ये बहुत सारे स्वरूप हैं और आप किससे कनेक्ट करते हैं और किसके प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कुल देवी के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको करना ही चाहिए, तो वैसे बहुत सारी देवियाँ हैं जो हमें आशीर्वाद देने के लिए लालायित हैं, माँ हैं वो, लालायित हैं,
1: लेकिन हमको उनसे जुड़ना है,
0: हमको उनसे जुड़ना है। और ये नवरात्रि का जो पर्व है ये जुड़ने का ही समय है, ये बहुत अच्छा मुहूर्त है कि शुद्ध मन से, आपका मन शुद्ध होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, और ये ज्ञान के लिए भी बहुत अच्छा समय है। आपने जितने भी शास्त्र अपने घर में रखे हैं, रामचरितमानस हो, भागवत हो, सप्तशती हो, आपने अगर उनको लाल कपड़े में बांध के रखा हुआ है तो खोलने का समय है, उन्हें खोलिए, पढ़िए, बहुत ही साइंटिफिक हमारे वेद हैं, उनको पढ़िए और उस पर अगर आप रिसर्च नहीं कर सकते तो पढ़िए। और संस्कृत में ये शक्ति है, मैं तो अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ाती हूँ, मैं उनको कहती हूँ कि संस्कृत में ये शक्ति है कि वो द मीनिंग कम्स टू यू,
1: ज़रूर,
0: कि आप कोई मंत्र पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब आपके पास खुद आ जाएगा, आप पढ़ते रहो उसको
1: अवश्य। और अभी जैसा कि सविता जी ने बताया कि आपके घर पर जो धर्म ग्रंथ हैं उसको खोलने, उसको पढ़ने की आवश्यकता है। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो फिर इसके लिए संस्कृति की बातें कार्यक्रम यहाँ पर मौजूद है, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपसे वो सारी जानकारियाँ, वो सारी ज्ञान की बातें बांट रहे हैं जो आपको नवरात्रि में सुनने में एक तो आनंद आएगा, फिर आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, संस्कृति की जानकारी भी बढ़ेगी। इस कार्यक्रम में जैसा कि आप देख रहे हैं हम नवरात्रि पर बात कर रहे हैं, और नवरात्रि एक बहुत बृहद विषय है। इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं, इससे पहले लेंगे एक छोटा सा विराम, हमारे साथ जुड़े रहें।

0: संस्कृति की बातें
1: संस्कृति की बातें कार्यक्रम में मैं किरण आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूं। आज हम बात कर रहे हैं नवरात्रि पर और हमारे साथ हैं श्रीमती सविता तिवारी जी। सविता जी, आप हमें ये बताइए कि नवरात्रि जो है भारत से ये मॉरिशस धरोहर के रूप में आई है और समय के साथ जैसा कि हम देख रहे हैं एक पूरा विश्व, एक गांव, एक होल वर्ल्ड इज़ वन विलेज, ये हमको समय के साथ ज़्यादा दिख रहा है। और भारत में जो कुछ भी होता है वो उसका अब सीधा असर मॉरिशस पर पड़ता है। एक समय था जब फिल्मों के माध्यम से हम देख देख कर वैसी जो प्रथाएं हैं उसको निभाते थे, लेकिन आज भारत के जो अलग अलग राज्य में जो कुछ भी होता है उसका सीधा असर मॉरिशस में पड़ता है। और नवरात्रि

0: भी पीछे नहीं है। नवरात्रि हम देखते हैं कि साल दर साल मॉरिशस में इतनी भक्ति इतनी श्रद्धा के साथ मनाई जाती हैं, और जो जो रस्में भारत में हो रही हैं उसको मॉरिशस में भी हम उतारने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें एक गरबा नृत्य भी है। यहाँ तक कि लोगों के मन में ये भी सवाल उठने लगे हैं कि गरबा मॉरिशस में कभी था नहीं, तो गरबा और नवरात्रि का क्या संबंध है? ये तो व्रत और पूजा करने का समय है, तो गरबा डांस क्यों करना चाहिए? जरा हमें ये बताइए, और साथ में ये भी बताते चलें कि भारत में वहाँ की कोलकाता राज्य में जो नवरात्रि है उसकी लिस्टिंग हुई है यूनेस्को लिस्ट में, तो जो अलग अलग राज्य है वहाँ कैसे नवरात्रि मनाते हैं?
1: जी बिल्कुल, पहला सवाल तो हम ये ले लेते हैं कि भारत के विभिन्न राज्यों में कैसे मनाते हैं नवरात्रि। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग परंपराएं हैं। जम्मू में कुंजिका पूजन की परंपरा है, विशेष रूप से कन्या पूजन किया जाता है वहाँ, और जो जगराते रखते हैं वो लोग, क्योंकि ये नवरात्रि है, रात्र का विशेष महत्व है, और रात भर जाग कर वो माता जी का भजन पूजन करने का वहाँ महत्व अधिक है।
0: नवरात्रि
1: में हाँ, वो भले ही दिन में सो जाएं लेकिन रात को वो जागते हैं, जगराते होते ही रहते हैं वहाँ, कि आज इस परिवार में कल उस परिवार में। तो मुझे लगता है कई तो लोग ऐसे हैं जो 9 दिन पूरा ही जाग लेते हैं नवरात्रि में। तो वहाँ जम्मू में ऐसा है, पंजाब में ऐसा है, फिर नीचे राजस्थान की तरफ आएंगे तो हमारी तरफ जोत लेने का अधिक महत्व है, अग्नि के रूप में हम माता जी की पूजा अधिक करते हैं।
0: हमारी तरफ मतलब आप राजस्थान से हैं?
1: जी मैं राजस्थान से हूँ, तो वहाँ जोत लेने का महत्व है। 9 दिन तक रोज सुबह जोत ली जाती है, जो गोबर होते हैं उनमें घी डाला जाता है, जोत ली जाती है, उसकी आरती की जाती है
0: जी,
1: तो उसका महत्व है। फिर गुजरात में आप देखेंगे कि गरबा का महत्व है, गरबा होता है, डांडिया होता है। उधर बंगाल में चले जाएं तो वहाँ ढाक पूजा होती है, धनुची डांस होता है, नृत्य होता है, काली की पूजा की जाती है। और फिर कई जगह ऐसा भी है जहाँ विद्यारंभ का महत्व है, जैसे केरला में है तो दशमी के दिन विद्यारंभ का उसमें महत्व माना जाता है कि उस दिन विद्यारंभ करते हैं। उत्तर प्रदेश में चले जाएं तो 9 दिन वहाँ रामलीला की जाती है, तो सब रामलीला देखने जाते हैं, विजयदशमी के साथ उसकी पूर्णता होती है। हिमाचल कुल्लू में चले जाएँ तो वहाँ पालकियाँ निकलती हैं। उत्तराखंड में हमारे उत्तराखंड मेरा ससुराल है उत्तराखंड, वहाँ चले जाएँ तो नंदा सुनंदा की पालकी निकल रही है, आज उन माता जी की पालकी निकल रही है।
0: मतलब माता जी की विवाह होने वाली है?
1: नहीं नहीं,
0: वो मायके आ रही है?
1: नहीं नहीं, उनकी यात्रा निकलती है।
0: अच्छा,
1: तो यात्रा बोलते हैं उसको, तो पालकी में माता जी भ्रमण के लिए निकलती हैं।
0: अच्छा, सबको आशीर्वाद देने के लिए।
1: हाँ, गाँव का भ्रमण करती हैं, कौन कैसा रह रहा है, तो ऐसे बोलते हैं सकुशल देखने निकलती हैं, और सब अपने अपने घर के पास उनका स्वागत करते हैं, कि फिर अपनी मनोकामना बताते हैं कि माता आप हमारे गेट पे आए हो, हमारी स्थिति आप देख लो, आप ही जानो। तो वो एक जगह से दूसरे जगह स्थान पर जाती हैं, तो अलग अलग जगहों में अलग अलग यात्रा होती है। ये तो रही भारत की बात। जब मॉरिशस में हम देखते हैं कि गरबा आ रहा है, तो आजकल तो खैर सोशल मीडिया कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा है कि यहाँ से देखा यहाँ उठा लिया गया। मुझे लगता है जब भारत में, आपने कहा कि भारत से धरोहर के रूप में यहाँ आया था, तो कई 100 साल तक संरक्षित रहा उसी ओरिजिनल रूप में,
0: हाँ।
1: है ना,
0: और बस खीर पूड़ी चढ़ाना, व्रत रखना,
1: हाँ।
0: शाकाहारी खाना खाना,
1: हाँ, तो वो ओरिजिनल रूप में यहाँ बहुत सालों तक सुरक्षित था
0: जी।
1: और भारत से जो लोग बाहर जा भी रहे थे तो मॉरिशस नहीं आ रहे थे, अमेरिका गए, USA गए पढ़ने के लिए,
0: हाँ।
1: जो बीच के 20वीं शताब्दी में जो हमने देखा, तो मॉरिशस बहुत सारे लोग नहीं आए, आए भी तो बहुत कम लोग। लेकिन अब जो सोशल मीडिया आया है तो अचानक से बाढ़ आ गई है जानकारियों की। तो जो हमारी संस्कृति है वो 2 रूप में होती है, एक तो पुरुष प्रधान जहाँ वैदिक मंत्र के साथ पूजा पाठ होता है, और एक जो महिला लेड होती है जिसमें महिला लीड करती है, वो सांस्कृतिक पक्ष होता है। तो जो ये सांस्कृतिक पक्ष है जो इन्हीं जितनी भी पूजा और सारे त्यौहार हैं इनको रंग देता है, जैसे शादी होती है वेद मंत्र होते हैं, पाठ हो रहा है, फेरा हो रहा है, वो एक पुरुष प्रधान रिचुअल है। महिला प्रधान रिचुअल क्या है, उसमें गीत गवाई
0: जी,
1: है ना, माटी कुराई, ये महिला प्रधान रिचुअल्स हैं जो उसमें रंग भरती हैं और सबको जोड़ती हैं। तो ये गरबा भी वो जो महिला प्रधान रिचुअल हैं उन्हीं के रूप में आता है कि सभी को जोड़ा जाए, समाज के जितने भी लोग हैं। जैसे गीत गवाई में भी बोलते हैं तेली तुम तेल लाओ, मालिन तुम फूल लाओ, तो समाज के जितने भी लोग थे उनको जोड़ने के लिए जो महिला प्रधान रीति बनाई गई थी, तो गरबा भी उसी में ये एक है कि सब आके नृत्य करो माता जी के चारों तरफ।
0: अमीर गरीब किसी भी वर्ग का कोई भी अंतर नहीं रह जाता।
1: तो जैसे माँ

0: होती है वो सबको बच्चों को अपने इकट्ठा करना चाहती है कि कोई छोटा बड़ा नहीं हो, तो माँ के रूप में ही वो चारों तरफ माँ के इकट्ठे होते हैं। अब मॉरिशस में क्या हो रहा है, भारत में इसको एक कई जगह देखते हैं हम कि माता जी की फ़ोटो लगी है और डांस गाने चल रहे हैं, तो मॉरिशस में भी उस चीज़ को
1: अपनाया गया,
0: अपना रहे हैं।

0: सुबह मंदिर चला जाएगा आदमी, शाम को डांस करने गरबा में चला जाएगा, लेकिन मॉरिशस में आदमी एक ही बार जा पाता है। तो आप तो या तो गरबा करने किसी कंपटीशन में चले जाओ या मंदिर चले जाओ, है ना। तो आपको एक ना एक चीज़ को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो अब आपको निर्णय करना है कि आपको वो कंपटीशन गरबा का हो रहा है उसे सेक्रीफाइस करना है या पूजा में मंदिर। हमारे मंदिर खाली हो जाएंगे इनके चक्रों में। तो मुझे लगता है कि ये जो कंपटीशन हो रहे हैं गरबा, सिर्फ गरबा पे, या तो उनको पूरा रिलीजियस करना चाहिए भगवान, क्योंकि नवदुर्गा है, बहुत ऑस्पिशियस मुहूर्त है ये, तो उसे हमें सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ जो हमारा स्पिरिचुअल बढ़ा रहे हैं, जो स्पिरिचुअल
1: अवेकनिंग,
0: हाँ, उसको हमें सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए। और जो ये गरबा सिर्फ कंपटीशन करवाते हैं, या तो ये नवरात्रि के बाद करवाइए आप, है ना,
1: या पहले,
0: हाँ, या फिर आप वीकडेज में करवा लीजिए, दिन में,
1: पूजा के समय नहीं।
0: पूजा को उसमें आप डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि मंदिरों, क्योंकि एक ही जगह जा पाएगा आदमी, है ना। भारत में तो क्या है, सुबह भी चला जाता है आदमी, शाम को भी, दोपहर में भी चला जाएगा, शाम भी चला जाएगा, वहाँ मंदिरों में पूरा दिन भीड़ रहती है और शाम को वो गरबा भी कर लेगा, लेकिन वो सुविधा हमें मॉरिशस में नहीं है। तो आप मंदिरों को खाली ना करें कि मंदिर जाने की बजाय गरबा कंपटीशन में चले गए। और जो गरबा कंपटीशन करवा रहे हैं उनसे मेरा कर जोड़ निवेदन है कि आप नवरात्रि के बाद भी कर सकते हैं उसे, है ना। हाँ, ये तो एक कल्चरल एस्पेक्ट है, उसे नवरात्रि के बाद रखिए आप। शरद पूर्णिमा आती है नवरात्रि के बाद, उस पर रखिए। शरद पूर्णिमा तो है ही रास का दिन, उस दिन रखिए। तो मुझे लगता है इस चीज़ पे हमारे जितने भी सोशो कल्चर ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्हें ध्यान देने की आवश्यकता है।
1: ज़रूर। और फिर नवरात्रि का जो अंकन हुआ है यूनेस्को की लिस्ट में, वैसे तो भारत के धीरे धीरे अलग अलग जो पर्व हैं, भारत के जो मतलब की प्रैक्टिस हैं उसकी लिस्टिंग होती आ रही है। पहले हुआ योगा का लिस्टिंग, उसके बाद रामलीला, और फिर कुंभ मेला, इधर नवरात्रि दुर्गा पूजा की लिस्टिंग हुई, पिछले साल दीपावली की भी लिस्टिंग हुई। तो जब एक ऐसे धरोहर की लिस्टिंग होती है यूनेस्को लिस्ट में, इसका ये मतलब होता है कि इसका जो संबंध है वो अब न सिर्फ धार्मिक है बल्कि एक सामाजिक और राष्ट्रीय, और सिर्फ राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय इसकी एक डायमेंशन होती है। और कहते हैं कि नवरात्रि में भारत में ख़ासतौर पर कोलकाता की दुर्गा पूजा की लिस्टिंग हुई है। कहते हैं ये सिर्फ पूजा का समय नहीं होता बल्कि जो कारीगर हैं, जो कुम्हार हैं, जो कलाकार हैं, और जो साज सज्जा करने वाले हैं नवरात्रि के लिए, उन सभी को हज़ारों की संख्या में लोगों को नौकरियां मिलती हैं। और फिर एक लगता है एक कलात्मक प्रदर्शन है जहां पर मिट्टी से गंगा की मूर्ति बनाई जाती है, फिर उनके आँख को रंगा जाता है, फिर उनकी आँख खोली जाती हैं, और ये दिन हर दिन पर एक विशेष कार्य चलता है। और इसको देखने के लिए आज पूरे विश्व से लोग कोलकाता जा रहे हैं इसको देखने के लिए। मैं चाहती हूँ कि आप दो शब्द कहें, खास तौर पर जब आप भारत से आई हैं तो किस तरह से यह न सिर्फ एक धार्मिक त्यौहार है बल्कि दूसरे धर्म के लोग भी जब पंडाल को देखते हैं, दुर्गा माँ की पंडाल, तो जरूर सिर झुकाते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। जब आप किसी भी बंगाल में, कोलकाता जाएंगे आप, तो किसी भी पंडाल में चले जाएं, आप ये गूज बम्स हुए बिना नहीं रहेंगे। आपके जितने भी चक्र हैं वो इतना हाई लेवल की एनर्जी होती है कि आपके चक्र वैसे ही जागृत हो जाते हैं, जितने ब्लॉकेज हैं सारे निकल जाते हैं। तो उसमें जाना इसीलिए भी ज़रूरी है कि कई बार हम घर पे बैठे बैठे योग कर लें, मेडिटेशन कर लें, लेकिन हम उस लेवल की एनर्जी तक नहीं पहुँच पाते जो मंदिरों में, आरतियों में, भजन में जाने पर आपको वो लेवल, एक कलेक्टिव एनर्जी मिलती है आपको। आप घर में बैठ के योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, आप अकेले जोर लगा रहे हैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाने का, वो नहीं बढ़ पाती है। लेकिन जब आप कलेक्टिव 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग और पूरे संगीत के साथ जब वो उस एनर्जी को फील करते हैं, तो वो एक कलेक्टिव एनर्जी आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग में बहुत मदद करती है। बीमारियाँ भी बहुत दूर होती हैं उससे, क्योंकि जो आपके जितने ब्लॉकेज हैं, चक्र के जितने ब्लॉकेज हैं, वो खुलते चले जाते हैं।
1: जी हाँ।
0: आप उसको फील किए बिना रह ही नहीं सकते। और ये बहुत अच्छा मौका है, मुझे लग रहा है प्रवासी भारतीय दिवस आ रहा है जनवरी में,
1: कोलकाता में वो लग रहा है,
0: कोलकाता में लग रहा है। तो मेरी तो सबसे अनुरोध है मॉरिशस में कि इस बार टिकट्स भी गवर्नमेंट बहुत सुविधाएं देती हैं, टिकट्स भी आपको बहुत कम प्राइस में मिलते हैं और वहाँ भी इतनी भारत सरकार आपको सुविधा देती है। और मॉरिशस से लगभग सबसे बड़ा डेलीगेशन होता है, पिछली बार एक दुबई से डेलीगेशन था।

0: दुबई में बहुत सारे भारतीय रहते हैं जो आ जाते हैं, जो मूल ओरिजिन भारत के हैं, वो देखा जाए तो मॉरिशस का ही डेलीगेशन सबसे बड़ा होता है। तो इस बार भी मेरा आपसे निजी अनुरोध है कि बड़ी संख्या में आप जाएं और कोलकाता का आपको एक अलग ही दुनिया, एक अलग ही भारत आपको वहाँ देखने को मिलेगा। जो नहीं गए हैं वो ज़रूर जाएं।
1: मेरे खुद नवरात्रि का ये जो वातावरण वहाँ पर बंधा होता है वो देखने की इच्छा है, क्योंकि कहते हैं कि माँ को कहते हैं होम कमिंग भी है ये, हाँ। जबकि माँ आती है और कहते हैं कि इस तरह से वहाँ पूरे राज्य को सजाया जाता है जैसे कि बेटी का स्वागत किया जाए, और यह देखने लायक होती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, भले ही आपको जनवरी में आपको नवरात्रि नहीं दिखे, लेकिन काली घाट अगर आप मंदिर जाएंगे, वहाँ काली माता का मंदिर है, तो आप नवरात्रि से कम अनुभव नहीं करेंगे।
1: अच्छा,
0: तो ये बहुत अच्छा मौका है, ज़रूर जाइए
1: जी। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, आज हमारी जो बातें हो रही हैं संस्कृति की, वह नवरात्रि पर है, और इन बातों को अभी हम थोड़ी देर में और विस्तार देंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा विराम।

0: संस्कृति की बातें
1: में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं नवरात्रि पर और हमारे साथ हैं सविता तिवारी जी। सविता जी, वैसे तो बहुत सारे ग्रंथ हैं दुर्गा देवी पर, आप हमें ज़रा उन ग्रंथों के बारे में बताएं, ख़ास तौर पर जब हमने कहा कि जो पढ़ नहीं सकते वो प्रोग्राम सुन सकते हैं। तो
2: जी बिल्कुल, तो माता जी के बहुत सारे ग्रंथ हैं। श्रीमद् देवी भागवत सबसे प्रमुख ग्रंथों में आता है, दुर्गा सप्तसती प्रमुख ग्रंथों में आता है, तो इन सबको आप पढ़ सकते हैं। और सप्तसती तो चलो फिर भी मंत्र हैं उसमें, लेकिन देवी भागवत ज़रूर पढ़ सकते हैं आप, और गीता प्रेस का पढ़ सकते हैं क्योंकि उसमें पूरा हिंदी में और इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ पूरी कहानी दी गई है। तो आपको जो आम लोग हैं जो शुरुआत करना चाहते हैं ग्रंथों की, तो वो देवी भागवत से कर सकते हैं। उसमें कहानियाँ आती हैं कि कैसे दुर्गा माता की उत्पत्ति हुई, कैसे भगवती की उत्पत्ति हुई, और बहुत सारे कल्पों में माता की उत्पत्ति की अलग अलग कहानी आती है। उनमें से एक कहानी है जो मैंने कल ही हमारे जो शिव शक्ति मंदिर लालोरा है उसमें आचार्य जी ने सुनाई है, तो मैं भी वो सुना देती हूँ।
1: ज़रूर।
2: तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक राक्षस था, दुर्गम नामक राक्षस था, उसने ब्रह्मा जी की बहुत तपस्या की और तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसके सामने प्रकट हुए, तो उसने कहा कि मैं वेद चाहता हूँ, ज्ञान का अधिकार चाहता हूँ।

0: हूँ। तो ब्रह्मा जी बड़े खुश हो गए कि चलो कोई राक्षस है और पहली बार ज्ञान मांग रहा है, वेद मांग रहा है, नहीं तो अमरता और ऐसे ही सब मांगते रहते हैं कि कोई मुझे ना मार पाए, ये तो पहला राक्षस है जो वेद मांग रहा है। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ दे दिया ब्रह्मा जी ने उसको तथास्तु। तो फिर उन्होंने, अब राक्षस तो राक्षस प्रवृत्ति का ही है, उसने वेदों पे रोक लगा दी कि अब ये मेरे ही हो गए, आज की भाषा में बोलें तो पेटेंट कर लिया कि नोबडी कैन यूज इट नाउ, अब ये मेरे हो गए हैं वेद, कोई इसे यूज नहीं कर सकता। तो अब जब वेद बंद हो
1: गए, कॉपीराइट आ गया वेद पर, जैसे कि
0: कॉपीराइट कर लिया, तो वेद पे कॉपीराइट कर लिए तो यज्ञ बंद हो गए। सबसे पहला काम यही होता है, यज्ञ बंद हो गए,
1: यज्ञ क्योंकि नहीं उच्चारण कर सकते,
0: मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकते, तो वेद मंत्र बंद हो गए और यज्ञ बंद हो गए। तो देवता वीक हो गए, क्योंकि यज्ञ का ही आहुति देवताओं के पास जाती है और जैसे
1: कि शक्ति बढ़ाती है,
0: शक्ति बढ़ाती है, और उसी में देवता आते हैं हमारे, जो वर्षा होती है इंद्र के रूप में, तो वो वर्षा नहीं हुई कई वर्षों तक, जैसे आज कल मौसम चल रहा है मॉरिशस में, काफ़ी सूखे का मौसम चल रहा है, तो ये बहुत बहुत बहुत स्थिति खराब होती गई। तो फिर लोग गए भगवान विष्णु के पास कि त्राहिमाम त्राहिमाम, तो फिर भगवान विष्णु ने कहा शिव जी के पास चलते हैं। फिर शिव जी ने कहा माता जी इसमें हमारी सहायता कर सकती हैं, हम तो हमारे बस का नहीं है। उन सब ने फिर माँ को याद किया है वहाँ कलेक्टिव रूप से, वो वहाँ कोई स्वरूप नहीं बताया गया है कि माता जी कोई नाम था, लक्ष्मी थी, दुर्गा थी, कोई नाम नहीं है, बस माँ को माँ के रूप में उन्हें वहाँ याद किया गया है। फिर वहाँ दो रूप में माता जी प्रकट हुई हैं, एक सताक्षी रूप में, 100 आँखें हैं जिसकी, नाम है सताक्षी, शत मीन्स 100, आक्षी मीन्स आँखें हैं, तो वो सताक्षी रूप में प्रकट हुई हैं और वो 100 आँखों से रोई हैं सबकी स्थिति देख के। तो वो जब 100 आँखों से रोई है तो
1: आंसू,
0: हाँ, तो फिर वो शाकंभरी रूप में प्रकट हुई है। शाकंभरी मीन्स जो ये साग सब्जी प्रकृति हैं, ये शाकंभरी स्वरूप है माता जी का। तो वो फिर आँखों से रोई हैं सताक्षी रूप में और शाकंभरी रूप में, पूरे विश्व को हरा भरा किया है उन्होंने। और फिर वो शाकंभरी रूप में उन्होंने दुर्गम का वध किया है, तो दुर्गम का वध किया तो वो हो गई दुर्गा।
1: अच्छा,
0: तो फिर वो दुर्गा माता इस तरह से हमारे बीच में प्रकट हुई हैं। तो हमें अभी दुर्गा माता, शाकंभरी, सताक्षी, इन्हीं स्वरूपों की आराधना का हमारे पास ज़रूरत है। और मॉरिशस में तो मेरे ख्याल से पहले कुल देवियाँ थी, मैंने सुना है शाकंभरी, बंदी माता, इन सब की पूजा होती थी,
1: काली माई में ज़रूर,
0: काली माई में, हाँ। लेकिन आजकल क्योंकि ये ज़्यादा बच्चे इंटरेस्ट नहीं लिया, तो अब वो सब दुर्गा माई, काली माई हो गए, सभी देवियाँ उन्हीं में समाहित हो गई,
1: हाँ।
0: और बहुत ज़्यादा याद नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पूर्वजों से, जो बुज़ुर्ग हैं, उनसे पूछें कि आपकी कुल देवी कौन है और इनकी आराधना करें। तो ये दुर्गम की बहुत एक छोटी सी कहानी है जो देवी भागवत में आती है।
1: तो जैसा कि अभी हम सुन रहे हैं, ये जो सूखे की समस्या है और फिर सूखे से निपटने के लिए लोगों को मतलब कि ऐश्वर्य शक्ति की, दिव्य शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, ये सतयुग से चला आ रहा है। और आज जब हम ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं तो आज भी ये बहुत ही रेलेवेंट है। आज भी हमको बस दिव्य शक्ति की ओर ही बढ़ना है, ताकि मॉरिशस फिर से उसके सभी जलाशय भर आए, बारिश हो, खेत खलिहान भर जाए।
0: हाँ, मॉरिशस में ऐसी समस्या नहीं होगी, हम तो यहाँ इतने सारे भक्त हैं, इतनी पूजा करते हैं। तो आचार्य जी ने कहा है कि कलकत्ता में कि इस वर्ष जो है माता जी गज वाहन के रूप, वाहन के साथ आ रही हैं, और वो जिस वर्ष गज वाहन के साथ आती हैं तो उस वर्ष वर्षा बहुत होती है।
1: अच्छा,
0: तो ये मुझे लगता है हमारे लिए एक अच्छी बात है, लेकिन ये हमें ध्यान रखने की बात है कि अभी हमने देखी है ये स्थिति, तो हमें जल संरक्षण का हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए, है ना।
1: पानी भले ही बारिश हो,
0: आए ना आए,
1: पानी को हमको बचाना,
0: बचाना ही चाहिए हमेशा। और एक कहानी और आती है, जैसे ये तो अभी शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य के समय की कहानी आती है कि तब शैव में, शाक्त में, वैष्णव लोगों में आपस में बड़ी लड़ाइयाँ होती थी कि तुम वैष्णव हो, मैं शैव,
1: कौन ज़्यादा शक्तिशाली है,
0: शक्तिशाली है। तो आदि शंकराचार्य शैव थे, वो शिव जी को मानने वाले थे, तो वो यात्रा कर रहे थे कि शक्ति कुछ नहीं होती है, खंडन करने के लिए शाक्त परम्परा का। और उस यात्रा के दौरान वो कश्मीर पहुँचते हैं और बहुत थक जाते हैं, वो उनके शिष्य उनके साथ हैं, वो पेड़ के नीचे एकदम हार

0: थक के बैठ जाते हैं कि अब नहीं चल सकता, पानी चाहिए, बहुत देर तक पानी नहीं मिलता है उन्हें। फिर एक ग्वालन जा रही होती है, मटका होता है उसके सर पे, थोड़ी दूर होती है, वो सड़क के किनारे होते हैं आदि शंकराचार्य पेड़ के नीचे, और वो रोड की तरफ होती है। तो वो शिष्य जाके भाग के कहते हैं कि माता हमारे गुरुजी को पानी दे दो, थोड़ा बहुत थक गए हैं। तो वो कहती है कि उन्हें यहीं आ जाओ। तो वो शंकराचार्य बैठे बैठे कहते हैं कि शक्ति नहीं है शरीर में माता। तो फिर वो ग्वालन कहती है उन्हें कि शक्ति के बिना एक कदम नहीं चल सकते शंकर, और शक्ति का खंडन करने आए हो
1: जी।
0: तो फिर वो दंडवत हो जाते हैं।
1: अच्छा।
0: तो उन्होंने फिर गाया है वहाँ, गतिस्त्वम गतिस्त्वम तुमेका भवानी,
1: मतलब उनको आभास होता है कि उन्होंने उनसे क्या गलती हुई है।
0: हाँ, तो वो फिर बोलते हैं, वो दंडवत हो जाते हैं वहीं। फिर वहाँ उन्होंने कश्मीर में शारदा पीठ की स्थापना की है। तो इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ हैं, मुझे तो खैर निजी रूप से ये कहानी बहुत भावुक कर देती है
1: जी। हाँ,
0: तो ये कहानियाँ पढ़नी चाहिए, कहानियाँ आपकी ज्ञान भी देती है और भक्ति भी देती है। शंकराचार्य तो कहते ही हैं इतने ज्ञानी आदमी थे वो, लेकिन अंत में उन्होंने यही कहा कि भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो ज्ञान की आवश्यकता तो हमें है ही, लेकिन भक्ति बहुत ज़रूरी है। आप ज्ञान का अहंकार हो जाता है।
1: हाँ, अगर जो सबसे गलत बात है।
0: हाँ, अगर भक्ति नहीं है तो अहंकार होगा, भक्ति होगी तो अहंकार नहीं होगा। और आपकी जो यात्रा है माता जी की तरफ पहुंचने की, गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी, वो ज्ञान और भक्ति दोनों के साथ पूर्ण होगी।
1: और फिर कहते हैं कि जो एक सबसे मशहूर जो सबसे प्रचलित कथा है दुर्गा का, वो ये कि उन्होंने महिषासुर का वध किया।
0: हाँ।
1: लेकिन महिषासुर वह अहंकार की प्रतिमा था। तो यहाँ ये जो प्रतीक है कि दुर्गा ने महिषासुर का नहीं बल्कि अहंकार का वध किया, और ये सबसे इसका प्रतीकात्मक सबसे जो बात है वह यही कि हम अपने अंदर जो अहंकार है उसका वध करें, और तब सही मायने में हम ज्ञान और भक्ति की ओर बढ़ पाएंगे।
0: सप्तसती, जो दुर्गा सप्तसती है वो 13 चैप्टर्स हैं, उसमें एक चैप्टर है महाकाली का, एक ही चैप्टर है, 13 में से एक चैप्टर महाकाली का है, जिसमें वो बहुत ही उग्र रूप में है और वो नाश करती हैं दुष्टों का। फिर दो सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, तीन चैप्टर हैं माँ लक्ष्मी पे, धन की अर्थ की देवी जो हैं। फिर उसके बाद 5 से 13 जो चैप्टर हैं वो माँ सरस्वती पे हैं, ज्ञान की देवी। बहुत लंबे चैप्टर चलते हैं ज्ञान के। तो महिषासुर की तो ये बात है कि महिषासुर रूप बदलता रहता है। आज के समय में भी हम देखें तो हमारी जो इच्छाएँ हैं वही महिषासुर है। आज ये साड़ी चाहिए, कल वॉशिंग मशीन चाहिए, कल गाड़ी चाहिए, ये महिषासुर,
1: बड़ी गाड़ी चाहिए,
0: बड़ी गाड़ी चाहिए, ये महिषासुर ही तो है, ये और क्या है। ये रूप बदलते रहते हैं, और इनको इनके ओरिजिनल रूप में, कथा ऐसी आती है कि उसको सिर्फ उसके ओरिजिनल रूप में, जो भैंसे के रूप में था, महिष के रूप में, उसी में मारा जा सकता था। तो जब आपके अंदर ये इच्छा जागृत हो रही हो, उसी समय उसे ख़त्म कर देना चाहिए। और अगर उसने रूप ले लिया, वो गाड़ी बन गई, वो साड़ी बन गई, वो घर बन गई, वो समुद्र किनारे वाला घर बन गई, या जो भी इच्छा उसने रूप ले लिया, उसके बाद उसको मारना बहुत मुश्किल है। जब इच्छा हो रही हो आपकी, वहीं पे उसे नाश करिए, कि इच्छाएं ख़त्म नहीं होंगी कभी। ये हमें मान लेना चाहिए कि जो आजकल माहौल भी बहुत ज़्यादा चल रहा है,
1: कंपटीशन भी बढ़ गया है,
0: कंपटीशन और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ, कितनी चीज़ें हो रही हैं कि इससे अच्छी महिला मुझे मिल जाए, इससे अच्छा पुरुष मुझे मिल जाए, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। आपको मतलब कहीं ना कहीं अपने मन में संतुष्टि लाने की ज़रूरत है, वो जो महिषासुर है उसका वध करने की ज़रूरत है। और जब आप उसका वध कर देंगे, कि ये मान के चलिए कभी कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जिसकी सारी इच्छाएँ पूरी हो जाए। तो आप ये नवरात्रि आत्मचिंतन का बहुत अच्छा आपके पास समय है कि इस पे विचार करिए। समाज में कितने सारे बुरे काम हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक ही व्यक्ति से शुरू होते हैं, तो वो व्यक्ति वहीं पर उसे दबा दे। हमें पूरे समाज को सुधारने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने आप को सुधारें तो ही समाज सुधर जाएगा। तो ये महिषासुर को मारने की ज़रूरत है और महिषासुर को मारने का वक्त है नवरात्रि।
1: जी हाँ, और कहते हैं कि आज के समय में जब भी कोई समस्या उत्पन्न हो जाए तो हम सब की ओर उंगली उठाते हैं, और अगर समस्या सबसे बड़ी हो तो फिर उंगली ऊपर वाले की तरफ उठा देते हैं, लेकिन ये उंगली कभी हमें हमारी तरफ इशारा नहीं करती, जबकि इसका जो मूल कारण होता है वो हम ही हैं।
0: बिल्कुल,
1: जो भी समस्या है उसके पीछे अगर किसी भी चीज़ को या किसी भी व्यक्ति को सुधारने की ज़रूरत हो तो वो खुद हम हैं। और दुर्गा नवमी के अंतर्गत हमको इन्हीं विचारों पर ध्यान करना है, और कार्यक्रम के समापन की ओर हम बढ़ चुके हैं।
0: जी।
1: सविता जी, आप अंत में दो शब्द कहेंगी दुर्गा नवमी की शुभकामना प्रकट करते हुए और अपनी इच्छाएं व्यक्त करते हुए।
0: जी, नवरात्रि जो हम दीप जलाते हैं माता जी के सामने, ये सिर्फ बाहर ना जलाएं, अंदर भी दीप जलाएं अपने, है ना, कि हम जो बाहर मंत्र पढ़ रहे हैं उनकी साधना भी करें, दोनों ज़रूरी हैं। जो बाहर हम जोर जोर से भजन गा रहे हैं वो कर रहे हैं, वो भी ज़रूरी हैं। एकांत में शांत भाव से बैठ के जप करना भी बहुत ज़रूरी है। तो माता जी बताती हैं कि मैं बहुत माँ के सामने आपको, मतलब भक्ति बोलते हैं ना, भाव के भूखे होते हैं, तो वो माँ हैं, आपको जैसा आता है, लेकिन भक्ति भाव बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि बहुत सारा आपको प्रपंच करने की आवश्यकता है,
1: या फिर दुर्गा चालीसा कंठस्थ करके बैठ जाएं, ऐसी आवश्यकता नहीं है।
0: जो आपको आता है, मैंने तो अभी एक दिन लिखा था कि एक महिला है, उसको कोई मंत्र नहीं आता था, वो लेकिन रो रही थी, अपनी आंखों से रो रही थी माता जी के सामने, उसे वही आता है। माँ के सामने तो रोया ही जा सकता है।
1: हाँ।
0: तो आप भले ही रोइए, लेकिन भक्ति भाव से आपको अगर शब्द नहीं आ रहे हैं तो, लेकिन अपने साथ ऐसा नहीं है कि साधना नहीं करनी है, कोशिश नहीं करनी है। जो आपने वेद रखे हैं घरों में, आपने जितने भी अपने शास्त्र रखे हैं निकालिए, उनका अध्ययन करने का समय है, अपने आत्म दीप जलाने का समय है। और उसमें तो कहा भी है, अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव, यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव, कि कर्म यज्ञ करिए, यज्ञ से ही बारिश होगी। तो आप अपने कर्म करते रहिए, जो पूरा साइकिल है कंडेंसेशन इवेपोराइजेशन, इस साइकिल से बारिश होती है। तो हमारे हिस्से का कर्म हमको करना है। सूरज इवेपोरेट करता है, समुद्र सारा जल इकट्ठा करता है, तो हमारे अपने अपने एक दूसरे के कर्म करने का समय है कि हम अपने कर्म को पहचानें और उस कर्म को करें, और माता जी उसकी शक्ति देती हैं। बिना शक्ति के संभव नहीं है, शक्ति आराधना इसे ही कहते हैं।
1: ज़रूर, बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी,
0: आज बहुत बहुत धन्यवाद
1: स्टूडियो में आई और इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने हमारे श्रोताओं को सुनाई, और आप जिन्होंने हमें बड़े ध्यान से सुना, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और नवरात्रि की आप सभी को बहुत सारी मंगल कामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार,
0: जय माता दी,
1: जय माता दी।

0: टाइम चेक 3 PM। देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है सुमेरा अकबर अली। आपको नमस्कार और आदाब।
1: नमस्कार और आदाब। भारतीय माहिर डॉक्टरों की टीम जीतू अस्पताल पहुंच गई है। ये टीम हवाई अड्डे से सीधा अस्पताल आ गई, जहां मरीजा एलुजी टोमा की स्थिति का जायजा लिया जा रहा है और जिसके बाद सर्जरी की जाएगी। पुलिस की भारी तैनाती के तहत एलुजी टोमा को जीतू अस्पताल ले जाया गया। वो ICU में है और उनकी हालत गंभीर लेकिन स्थिर है। एलुजी टोमा को जरूरी इलाज देने के लिए 13 डॉक्टरों की टीम आई हुई है। पानी की सप्लाई को लेकर मुश्किलें और कृषि उत्पादन, पशुपालन तथा खाद्य सुरक्षा पर इनके अंजाम घटाने के लिए कृषि उद्योग मंत्री अरविंद बुलेल ने एक सामूहिक सहयोग की मांग की। आज उन्होंने मुतालिक साझेदारों से मुलाकात की। देश के उत्तर में खेतिहरों की मदद करने के लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी। इस बैठक के दौरान भूमिगत जलाशयों की एक फहरिस्त भी तैयार की गई, ताकि पानी के नए स्रोतों को पहचाना जा सके। गर्मी की शुरुआत से बहुत से लोग एयर कंडीशनर खरीदने लगे हैं, इससे बिजली पर निर्भरता बढ़ने लगी है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का अनुमान है कि इस मौसम गर्मा में 600 मेगावाट बिजली की मांग होगी, इसलिए सीबी इस महीने से चेतना अभियान की लॉन्चिंग करेगा। बेल एंड रिमांड कोर्ट ने मामी गवातुमांग को जमानत पर रिहा करने की मांग को ठुकराया। मजिस्ट्रेट का कहना है कि सबूतों में हेराफेरी, गवाहों के साथ बातचीत या फरार होने के खतरे हैं। मामले को अगले 3 नवंबर के लिए स्थगित किया गया। मामी गवातुमांग वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत के सामने पेश हुए। उनके वकील सुप्रीम अदालत में इस रूलिंग के खिलाफ अपील करेंगी। विदेश में रियाद सऊदी अरब में किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमला हुआ। मुसाफिरों के ठहरने वाले हॉल में आग लगी, एक व्यक्ति की मौत हुई और 11 लोग जख्मी हुए। कल ही इसी हवाई अड्डे पर किए गए हमलों में 13 मौतें दर्ज हुई और 308 से ज्यादा लोग घायल हुए। तो अभी के लिए बस इतना ही। थोड़ी देर में शोक समाचार। मौसलमा सीताराम अंगियता वाकवामी 62 साल के 62 years old, श्री रूप सिंह शत्रुघ्न, श्री रूप सिंह शत्रुघ्न जो गौतम के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, और भूमि मंत्रालय में पूर्व सीनियर ट्रैफिक सेंसस अफसर थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थे कल 11 बजे के घर मौसलमा सीताराम अंगियता वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थामा मेल की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टमोरवा 11 AM। डॉक्टर इड्रिस गुमानी स्ट्रीट प्लेजेंस रोजहिल में 77 साल के 77 years old, श्री राजा सीवेन गेंगान, श्री राजा सीवेन गेंगान जो सीवेन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थे बुध को 11 बजे की पत्नी विनोदा गेंगान के घर डॉक्टर इड्रिस गुमानी स्ट्रीट प्लेजेंस रोजहिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लाशोमिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन वेंसडे एट 11 AM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
2: Your news on NBC.

Center 94 North South 95.6 East West 98.2 You are listening to RM3 Radio.

0: सबको के प्रणाम, नमस्ते। आज की चर्चा कार्यक्रम में स्वागत बाटे। जी हाँ, तो सबसे आगे आप सब लोगन के जय माता दी नवरात्रि की मंगल शुभकामनाएं। तो आज की चर्चा कार्यक्रम में आप सब लोगन के स्वागत बाटे। लेंदी के दिन है और वो आज हो फागे के हमने खास मेहमान हवन जा श्रीमान संजय शंभु जिन सीनियर एक्सटेंशन ऑफिसर हवन और हमने बात करब जा काई कि 15-16 के मनावल जाला वर्ल्ड फूड डे। एकर पर बतियाए से आगे फागे दने से नवा स्कीम्स के बारे में हमेशा हबी प्रताप जी आ रलन जा तो हमेशा नवा नवा स्कीम्स के बारे में बतियात रहन जा। हबी सकेला वो अपन कारों में हवन, अपन खेत में हवन, अपन गुजर के कारों में हवन काम करत हवन। तो प्रताप जी तो हर स्वागत बाते, नमस्ते। तो हाँ, जो स्कीम है वो है प्रेसिजन फार्मिंग और AI ड्रिवन फूड प्रोडक्शन स्कीम। कौन ची है प्रेसिजन फार्मिंग और AI ड्रिवन फूड प्रोडक्शन स्कीम? तो हमने के मेहमान हवन भाई शंभु, प्रणाम।
1: प्रणाम, नमस्ते।
0: नवा नवा स्कीम्स हमने हमेशा जानी लाजा जो फागे बाटे वो अंते रहेला। तो कौन ची है प्रेसिजन फार्मिंग और AI ड्रिवन फूड प्रोडक्शन स्कीम?
1: अच्छा, एक में जैसे नाम बाते दो चीज़ के में जुड़ल बाते, एक बा प्रेसिजन फार्मिंग और एक बा AI ड्रिवन फूड प्रोडक्शन। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, तो अब प्रेसिजन फार्मिंग से कुछ खोजन सब बोले के एक दो को उदाहरण के साथ बोलला। कैसे सिंचाई के लिए
0: जी
1: आज ज़्यादा तक देखना जा, जब सिंचाई होला कुछ में हो जैसे बोला सा स्प्रिंकलर हो या फिर ड्रिप हो तो ओके चालू करे खातिन तो आज किसी स्प्रिंकलर ला जब चालू होला तब पानी धराधर चले जाला
0: जी।
1: अब कितना पानी ओकर में से जाता, कितना पानी माटी में आवा था, कितना माटी चाहत माटी में रहे के कम होता ज़्यादा होता तो एक पर उतना काबू नहीं रहेला। ड्रिप ही के ले लब सा तो आज बाहर में हुए तो ड्रिप सूर्य सूर्य धूप बातें एवं पोकाशों रहेला। ड्रिप जन बातें एफिशिएंट एगो सिस्टम है लेकिन फिर भी उतना काबू नहीं बातें कितना चाहेला कितना नहीं। और इडोपोनिक में आज दिखा सकता उतना गन्ना ऑटोमेटेड रहेला ज़्यादा तक तो ओकर में गन्ना एगो एगो प्रोग्रामिया कहते रहेला तो ओकर में डाला जला दिखा चाहेला हर एक घंटा पर फैची गाशों करे के 2 मिनट तक तब रुक जाए के तब फिर से 1 घंटा के बाद शुरू हो के 2 मिनट तक फैची गाशों करे के तो ऐसे चालू रहेला हर घंटा या 1 घंटा आधा जेकर जेकर जहाँ पर इधोपनिंग बातें मॉरिशस में तो कहूँ कोनो इलाका बजन बहुत गर्मी रहेला ठंड रहेला तब वह ये होला। यहाँ पर ही कुछ बोलते हैं सर ये उदाहरण से आज गनला हम लगे ऐसे कोई डिवाइस रह कैसे बाहर में खेत बा माटी बा तो माटी में गनला सख्ती से जाने कि देखा माटी में लिमिजते कितना बा।
0: अच्छा,
1: आज लिमिजते की कमी भत तो सख्त ऑटोमेटिक में कुछ के दिखलाओं से करे

0: तब आके ये घासो हो या तो फिर आज ज्यादा पानी रहता तब तक दिखलाओ से वो नहीं हुई तो पशुधन फार्मिंग में सकब सा ऐसा ऐसा नयापन आने जैसे कि वाटर मॉइस्चर प्रोब्स बाते सेंसर्स तो उस सेंसर द्वारा हमने के पता चल जाला कि माटी में लिमिजिटे कितना बा तो आज लिमिजिटे गनला कमती होगा हानिकारक हो जाए क्योंकि वाटर स्ट्रेस तो हानिकारक रहेला जड़ी खातिन तब जाके ये घासो अपने से देख लो हो जाए। अब एक में सकब सा सबसे निमन एफिशिएंट सिस्टम डाले कैसे ड्रिप बाते कैसे एको सर में बातचीत करने से जोन जोन सिस्टम में से ट्रांसपीरे होला चीज़ों में से ट्रांसपीरे होला वो सबसे कब से डाल दे ते में नया पन आ वेला और ये प्रेसिजन फार्मिंग हो गया। अब एको जो सर उदाहरण देला कैसे हमने बीज के रुपाई के लजा तब बीज के छिटअप सा या तो बीज के गनला कभी ट्री में डालब सा उगे खातिन तब सकेला जब डाला तब से एक दो को चल डाला जस्ती कोशिश तो होला कि एक एक को जाए लेकिन एक आध गो ऐसा खेती रहा जो पहला जस्ती डाले के लेकिन ज़्यादातर गनला एक गो पहला डाले के ना तब एक कर में भी गनला आज मशीनरी लेके आई वह किसी खेत में हुई तो किसी तौर सोचा गया तो ट्रैक्टर जाता पीछे में गनला एगो चीज एगो इम्प्लीमेंट जुड़ल बातें और ओकर में अनेक प्रकार के हो बुकाल बातें स्पेशल ओकर में तोहर बीज बातें तो जब जब मशीन जब जाता तो एक ही डिस्टेंस में गनला आजे बा हर 30 सेंटीमीटर पर बोए के एगो एगो एगो बीज डाले के तो वो 30 सेंटीमीटर ही में डाले
1: हाँ
0: यूनिफॉर्मिटी रही कहाँ से 1 सेंटीमीटर रही कहाँ 1 सेंटीमीटर रही 5 सेंटीमीटर गहराई भी यूनिफॉर्म रही एगो लाहो एगो नीचे नहीं रही वही गहराई में वही स्पेसिंग पर वो बीज डाले जाए तो देखा ये प्रेसिजन फार्मिंग होगा।
1: तो हाइजा पर जब बात करत हुआ प्रेसिजन फार्मिंग तो जितना अभी इरिगेशन की बात करत हुआ बीज बियाओ के तो मेकानिजेशन इमें एगो बड़का
0: हाँ रहेला हाँ एगो फैक्टे हाँ मेकानिजेशन एक आगो सिस्टम हाँ जन सकमा मैनुअल वे में चल रहा है में से ज़्यादा तक ये मेकानिज हुए रहेला ऑटोमेटेड रहेला मैं आई अब इम्प्लीमेंट अपने आप से नहीं चल रहा ना वो तो ट्रैक्टर में जुड़ल बा तो के ही चल रहा था तो के पावर रहेला तो टूने वाला ऐसे जला कैसे अब हम बताएं पोटिंग ट्रे में जब आज है बीज जाते हैं सर तो वह भी आजकल गनला एगो गन एगो हाथ कलिते आवेला ऐसे जाके अपन बीज के लेके खाली होकर में प्लग कर देवेला।
1: माने कि खेती बाड़ी के जब हमने बात कर रहे थे जब जब प्रेसिजन फार्मिंग बात एग्रीकल्चर में वो सगरो अभी हमने देखा था जब
0: हाँ मॉरिशस में भी अब गनला स्कीम द्वारा हमने खोजा था सर कि प्रेसिजन फार्मिंग के
1: गनला
0: बढ़ावा देवे के
1: ताकि मौतें हो गल बातें
0: हाँ हाँ ओकर पर अभी बच्चे आपसे ओकर में हाँ एप्लीमेंटे होकर बातें स्कीम तैयार बातें और प्रेसिजन फार्मिंग के ओकर गन्ना ओकर एगो खासियत बाकी कैसे बीज के उदाहरण नहीं तो गन्ना बीज जानने हुई
1: जी
0: बीज ओकर एगो दाम बना ओकर ओकर खर्चा होला हमने के किसान लोग के खर्चा कर लें जा और जैसे पानी के बोलनी तो पानी इतना जानने हुई अभी देखा अभी सुखारी के मौसम चला था तो पानी तो गन्ना सुना गए होकर बा ई द्वारा सकब सा गंदा अच्छा से पानी के प्रयोग करे। अब दूसर और यही स्कीम में एक दूसर चीज जुड़ल बा AI ड्रिवन फूड प्रोडक्शन तब दोनों के साथ लेके स्कीम हुए तो यहाँ कुछ AI का उल्टा एगो गंदा एगो कैसे बोला एगो प्रोग्राम एगो लॉजिशियल है जो डेटा से चलेला जहाँ दोनों बातें तो यहाँ पर कैसे एगो उदाहरण दे देला गंदा गंदा एगो ईद होने के लिए चाह अब ओपनिंग में तो भीतर में गना तापमान रहे है तो पे गाचे गना तापमान से कि ऊंचा हो जाए लिमिट जीते ढेर रहेला तो जब लिमिट जीते ढेर रहेला तो वो लिमिट जीते से सकेला गना कोनो कोनो बीमारी है
1: पैदा कर दे
0: हाँ पैदा कर दे जैसे कि टमाटर में बा पाउडर मिल जू तो ये सब आज डेटा रही तो हमने जानब जा देखा कि ऐसा ऐसा कंडीशन जब रहेला एगो लास्ट ईयर में तब गन्ना एक आगो बीमारी के आगमन देवेला ताजी सकब सा एक ऑटोमेट कर दे सब डेटा

0: एक एक कुछ प्रोसेस कर रहे थे वही ए आई तो वही एक डिसीजन ले निर्णय ले तो देखा हमने के लास्ट ईयर में अब हमने के जो सेंसर्स के प्रयोग होता वो बोला था जैसे अब लिमिट जीते के निवो इतना होगा बा अब चला गो हमने के वो सिस्टम एक्सट्रैक्शन ऑन करके जब हमें लिमिट जीते के गंदा हटा दे या तापमान बढ़ गल बा देखो सिस्टम कूलिंग ऑन हो जाए. ऐसे ही बाहर में भी जैसे सकाप सा बोले गो आगोमेट स्टेशन माते आगोमेट स्टेशन यानी कि एक छोटा मोटा स्टेशन है जिनमें सकला तापमान रिकॉर्ड करे सका सॉइल मॉइस्चर भी सके रिकॉर्ड करे लिमिजिटे वगैरह वगैरह तो उससे अब डेटा करना स्टोक के रहला तो ओकर से एगो मॉडल सकेला मैंने फोकस्टिंग मॉडल सकल जाए बनाए कि समय के साथ हमने देखा थे जाके जब लिमिजिटे इतना हो जाला सॉइल मॉइस्चर इतना हो जाला तापमान इतना हो जाला तो ये सब समस्या पैदा होला तो कर सकला एक आध गो निर्णय ऑटोमेटिजे करें.
1: इधर निमन बात है कि हमने ए आई के बाद अभी तक जहाँ देखबा ए आई भी बाती हर क्षेत्र में तो कल कल तो हर देखे में जो मैदव हमने के मैदव के तो प्रॉब्लम भी बाती वो मैदव के नास ने बोला पर ओवरटेक जरूर कर दी.
0: निर्भर केला कौन सी खातिन एक आज देखबा तो कृषि कृषि क्षेत्र में बहुत ऐसा चीज हमने काम कर ला जा जहाँ पर ही आजकल तक काम करवा ही नहीं बा
1: वही तो
0: जब जहाँ नहीं बा आज सकल जाए ऐसा नहीं गो नयापन आने तक काहे नहीं तो कैसे करब जा
1: जी.
0: एक में सकब और एक उदाहरण दे दे कैसे रोबोटिक बातें तो एक में आवेला तो रोबोट शुरू में सब महंगा रहेला में समय के साथ साथ जब ढेर देश बाहर जो निकर पोजिशन कर दाम गिरे लगेला तब एक्सेसिव हो लगेला तो कैसे बाहर में देखा है ऐसा है मॉरिशस में स्ट्रॉबेरीज के प्रोजेक्शन होला बाहर में भी होला तो उधर देखे थे ऐसा स्ट्रॉबेरीज के ऊपर हार्वेस्ट करे खाते हैं रोबो बातें रोबो चीज़ें बा पासे होके ऐसे गुजर के देखेला कैमरा सब बातें ओकर संगे तो उस साथ अपन देखेला रंग अच्छा हो गल कि नहीं हिन्ने होने तब हाथ निकल के जाके हाँ तोड़ के हाँ अपने से निर्णय ले हुआ था तोड़ के तब रख देवेला तब से चल ले जला. इस प्रकार से अनेक प्रकार के ऐसे ऐसा ऐसा चीज बातें ये जन जन वो चीज आशो बातें देख बात हमने के घर ही से शुरू हो जला. आजकल जो न हो आस्पीकर करे खाते हैं जन धूल आस्पीकर करते हैं देखा छोटा मोटा वो बुबा चल ले जला कुछ उसे लगे ला था फिर से वापस आवे आस्पीकर करते रहेला. अब सब प्रोग्राम में वो करे कि तो हर कमरा ही यहाँ से हुआ जला ऐसे तो ये सब देखा तो ओकर ओकर ये नयापन ये टेक्नोलॉजी के प्रवेशन बातें तो झुक ले जाता चल ले आता एक्सपांड हो ले जाता तो कृषि क्षेत्र में भी आवा था अच्छा बात है क्योंकि ऐसे बोला कैसे काम करवा के काम ही बात है. आज हम नहीं सका जैसा ऐसा होबो चीज आशो आने जो नहीं काट को काम कर दे तो ठीक बात है अच्छा बात है हमें कुछ खराबी नहीं बात है और हमने के अपन सिक्योरिटी आलिम होते खातिर अच्छा बात है
1: जी. तो हमने संगे जितना जना अभी जुड़ल हवन हमने बात करे थे जा प्रेसिजन फार्मिंग और ए आई ड्रीवन फूड प्रोडक्शन स्कीम्स भाई हमने के बतावा ये जो न स्कीम बाटे उमे जो न फाइनेंशियल इंसेंटिव्स तनी एकर बारे में बतावा कैसे प्रोवाइड करे
0: हमने लगे जितना सब नए लेकिन ज्यादा तक जितना स्कीम बाटे तो अगर 50% तक फाइनेंसिंग हुआ
1: जी
0: तो इस स्कीम में भी हमने ऐसे ही फाइनेंसिंग करम जा और हाई में प्लेटफॉर्म आते 2 million rupees.
1: अच्छा
0: तो तुहर आज तुहर पोजे रही प्रेसिजन फार्मिंग पर या एआई ड्रिवन फूड प्रोडक्शन पर तगन आज तुहर पोजे 2 million के बाद तुहरा 50% यानी कि 1 million के सहायता मिली और यू एक ग्रांट है
1: जी.
0: ग्रांट था यानी कि ओके वापस लोन में नहीं देते हैं
1: जी.
0: और आज तुहर पोजे गन ला योजना जन बा 5 million के बा तो आधा हो 2.5 million लेकिन प्लेटफॉर्म तब 2 million ना
1: जी.
0: अच्छा यानी कि 2 million के मिले
1: तो हाई जो स्कीम बात है वो दूसरा स्कीम से कैसे डिफरेंट कैसे अलग बात है.
0: हाई में प्रेसिजन फार्मिंग बात है और एआई ड्रिवन बात है. हाई स्कीम से फायदा उठाए खाते हैं जब एप्लीकेशन कर वेबसाइट पर डिटेल्स वगैरह बात है तो ओकर में चला बताए कि कौन नयापन आना तो प्रेसिजन फार्मिंग द्वारा या फिर एआई द्वारा और तोहर तोहर उत्पाद

0: dans ta productivité, ta ferme, la ferme de productivité, mais qu'on gagne sur d'arnais mais là mais qu'on amélioration à ouais or il amélioration que ça ta ta production qu'est-ce qu'un ta sahaita kari
1: ji
0: aise ta i se i alag bate hat ke ba precision farming or AI ta on bate alag ke lekin ni même ça tu la chama bolé ke bi qu'est-ce hai kon na ya panana to te qu'est-ce ta sahaita kari
1: ji
0: और अलग स्कीम में देख बता ऐसे नहीं बातें कैसे हमने के वो बा परचेस ऑफ एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट तो कल में कोनो जोन इक्विपमेंट बातें कृषि से जोन जुड़ल कैसे पावतीला बा तो कल में चला हुआ इरिगेशन के जोन इक्विपमेंट बात तो चला हुआ तो अब जोन तो अब सब एकर एकर गन्ना जोन प्लेटफॉर्म रहल 250,000 के रहल
1: अच्छा
0: अब होने प्रेसिजन फार्मिंग के जन इक्विपमेंट बात होता है जैसे महंगा रहे ला तो कार्टिन एक अल प्लेटफॉर्म 2 मिलियन के बाते
1: अच्छा तो साथ दिया जा एक छोटा सा मिस्कोर ब्रेक के बाद हमने वापस आई ला जा

0: तो हम बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा कार्यक्रम संगे जुड़ल हो। आज हमने बताया था ऐसा प्रेसिजन फार्मिंग और रू एआई ड्रिवन फूड प्रोडक्शन स्कीम। तो भाई शंभू हमने के मेहमान हो जा और रू फागे दाने से एगो स्वीवी होला
1: है सब स्कीम खाते ने एगो स्वीवी होला, लेकिन इस स्कीम में क्योंकि एक एक हमने के हमने जानते हैं कि ऐसा नहीं कोई स्कीम में अपने बहुते करे में गन्ना समय लगी
0: जी।
1: तो ये स्कीम में गन्ना जो जो जपन जो ऑफिसर के ऊपर रेजो माते तो एक आदमी में वो हाँ एगो स्वीवी करे जब मैं देखी कि जो स्कीम के लिए ग्रांट मिला था वो गन्ना अच्छा से गन्ना इम्प्लीमेंटे होता कि नहीं, बाधा बातें कि नहीं, ठीक समय पर इम्प्लीमेंटे होता कि नहीं, और जो ग्रांट बात दे के तो एक पता निर्भर करे ना कैसे कैसे इम्प्लीमेंट होता। और एक चीज का मैं बोल दिला कैसे तब वहाँ ऑटोमेटाइजेशन रोबोटाइजेशन पर बताता नहीं जा तो कल मैं और एक चीज अच्छा बात है बोले के कि आज एक जब ऑटोमेटाइजेशन आवेला तो सकेला कि उस समय तुम्हारा नहीं चाहला वही जगह पर रह के जहाँ पर ही एक्टिविटी होता
0: जी।
1: दूसरा अकेला घर पे हो तुम्हारा कंप्यूटर बास साथ में या तुम्हारा मोबाइल फोन वही में तुम्हारा सब चीज दिखाई देता।
0: हाँ।
1: और सकेला एआई द्वारा तुम्हारा बोलता देखा हाई सिचुएशन में चला निर्णय लेके वो हाई सजेस्ट करता तो तू खाली बोलता हाँ तो कहना काम हो जाता लिपट जाता दूर ही से कैसे एक तरह बोल जैसा वर्क फ्रॉम होम ना
0: जी।
1: तो एक में कुछ मात्रा तक गन्ना थोड़ा नहीं अब गन्ना होमें पर रह के डिसीजन निर्णय ले खाते
0: जी,
1: दूरी में से डिस्टेंस डिस्टेंस हो जाएगा।
0: अच्छा हमने बात कर रहे थे जा ई जन स्कीम वह बातें हर बारी हमने जानी ला जा जो आम बातें लोगान हबी लीची सब फुलाल बातें फरल बातें तो एगो स्कीम बातें प्लान असिस्टेंस फिनेंशियल पुला प्रोटेक्शन दे फ्री पुला सीजन 26-27 तनी एक बारे में बताओ।
1: जैसे सबको जानेला ये स्कीम गन्ना हर साल आवेला
0: जी।
1: और ऐसा नहीं गो समय में आवेला जब मौसम रहेला गन्ना फर धरेला तब लेक्सी के आम के बाद में तो लोंगान के भी आवेला। तो अभी है कम्युनिके निकलबा

0: कि स्कीम चालू होगल बात है।
1: अच्छा
0: चालू होल बा 1 अक्टूबर से और जारी रही 6 नवंबर तक,
1: यानी कि अभी शुरू हो गल बा 1 अक्टूबर से 6 नवंबर ले।
0: हाँ जी, 6 नवंबर ले जी। गनला अभी आज से गनला 1 महीना तो और बातें तो जितना कोई के गनला मन में लाभ उठाए के तो ये समय बातें ये जब कैसे बोला सर, ये जब स्कीम के जब 6 नवंबर हो गल
1: जी
0: तब समाप्ति हो जाए तो उकर बाद नहीं सकल एप्लीकेशन करें।
1: अच्छा तो हर जो स्कीम बातें खाली खेती हर लोग जेकर लगे प्लॉट है बातें उन लोग खातिर वो एप्लीमोते हुई जे एगो आम जनता वो उकर मन बा
0: नहीं दोनों खातिर।
1: अच्छा
0: आज जे आम जनता रही तो रेजिडेंस में घर लगे तो लगे किसी फल के पेड़ बातें जैसे बोला सकेला लिक्षी के हुए सकेला लोंगान के होए सकेला आम के होए तो तू भी सब लाभ उठाए तो जब एप्लीकेशन करब तो जेकर जे रेजिडेंशियल द्वारा अप्लाई करता तो उ गनला ओकर एलिजिबिलिटी रही खाली मैक्सिमम 5 गो जिले के खातिन, यानी कि 5 गो पेड़ खातिन
1: जी।
0: तो आज तो लगे 7 गो गांची बातें तो 5 गो गांची के कुवे करी स्कीम। और जन किसान बातें ओकर वेजे बातें भी स्कीम में कुवे बातें तो ओके 60 फुचे खातिन गन्ना स्कीम कुवे करी तब दोनों के, लेकिन दोनों के ओकर ओकर मुद्दा एप्लीकेशन थोड़ा अलग बातें
1: कैसे
0: जे गन्ना जेकर घर के पास जेकर घर लगे गन्ना और फुचे बातें एगो उदाहरण दिला सा गन्ने तो गन्ना तोहर लगे 2 गो आम के पेड़ बातें अब थोड़ा होके बचाए के बहादुर संगे चिमकादर संगे तो तू जेबा एप्लीकेशन करे तो तुहरा चाहेला क्योंकि तू रेजिडेंशियल के हो तुहरा चाहला तुहर फोटो कॉपी का आइडेंटिटी लेके जाए के एगो यूटिलिटी बिल जोन बतावे ला कि जोन जोन जोन के नाम का आइडेंटिटी संगे पाग बातें अलग नहीं बातें सेम टू सेम ये बतावे ला कि तुहर एड्रेस कहाँ बा
1: एड्रेस। हाँ
0: तो हाई 2 गो लेके तुहरा चाहला जाए के हमने के दफ्तर जो सबसे करीब करीब के होए तो वहाँ पर ही जाएबा तो वहाँ पर ही तब एप्लीकेशन करबा फोटो कॉपी का आइडेंटिटी और एगो यूटिलिटी बिल
1: जी।
0: अब आजे तुहर एगो वेजे हुए तो उ खातिन तुहरा पर ही एक साथ साथ तुहरा तुहर फोटो कॉपी टाइटल डीड भी लेके जाए के।
1: अच्छा
0: तो ओकरा चाहला लेके जाए के और कहाँ जाए के चाहला जो दफ्तर तुहर रेजों के कुवे करेला
1: जी।
0: अब गनला तू रहेला लामारी में तो दफ्तर बा हुआ वाकवा
1: जी
0: तो हुआ पर ही जाएबा। अब आजे प्लान मानिया बगल रहा तो वहाँ हमने के प्लेजेंस में एगो दफ्तर बाते आज शामुनी बगल हो तो प्लेजेंस में बातें हियाँ अभी जहाँ पर है जाम्बू का इलाका में तो सैं पियर ईस्ट में हुआ था फ्लाक नॉर्थ में हुआ था मापू। अब गनला तू रहेला मौका में लेकिन तोहर तू एगो किसान हो तोहर वेजे बातें
1: दूसरा जगह हाँ।
0: नॉर्थ में गनला असिनाल में तोहर वेजे बातें तो एप्लीकेशन करे खाते हैं तो रहा चला मापू के दफ्तर जाके ओकर इलाके इलाका के दफ्तर में चला जाए के वहाँ पर
1: जो इलाका में भीड़ी बातें हो जाए
0: वहाँ चला जाए के
1: जी जी।
0: और एक अलावा आज गन्ना कोनो कन्फ्यूजन है कोनो नहीं समझा तो गन्ना थोड़ा ज़्यादा जानकारी के काम हुई तो जन जन दफ्तर के नाम भी बोलनी जा वहाँ सकबा जा फोन करे शाम के
1: जी
0: तब है अपन जितना है ज्यादा जानकारी के काम रही
1: जी
0: तब बचा मांगे।
1: तो भाई साहब वो अभी जो जाली की बात कर रहे थे वो हमने जानी ला जा हर 2 बरिस के जे धरला गल हला हम के मिलल रहल गल बरिस हम के मिलल रहल तो परी स्प्रे करे के 2 बरिस तब हम के मिली।
0: हाँ स्कीम गना आज गल बरिस तोरा मिलल रहल तो ये बरिस तू एलिजिबल नहीं रहा 2 साल के बाद फिर से एलिजिबल होइबा स्कीम से लाभ उठाए खाते
1: जी।
0: और एक चीज बाकी काहे करीला जा ये चाह जाने के कि जब हमने जब सरकार गन्ना एगो घाट देवता तोरा फीले जब किना तो

0: गाना फिलियो के छा अच्छा से प्रयोग करके निमन से प्रयोग करा अच्छा से दलब त गाना वो फिलेवा टूटी ना फिलेवा रही ना तो वही सब तू फिर से प्रयोग कर ले जाए तब जो साल के बाद फिर से कर दे। लेकिन ये भी आवश्यक बात जानने खातिर कि जब फिले किनब तो छा जाने के कैसन फिले किने के जाने की वो गाना स्वलित बा मजबूत बा कि नहीं कि खाली लेके जब जेब खोलब फट गल तो ई संकेत करेला सुली जीते कौन सी संकेत होला और घामाज पर
1: अच्छा
0: तो गला आज जेब तो जन डेटायम बेचाता जन कंपनी बेचाता तो जब जेब ये जाली किने तो पूछ कौन घामाज बातें कर आज तोरा बोली घामा सकेला गना वैंसा घाम की पला रही सकेला जाए कहान सा घाम गना चल गल ते गो रेंज बाते
1: अच्छा
0: ते जितना जितना गना बड़ा घामाज रही उतना सुलिद रही अब तोहरा गना किने के बाद गना सब उपशो बाते वैंसा घाम के बाद थानसा घाम के बाद कागोन घाम के बाद 45 घाम के बाद चला चला सबसे गन्ना स्वलिद किने के ना तब 45 ग्राम के किन
1: जी
0: 25 ग्राम के किन अच्छा बा किन लेकिन हाली से फट जाए
1: अच्छा। और उशाहिला जैसे बोले हुआ निमन से डाले कि कई कई कि कई जना कि हमने देख लिया जाए डाल के फल सब तोड़ दिलन सा निकाल दिलन सा अब फिलेवा औजे बाते पर हौजे बाते पर हैजा लटकाता हौजा लटकाता सीमा पर चला निमन से नए बांधे हुआ तो एक प्रॉब्लम हो जाला।
0: हाँ तो मैं दिखा तो ना एगो हम ये मैं एगो एवेस्टिशमा बात है पैसा लगल बा खरीदे के अब पैसा जब लेके तब जैसे अगर फट गल था तोहरे पैसा गन्ना चल रहा है ना नहीं चल पाते पैसा के चाहे एगो मूल्य बात है चला होकर ना आदर आदर रहे कि ना तो जब फिले दलबा जा तो चाहला जब फुला बात है तो फिले ना डाला जब फट
1: डालेला
0: लगभग आधा सेंटीमीटर से ज़्यादा हो गल बा 5 मिलीमीटर से ज़्यादा हो गल बा तो तब फिले डलाए आज छोटा रही फिले डाल दिला तो जब फिलेवा
1: फलवा के छुई
0: हाँ फल पर जब छुई तब फल कुंच बा छोटा छोटा बा फिले के आर पार निकल जला
1: तो कोई फायदा नहीं बा।
0: हाँ तो आर पार जब निकल जला तो उत करना जन चिमकादर बात है तो आके ओकर में
1: बोला था आके खाए के
0: हाँ बोला था
1: अभी तक रहता हुआ
0: निमन से पीले पर जाली पर बैठ के खा
1: तो चला
0: डाइनिंग टेबल बात है
1: जी।
0: हाँ तो चला करना जब तनी सुन बड़ा हुआ तब डाले के और एक एक आध गो चीज करना चला करे के कैसे जब फिलेवा आज जिगे करना फल पर करना लगी छुई तब भी सकी हो बहादुर आके गन्ना निचोड़े होके
1: जी
0: तो कौन सी चाला करके सकबा एगो एगो पोतो ले ओकर में एगो प्लास्टिक के जो बोतल बा काट के डाल ले तब ओकर से लेके खम्बा से खम्बा के लेके
1: एगो लिस्पा सही लाए होके
0: जाली के तनी सुन उठा ली एक एक दो पिए गन्ना दो फीट गन्ना ज्यादा रही तो अच्छा बात है ऐसे चिमकादर आके बहादुर आके ओकर पर बैठ भी करी बट भी तो गन्ना नहीं मिली निचोड़े के ये भी चाला करे के। और आजकल इसे हमारे गांव बाप ने देखे लगा ना बहादुर चले ला भी नीचे से सकी चले भी
1: जी
0: तो आज फीले जब जाली जब दलबा तो खाली ऊपर में नहीं ढकिया
1: जी
0: नीचे में गंदा सब चीज खाली बात है चला जाली के निमन से लेके हिंच के पैर के चारों ओर लेके हिंच के तब में एक्सीडेंट नहीं रही अंदर
1: जन प्रैक्टिस हुआ बात है बहुत ही अच्छा बात है बहुत बहुत धन्यवाद हमने संगे जुड़ रहा हुआ था। अब हमने बताया जा वर्ल्ड फूड डे हमने सब जानिए जा हर बरिस 15-16 के मनावल जाला वर्ल्ड फूड डे तो ई जन बरिस के टेम है वह इनोवेट टुडे नरिश टुमोरो का ही मनावल जाला वर्ल्ड फूड डे
0: देखा सिक्योरिटी आलिम होते जन बोला सा ये खाली गन्ना गाना मॉरिशस में बचा ला जा खाली मॉरिशस की समस्या नहीं है
1: जी।
0: हर देश हर टापू हर देश हर कोचिन जनबा तो उन लोगों के चाहला ना चाहला खाद्य सुरक्षा रहे के नहीं चाहे उन लोग के जन जन नागरिक बातें कुंच पर जियन जा तो ई कारण जन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बा तो हर साल ई खाद्य दिवस मनावेला ताकि हमने सकब जा

0: एगो रिफ्लेक्शन एगो सोच विचार करे कि जब जब पॉपुलेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन जन बिला से होकर जब आबादी होता तब कैसे सकब जा उलोग खातिन गन्ना खाए के आने और खाली खाए के नहीं निमन खाए के आने जो न्यूट्रिशस हो लोग के वेलबींग खातिन अच्छा बात है वगैरह ताकि भूखा कोई नहीं रही।
1: तो एगो प्रश्न तो हसे अभी पूछब दिमाग में चलाल हमनी के जन आबादी जन भरती संसार की आबादी वो घटले जात बा वो बढ़ले जात बा
0: नहीं बढ़ले जाता आबादी तो बढ़ले जाता तो वो खाते न पहला ऐसा सोच विचार करे कि आगे जाके कुछ हुए क्योंकि आज आज आबादी घटी तो कहने लगता अब सरप्लस प्रोडक्शन रही ना तो सरप्लस नहीं बात है रोज संसार में बहुत बहुत लोग ऐसा जनबा जनगणना खाली पेट छुते मन से खाए के नहीं मिलेगा तो चाहेला हमने की सोच विचार करे कि कैसे सकब जा गनला गनला एक दो गो चीज बा एगो बात जो अभी गन्ना प्रोडक्शन होता चला बरकरार रखे कि हाई एगो चीज हो दूसरा बात है जब पॉपुलेशन के आबादी होता संख्या जब बढ़ता तो कैसे सकब सा
1: और
0: हाँ और उत्पादन करे हाई दू गो चीज हो अब देखा एक मेरे को तीनवा चीज जुड़ल बात है हमने बोला था ऐसा प्रोडक्शन बड़ा बरकरार रखे के या और बढ़ा के ना तो कहाँ पर दिक्कत अब जा हमने के जो माटी बा तो सोच तब आवेला कि जो माटी बा हमने चला हमेशा उपजाऊ रखे के क्योंकि आज उपजाऊ माटी उपजाऊ नहीं रही तो आगे जाके तो कैसे रोपाई करब जा तब कैसे जो हमने के जो नागरिक बात है या वर्ल्ड पॉपुलेशन बात है लोग के करना खा के मिले
1: तो हमने के मोरिस में इतना जमीन बा कि हमने उपजाऊ सकब सा करे और तो सुशीजा सकब सा बने
0: जमीन तब बात उतना साल से हमने करते हैं जा देन फ्रेश वेजिटेबल्स बा हमने सकब सा करना गर्व के साथ बोले कि हमने फ्रेश वेजिटेबल्स में करना ऑटो सुफीजा है सब हमने फ्रेश वेजिटेबल्स नहीं मंगाला जा जैसे सुसु बाते गोभी बाते तो वही बताए फ्रेश वेजिटेबल्स हमने करना घर के साथ सकब साहब बोले कि हमने के किसान लोग के सहायता से वो लोग की श्रम परिश्रम जन कर जा और सरकार भी जब आवेला तो गन्ना किसी स्कीम सब आने ला तो गन्ना उत्साहित करेला गन्ना कृषि कृषि जुड़ल रहे खातिर
1: जी
0: तो इस सबसे गन्ना हमने आज ले गन्ना फ्रेश वेजिटेबल्स में गन्ना है ऑटो सुफीजा ऐसा मंगाएला जा
1: जी
0: नहीं बोलते नहीं मंगाएला जा नहीं एक आदमी चीज सीजनी रहला तो नहीं सकेला जा हमने गन्ना उतना पोजुए करे कैसे आलू रहला कैसे प्याज बाते कैसे लहसुन बाते कोशिश बा कि हमने सकब जा गन्ना और ज्यादा ये सब के जन बोलनी पोजुए करे तो सकब जा स्टोकी करे तब गन्ना जब सीजन चल जाला तो सकब जा गति गति गन्ना के मौसम में एक उल्ले करे सब कोशिश रहेला और धेरे चीज़ ऐसा मा जन गन्ना कैसे नहीं सकब जा गन्ना हमने अपन से यहाँ पर ही पोजुए करे कैसे आटा बाल लेला कितना सकब सब आज आज पोजो भी करब से तक कितना सकब जा पोजो करे
1: आज तक इतना इतना हमने देख ली सब मानियो के बारे में हमने बताई ली सब हाँ। आटा हबी फुया पे वो सब एकर एकर बारे में तो रिसर्च होते रहे ला
0: होते होता और एकर में अभी सकेला बाद में एक आदगो प्रोग्राम में जवाब अभी नहीं सकब बोले एकर में भी एक आदगो नयापन ना हुआ था लेकिन इतना सकब बोले कि जैसे बोला एक बोला सब स्टार्ची क्रॉप्स
1: जी
0: तो ये लोग ये लोग में गला कैसे फुया पे बोला कैसे स्वीट पोटेट है पटाट बाते तो ग्लूटेन फ्री वन चला सेहत खाते भी अच्छा बाते सकबा जा जन जन किसे भात खाते आटा आटा खाते आई पराठा खाते तो सकबा जा हाइये के लेके सकबा तकारी की तरह बुई करके वगैरह वगैरह करके पकाए या तो फिर एक थोसोवे करके एक से आटा बनाए और ये आटा के जो आटा हमने मंगाला सब सब मिला के यानी कि आया जो होता काम करके में मिला के तब ओकर प्रयोग करे ये भी सकल करे एक कर पर भी काम कर हम सक बोले काम होता और आगे जो महीना होता पता नहीं हफ्ता या महीना जो ना होता एक कर पर और सकब थोड़ा बोले ज्यादा विस्तार से
1: चलो एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद वापस आना जा

0: राम जी संगे अभी माता रानी आयल हवन तक चला उनकर हमने स्वागत कर ही ला जाओ उनका आशीर्वाद पाप कर ही ला जाओ। हमने बात कर रहे थे जा जो वर्ल्ड ऑफ फूड डे है और ई बरिस के जो टेम है इनोवेट टुडे नरिश टुमोरो तनि सन एक बारे में बतियात रला भाई जी और हमने के बतावा ई जो बातें जैसे बोले जा 15-16 के मनावा जाए तो मोरिस में कौन कौन जो एग्जीबिशन कुछ हो रही कोनो इवेंट रही एक बारे में तनि बतावा।
1: सबसे पहला आपका जो टेम बात है इनोवेट टुडे नरिश टुमोरो जैसे देखा शुरू में देखा कैसे जुड़ल बात है प्रेसिजन फार्मिंग
0: जी
1: AI ड्रिवन प्रोडक्शन गाना ये सब नयापन इनोवेशन एक ही बताए सर इनोवेशन आज आज लाभ आज आनब सर तो कल खातिन लाभदायक रही
0: जी
1: तो कल खातिन उत्पादन खातिन लाभदायक रही लेकिन इनोवेशन गाना एगो बहुत गाना बड़ा शब्द है इनोवेशन जब जैसे खाली टेक्नोलॉजी नहीं बा में इनोवेशन में सकेला एक आध गोसन चीज रहे जो कैसे माटी से जुड़ा हुए कैसे कैसे आजकल वेमी कंपोस्टर्स बोलते हैं सब
0: अच्छा
1: तो यू मॉरिशस में तो मॉरिशस का तीन गाने को इनोवेशन कहते हुए गलबा तो ऐसी चीज सब कब आने कैसे जैविक खेती में आजकल मिक्रोब के ढेर प्रयोग होता तो यही भी एक इनोवेशन कहते बा कैसे हमने सकते हैं गन्ना मिक्रोब के द्वारा गन्ना एगो माटी के गन्ना आए उपजाऊ रखे और प्रोजेक्शन कर ले जाए क्योंकि आगे तो यही काम आए ना माटी उपजाऊ रही तो ये रहा इनोवेशन आज करब जा ताकि
0: काल
1: काल खातिर हमने के गन्ना आए
0: फायदा
1: हुए हमने के सकब जा प्रोजेक्शन कर ले। वर्ल्ड फूड डे हर साल 16 अक्टूबर के मना होता और हमने हमने हमने भी इस साल भी मनाब जा तो कृषि मंत्रालय द्वारा ये एक सेलिब्रेशन हुई तो 15 और 16 अक्टूबर के रही दो दिन पर रही तो ये दोनों दिन आए रेजुई के जो एग्रीकल्चर सर्विसेज के कंपाउंड बाटे वहाँ पर रह जा और वहाँ पर ही अनेक एग्जीबिशन भी रही और कैसे बोला सलाहवाद भी रही जैसे आई बता देख बजा कि सकेला आग्रो प्रोसेसिंग हमने के जो जो जो इंडस्ट्री बनबा या एंटरप्रेन्योर बनबा वो लोगों भी रही खाली प्रोडक्शन है यानी कि आग्रो प्रोसेसिंग भी रही वहाँ पर
0: अच्छा।
1: और जैसे इनोवेशन वगैरह रही तो वहाँ पर भी लोग तो हम तो बोलते हाँ कई बजे तो 15 और 16 अक्टूबर के 9 बजे से शाम के 3 बजे तक
0: अच्छा
1: ये सब रही और हम जो पब्लिक हमने के आज सुना तो अंजा तो हम सबके आमंत्रित करती आवा जा वहाँ पर देखा जा कौन सी एक्सपोजे बातें और सकेला कौन कौन चीज आज लाभांत पर हुई था वो सभी सक बजा लाभ उठाए
0: और कोई जानकारी कुछ हो रही तो
1: बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसा ना जब मेला बोलते हैं लेकिन मेला में जैसे जेबा तो बहुत बार ऐसी होला कि तू सकेला कुछ मन में कुछ हो डबल हुए तोरा मन हुई कुछ करे के लेकिन गन्ना हो गन्ना गन्ना जन हो चिंगारी बात है लेकिन तोरा तोरा गन्ना सुझाव नहीं आता कैसे सकबा करे अब कैसे जहाँ तक वहाँ पर गैला तोरा जन खुजतला करे कि या एगो चीज लोकल एगो रास्ता मिल गल हाँ तब उसे सकबा जा अपन अपन जो योजना अपन पहुँचे बा ओके गन्ना कंप्लीट करे ओके शुरू करे
0: तो चला जा माने की 15 और 16 जो अक्टूबर आवा था द वर्ल्ड ऑफ फूड डे मनावल जाए सैंपियर में रेजवी में जी हाँ है जी परी रेजवी में
1: एग्रीकल्चरल सर्विसेज के कंपाउंड में
0: जी तो चला नहीं भुलाया रेजवी के जो एग्रीकल्चर

0: कल्चरल सर्विसेज कंपाउंड में नहीं भुलाया 15 और 16 के और जो जो स्कीम बातें जाली के वो शुरू होकर
1: बातें 6 नवंबर तक जारी रही।
0: चला आज के चर्चा कार्यक्रम है जी परिसमाप्त होला। बहुत बहुत धन्यवाद हमने संगे जुड़ल रहला। बहुत बहुत धन्यवाद भाई संजय शंभू जी फागे के हमने के सीनियर एक्सटेंशन ऑफिसर। अवत हफ्ता फिरों से मिलब जा तब ले पूरी टीम रहने से शुभ दिन प्रणाम जय माता दी।

0: तरों के सामने खड़े हैं ताकि वे वाटर टैंक और वाटर पंप ग्रांट स्कीम से लाभ उठा सकें। सैंपल और रुजिल के दफ्तरों में सैकड़ों लोग, कह सकते हैं कि हजारों लोग वहां पर मौजूद थे। ए से एम अक्षरों से शुरू सरनेम वाले लोग वहां पर आज सुबह से गए थे। इस स्कीम के तहत 15,000 रुपए की कीमत पर सरकार वाटर टैंक और वाटर पंप दे रही है। भारतीय माहिर डॉक्टरों की टीम ने प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से मुलाकात की है। एलुजी टोमा की सर्जरी के सिलसिले में उन्होंने बातें की हैं। ये टीम हवाई अड्डे से अस्पताल गई है और मरीजा की स्थिति का जायजा लिया जा रहा है, जिसके बाद सर्जरी की जाएगी। पुलिस की भारी तैनाती के तहत आज दिन के दौरान एलुजी टोमा को जीटू अस्पताल ले जाया गया। स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार वो आईसीयू में है और उनकी हालत गंभीर है लेकिन स्थिर है। पानी की सप्लाई को लेकर मुश्किलें और कृषि उत्पादन, पशुपालन और खाद्य सुरक्षा पर उनके अंजाम घटाने के लिए कृषि उद्योग मंत्री अरविंद बुलेल ने एक सामूहिक सहयोग की मांग की। आज उन्होंने मुतालिक साझेदारों से मुलाकात की। देश के उत्तर में खेतिहरों की मदद करने के लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी। इस बैठक के दौरान भूमिगत जलाशयों की एक फहरिस्त भी तैयार की गई ताकि पानी के नए स्रोतों को पहचाना जा सके। बेलेंड्री मान कोर्ट ने मामी गवातुमांग को जमानत पर रिहा करने की मांग को ठुकराया। मैजिस्ट्रेट का कहना है कि सबूतों में हेराफेरी, गवाहों के साथ बातचीत या फरार होने के खतरे हैं। मामले को अगले 3 नवंबर के लिए स्थगित किया गया। मामी गवातुमांग वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत के सामने पेश हुए। उनके वकील सुप्रीम अदालत में इस रूलिंग के खिलाफ अपील करेंगे। और विदेश में रियाद सऊदी अरब में किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमला हुआ। मुसाफिरों के ठहरने के हॉल में आग लगी। एक व्यक्ति की मौत हुई और 11 लोग जख्मी। कल ही इसी हवाई अड्डे पर किए गए हमलों में 13 मौतें दर्ज हुई और 308 लोग घायल हुए थे। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए।
1: on NBC

0: 94.6 98.2 आप सुन रहे हैं और M3 94.6 98.2 आप सुन रहे हैं और M3
1: आपके सितारे
2: सोमवार 12 अक्टूबर रेडियो मनोरंजन पर आप सभी लिसनर्स का वेलकम है, आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ सुमी और हम यहाँ पर आ चुके हैं आपका साथ देने के लिए इन योर आपके सितारे प्रोग्राम ऑन रेडियो मनोरंजन। कैसे हैं आप सभी? तो चलिए अभी से लेकर शाम के 6 बजे तक आपके सितारे इस प्रोग्राम में हमारा और आपका साथ रहने वाला है और खूबसूरत गाने तो हम आपके लिए चलाते ही है इस प्रोग्राम में, साथ ही किसी न किसी आर्टिस्ट पर बात करते हैं। सो कल 11 अक्टूबर को जन्मदिन था, बर्थडे था बॉलीवुड के बिग बी, बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन जी का। सो उनको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे उनके सभी फैंस की ओर से। और आज का जो हमारा प्रोग्राम है इन्हीं पर आधारित होगा और चलिए इनसे जुड़ी बातें तो हम करेंगे ही और साथ ही इनके एवरग्रीन हिट गाने भी आपके लिए चलाएंगे। और अभी तो दुर्गा पूजा का भी वक्त चल रहा है तो दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। अगर हम अमिताभ बच्चन जी की बात करें तो सुहाग इस फिल्म में अमिताभ बच्चन जी

का एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना है, हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम। तो चलिए इसी गाने के साथ आज के प्रोग्राम की शानदार शुरुआत करते हैं।

0: के सितारे।
1: तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। अमिताभ बच्चन जी की बात करें तो इनका जन्म 11th ऑफ अक्टूबर 1942 को अलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता ऑब्वियसली एक मशहूर कवि है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन और उनकी माँ तेजी बच्चन थी। अमिताभ जी ने जो है नैनीताल और दिल्ली में अपनी पढ़ाई की है। फिल्मों में आने से पहले उन्होंने कोलकाता में नौकरी भी की थी, लेकिन एक्टिंग के लिए उनका जो जुनून था उन्हें मुंबई ले आया।

0: के सितारे।
1: तो दोस्तों आज रेडियो मनोरंजन आपके सितारे इस प्रोग्राम में हम अमिताभ बच्चन जी की बात कर रहे हैं। 1969 की फिल्म सात हिंदुस्तानी से अमिताभ बच्चन जी ने अपनी करियर की शुरुआत की थी। शुरुआती दौर में उन्हें तुरंत वो सफलता नहीं मिली थी, कई फिल्में उन्होंने की थी, कई निराशाओं का सामना किया था, कई संघर्ष के बाद जाकर उन्हें वो कामयाबी हासिल हुई जो आज हम देखते हैं। लेकिन उनकी गहरी आवाज़, उनका लंबा कद और उनका ऑन स्क्रीन प्रेजेंस इतना पावरफुल था कि धीरे धीरे फिल्म मेकर्स का ध्यान उनकी ओर खींचता चला गया। और कब अमिताभ बच्चन से बिग बी और बॉलीवुड के शहंशाह बन गए, ये अपने आप में एक कहानी है।

0: के सितारे।
1: तो चलिए आज अमिताभ बच्चन जी पर बात हो रही है। आप सभी लिसनर्स बड़े ही प्यार से इस प्रोग्राम में हमारा साथ दे रहे हैं। 1973 की फिल्म जंजीर से अमिताभ बच्चन जी की करियर में एक बड़ा ही टर्निंग पॉइंट आया। इस फिल्म में उन्होंने इंस्पेक्टर विजय का किरदार निभाया था। इसके बाद अमिताभ बच्चन जी को हिंदी सिनेमा का एंग्री यंग मैन कहा जाने लगा और विजय ये नाम इनके कैरेक्टर से इस तरह जुड़ गया कि क्या कहें। काफ़ी पॉपुलर फिल्मों में, काफ़ी पॉपुलर किरदारों में इनका नाम विजय रहा है और शायद ये नाम इनके लिए लकी भी होगा, है ना। और चलिए, जंजीर के बाद फिर हमने इन्हें नमक हराम इस फिल्म में देखा और बैक टू बैक इनकी जो पॉपुलैरिटी है समय के साथ बढ़ते चली गई।

0: आपके सितारे।
1: सो दोस्तों होप आज के इस प्रोग्राम को आप एंजॉय कर रहे होंगे। ये है आपके सितारे ऑन रेडियो मनोरंजन। और अमिताभ बच्चन जी की बात करें तो 70s और 80s का साल अमिताभ बच्चन जी के फिल्मी करियर के लिए एक बहुत ही जो है पॉपुलर पीरियड था, बहुत ही यादगार था, जहां पर इतनी नायाब फिल्में आई कि इन फिल्मों के बारे में आज भी हम बात करते हैं। इन फिल्मों को मौका मिले तो हम आज भी देखते हैं और इन फिल्मों के गानों को हम आज भी सुनते हैं, जैसे कि दीवार, शोले, कभी कभी, अमर अकबर एंथनी, डॉन, त्रिशूल, मुकद्दर का सिकंदर, काला पत्थर, सुहाग, लावारिस और नमक हलाल जैसी फिल्में। और इन फिल्मों ने अमिताभ बच्चन जी को एक सुपरस्टार बना दिया। उनकी एक्टिंग में एक्शन, इमोशन, रोमांस, कॉमेडी, ड्रामा

0: के सितारे।
1: तो चलिए यहाँ पर रेडियो मनोरंजन पर हमारा और आपका साथ बना हुआ है और आज अमिताभ बच्चन जी पर हम बात कर रहे हैं इन योर आपके सितारे। और अमिताभ बच्चन जी की बात करें और शोले फिल्म का जिक्र ना हो तो मामला जमता नहीं है, है ना। तो चलिए शोले ये जो फिल्म है 70 के सालों में आई थी और इनके करियर की आइकॉनिक फिल्मों में से एक है। इसमें इनके साथ धर्म पाजी नज़र आए थे, साथ में अमजद खान थे, साथ में संजीव कुमार थे। अपने आप में फिल्म की कास्ट ही इतनी बड़ी थी कि क्या कहें। और इस फिल्म में इनके जय का जो किरदार था, जो धर्म जी के साथ इन्होंने निभाया था, शोले इस फिल्म में इन दोनों की दोस्ती जिस तरह से दिखाई गई थी आज भी अपने आप में एक मिसाल बनी हुई है। इसी दौर में शशि कुमार के साथ दीवार में इनकी जोड़ी बहुत पसंद की गई थी। फिर इसी दौर में विनोद खन्ना के साथ मुकद्दर का सिकंदर, इस फिल्म में इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी नज़र आई थी। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा के साथ दोस्ताना जैसे प्रोजेक्ट में भी इन दोनों को बहुत लोगों ने सराहाया था।

0: गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस। राइट, मैं दुनिया पे अकेला हूँ।
1: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया

0: जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: हाउ क्यूट,
0: राइट, मैं

0: गली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज, माय नेम इज फ्रैंकी।
2: नो
1: नो। सेबेस्टियन।
2: नो।
1: गोल्डी सोल्डी।
2: नो। एंथनी गोंसाल्विस।
0: ओह या।

0: के सितारे।
1: तो चलिए यहाँ पर देखते ही देखते हम आपके सितारे इस प्रोग्राम के सेकंड आवर में आ चुके हैं और आपका प्यार भरा साथ हमें मिल रहा है, इसके लिए थैंक यू सो सो मच। और अगर ऑन स्क्रीन जोड़ी की बात करें, अमिताभ बच्चन जी और रेखा जी की जोड़ी को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और साथ ही इनकी जोड़ी जो है काफ़ी चर्चा में भी रही है हमेशा से। दो अनजाने, मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल, सुहाग और सिलसिला जैसी फिल्मों में इनकी केमिस्ट्री लोगों ने इतनी पसंद की कि क्या कहें। और खासकर सिलसिला इस फिल्म को कौन भूल सकता है, एक रोमांटिक ड्रामा थी जो आज भी याद की जाती है। तो चलिए सिलसिला फिल्म की बात हो रही है तो सिलसिला फिल्म का ये गाना भी हो जाए।

मैं और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खाम

खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: के सितारे।
1: चलिए अमिताभ बच्चन जी के फिल्मी करियर तो अपने आप में बड़ा कमाल का ही रहा है, लेकिन राजनीति और बिजनेस में भी इन्होंने कमाल दिखाया है। 80 का दशक था जब अमिताभ बच्चन जी ने राजनीति में भी अपनी किस्मत आजमाई थी और वहाँ पर कुछ समय तक रहे थे। लोगों ने वहाँ पर भी जो है इनके योगदान को बहुत ही सराहाया था। वहीं पर एंटरटेनमेंट बिजनेस में भी इन्होंने कदम रखा था, जहाँ पर लोगों ने उस काम को भी बहुत पसंद किया था, लेकिन कहीं ना कहीं एक्टिंग ही शायद इन पर ज़्यादा जचती है, इसलिए तो आज तक हम इन्हें बड़े पर्दे पर और छोटे पर्दे पर देख पा रहे हैं।

0: के सितारे।
1: तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप कनेक्टेड हैं ऑन रेडियो मनोरंजन। और आज अमिताभ बच्चन जी पर हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, फिल्मों की बात करें या टेलीविजन की बात करें, दोनों ही पर जो है बिग बी का जादू छाया रहा है। और छोटे पर्दे की बात करें, अगर टेलीविजन की बात करें, तो कौन बनेगा करोड़पति, इस टेलीविजन, इस रियलिटी शो को कौन भूल सकता है। इस साल 2000 में कौन बनेगा करोड़पति, इस रियलिटी शो में होस्ट के रूप में अमिताभ बच्चन जी टेलीविजन पर एक नए अंदाज में दिखाई दिए थे। और जो इतिहास इस प्रोग्राम ने क्रिएट किया है वो क्या कहे। आज भी कौन बनेगा करोड़पति हम उन्हें देखते हैं जिसमें अमिताभ बच्चन जी को होस्ट करते हुए नज़र आते हैं। लोग इनसे मिलते हैं तो इतने खुश होते हैं, इतने भावुक होते हैं कि क्या कहे। तो सोचिए, एक कलाकार जो इतनी ऊंचाई तक पहुंच गया है, लेकिन जब अपने चाहने वालों से मिलता है, जब अपने फैंस से मिलता है, तो किस तरह से जो है अपनी ज़मीन से जुड़ा रहता है, किस तरह से जो है इतने हम्बल होते हैं। ये कहीं ना कहीं ऐसे बड़े सितारे से ही हम सीख सकते हैं।

0: के सितारे।
1: चलिए आज के इस प्रोग्राम में अमिताभ बच्चन जी की बात हो रही है। ऐसे कितने सारे फिल्में इन्होंने की है, लिस्ट गिनते रहेंगे तो ये दो घंटे का प्रोग्राम भी मानो कम पड़ जाएगा। और वहीं पर अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए इन्हें कई अवार्ड्स भी प्राप्त हुए हैं। जी हाँ, फिल्म फेयर की ओर से इन्हें काफ़ी अवार्ड्स मिले हैं। वहीं पर नेशनल अवार्ड की बात करें तो अग्निपथ, ब्लैक, पा और पीकू जैसी फिल्मों के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड ये ले गए हैं। और वहीं पर भारत सरकार की ओर से इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी नवाजा गया है। इसके अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी इन्हें मिले हैं। आपके सितारे ये प्रोग्राम है और आपके सितारे जो प्रोग्राम है हर मंडे और ट्यूसडेज को रेडियो मनोरंजन पर चलता है। और अमिताभ बच्चन जी की खासियत ये है, आज तो इन पर बात हो रही है, तो इनकी खासियत सिर्फ ये नहीं है कि ये सुपरहिट फिल्में देते हैं, बल्कि इनकी लगातार बदलते समय के साथ

0: खुद को एक नए रूप में पेश करना और अपने आप को एक नए अंदाज में ढालना, लोगों को इनकी ये अदा बहुत ही पसंद आती है और लोग जो है इनके एक्टिंग के आज भी दीवाने हैं। इसी वजह से हिंदी सिनेमा के सबसे प्रभावशाली एक्टर्स में इनके जो है नाम को गिना जाता है। तो दोस्तों, आपके सितारे इस प्रोग्राम का सफर बस यहीं तक रहा। इतने प्यार से आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए थैंक यू सो सो मच। जल्द हमारी आपकी मुलाकात फिर होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। रेडियो मनोरंजन पर ऐसे ही हमारा साथ देते रहिए, हमारे प्रोग्रामों को सुनते रहिए। नमस्कार आप सभी को, हैव अ लवली इवनिंग ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मनोरंजन।
1: You're listening to RM3 Radio Man.

0: amore mio, dove sei tu? Hey, क्या गा रहा है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।

0: Center 94 North South 95.6 East West 98.2. You are listening to RM3 Radio.
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ हमारी धरोहर।
2: नमस्ते, हमारी धरोहर में आप सब कोई के स्वागत बा। आज 11 अक्टूबर के मनावे होला यूनिसेफ के अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस पर हमने के कार्यक्रम रही। हर बरिस 11 अक्टूबर के दिन एगो विशेष दिन मानल जाला, जहां पर छोकरा और छोकरी लड़का के बीच में जोन फर्क बा, जोन असमानता बा, ओकर से निपटे खातिर विचार विमर्श करल जाला। और देखत है जा कि यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र संघ ये बात पर बहुत जोर देवेला कि जोन बेटा और बेटी घर में बढ़ाता उन लोग के बीच दू नज़र यानी डिस्क्रिमिनेशन के चाहे दूर करेगी। कहे कि हमने हमेशा से एगो पुरुष प्रधान समाज में रहले आल है सा, और ये पुरुष प्रधान समाज में बेटी के बहुत कम दर्जा देवल जात रहल। कितने देश में जब बेटी के जन्म होवेला तो वो एगो खुशहाली के मौका नहीं रहेला, लेकिन आज ये मानसिकता के बदले पर बहुत जोर देवल जाता, एकर पर कार्य करल जाता। और फिर समय के साथ व्यक्तिगत रूप से परिवार लोग ये देख ले आवत हवंजा कि बेटा और बेटी के बीच फर्क इतना ही है कि बेटी हमेशा आपके बेटी रहेला, लेकिन बोलल जाला कि बेटा तब तक बेटा रहेला जब तक कि आपके घर में एगो बहू नहीं चलाए। तो इ नज़रिया से देखत है जा कि बेटी के मान आज हमने के समाज में बढ़ाता बेटा के तरह ही हुआ था, और बेटी लोग भी अपन काबिलियत समय के साथ सबके सामने प्रमाणित करत हवन जा, वो चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में रही, जिम्मेदारी निभावे के क्षेत्र में रही, या फिर कोनो भी ओहदा संभाले के बात करबा, तो बेटी लोग कोनो भी दृष्टि से आज पीछे नहीं हवन सा। ये देखा गलबा कि छोकरी लोग सबसे जस्ती डिजिटल दुनिया से कट ऑफ हवन सा देसन मगे पहुंचा। ये देखा गलबा कि ढेर देश में छोकरी लोग सबसे जस्ती डिजिटल कनेक्टिविटी डिजिटल दुनिया से अलग हवन सा कट ऑफ हवन सा। छोकरा और छोकरी के बीच जो फर्क बा दुनिया

0: इंटरनेट के इस्तेमाल के लेके वो समय के साथ अब कमती हुआ था, लेकिन 2013 में 11% रहल इकाई, और फिर 2019 और 20 में जब कोविड 19 चला रहल तो ये और बढ़ गल रहल, जोन खाई रहल। और ये भी देखा गल कि छोकरी लोग के ढेर देश में अपन मोबाइल फ़ोन नहीं है, उन लोग अपन भाई लोग के कंप्यूटर उन लोग के मोबाइल फ़ोन लेके इस्तेमाल करे लंजा। और यूनाइटेड नेशंस और यूनिसेफ यही सब खाई के मापे पर काम करा था। और ये भी देखा जाता कि कोनो कोनो देश आज भी बा जहाँ पर छोकरी के पढ़ाई पर ध्यान नहीं देवल जाता, और विश्व भर के सब देश से मांग करल जाता इस दिन पर कि आप बेटी के भी बराबर शिक्षित करबा जैसे कि बेटा के शिक्षा देवल जाता। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय दिन मनावल जाता एकर यही मकसद है कि बेटी लोग के इतना काबिल बनावल जाए जहाँ पर वो लोग बेटा लोग संगे खड़ा होके इस देश के जोन रिवोल्यूशन डिजिटल रिवोल्यूशन चलता जोन वैज्ञानिक क्रांति चलता ओकर में साथ सहयोग दिया जा। कहे कि हमने के इस विश्व के जोन आधा से जस्ती संसाधन ह्यूमन रिसोर्स बा वो छोकरी ही है। कार्यक्रम के ध्यान से सुनला, बेटी दिवस के आप सबको एक बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद, नमस्ते।
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।

0: किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: नमस्कार, आदाब, शाम के 6 बजे हैं। पेश हैं समाचार बुलेटिन। सबसे पहले आज की बड़ी खबरें। गोली से जख्मी एलोजी टुमा की सर्जरी करने के लिए भारत से 13 डॉक्टरों की टीम मॉरिशस में। हवाई अड्डे से सीधा जीटू अस्पताल जाकर डॉक्टरों ने मरीजा की हालत का लिया जायजा। प्रधानमंत्री खुद एलोजी टुमा के मामले पर निगरानी रख रहे हैं। आज उन्होंने डॉ

0: डॉक्टरों से मुलाकात की और घायल महिला की स्थिति पर जानकारी ली। वाटर टैंक एंड वाटर पंप ग्रांट स्कीम से फायदा उठाने के लिए रात 3 बजे से CWA दफ्तरों के सामने लोगों की लंबी कतारें। भूमिगत जलाशयों की नई फहरिस्त आम ताकि नए जल स्रोतों को विकसित किया जा सके, आज कृषि उद्योग मंत्री ने मुख्तलिफ साझेदारों से की मुलाकात। और विदेश में सूडान में हमले, 72 नागरिकों की मौत। नमस्कार, रादाब। किम्स हॉस्पिटल से भारतीय माहिर डॉक्टरों की टीम आज दोपहर बाद मुर्शिद पहुंची। उसने जीतू अस्पताल में एलुजीटोमा की हालत का जायजा लिया। जुमे की रात की घटनाओं के चलते मुर्शिद सरकार ने भारतीय डॉक्टरों की मदद की मांग की। ये टीम हवाई अड्डे से सीधा अस्पताल गई, जहां मरीजा की स्थिति का जायजा लिया गया। पुलिस की भारी तैनाती के तहत एलुजीटोमा को जीतू अस्पताल ले जाया गया। सिंचा मुतु करुणा लालू।
1: भारतीय डॉक्टरों की टीम 3:45 बजे डॉक्टर राकेश जाला के नेतृत्व में पोर्टवी के जीतू अस्पताल पहुंची, जहां स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू सहित अन्यों द्वारा उसका स्वागत किया गया। भारतीय चिकित्सा टीम में रीढ़ की हड्डी और तंत्रिका तंत्र के एक सर्जन, एक इंटरवेंशनल न्यूरोलॉजिस्ट तथा गहन चिकित्सा के एक विशेषज्ञ सहित अन्य चिकित्सक शामिल हैं। डॉक्टरों की टीम इमारत की दूसरी मंजिल पर गई, जहाँ उन्होंने मरीज एलोजी टोमा को देखा। शुक्रवार शाम से विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती एलोजी को कुछ समय पहले जीतू अस्पताल में स्थानांतरित किया गया था। अस्पताल के कॉरिडोर में एलोजी के परिजन उसके स्वास्थ्य की जानकारी पाने के लिए इंतजार में थे। करीब 25 मिनट से अधिक समय तक अस्पताल में रहने के बाद भारतीय डॉक्टरों की टीम प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए ट्रेजरी बिल्डिंग के लिए रवाना हुई।
0: एलुजीटोमा की हालत पर स्पष्ट जानकारी देने के लिए भारतीय डॉक्टरों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। मरीजा के पति भी हाजिर थे। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने भारत के प्रति आभार प्रकट किया, जिसने इतने कम वक्त में एक टीम मॉरिशस भेजी। प्रधानमंत्री ने कहा कि एलुजीटोमा को बेहतरीन सेवा देने के लिए सभी मुमकिन कोशिश की जा रही है। उन्होंने मॉरिशनों से मांग की कि वे सब्र से काम लें, किसी भी तरह की अनुचित हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जोनाथन टोमा ने कहा कि उनकी प्राथमिकता फिलहाल उनकी पत्नी की सलामती है। प्रधानमंत्री और जोनाथन टोमा को सुनते हैं।
2: Qu'il venait dans une certaine tour d'un et je fais l'affaire pour toi qui parfois ne vous a pas réalisé. Ils pas me disent que je fais l'opération. Une question, follow-up après. Souvent, ici, notre l'église à Boutla, pour tous les autres équipes de venir là. Pour tout le monde, avec mon médecin, depuis ici, même avant, là, je viens, je fais une première assessment. Là, je vais faire l'opération. Et jusqu'à l'air, c'est vrai qu'il paraît qu'une baleine tous tout ce man cervical bone. Je ne peux pas paraître un gros dommage là. Je vais faire ben, des outils en cours, tension de mazo, côté artère, etc. etc. Après ça, je vais faire l'opération. Et on me dit, je ne sais pas. Il y en a fait une enfant de la médecine. Pour les affaires de dire, first do no harm. Parce qu'il y a bien coup de balle là, il dit, si le routier, il ne fait plus de masse un coup là. Ils ont bien, une grande expérience que je vais faire. Donc c'est ça que je vais faire. C'est un peu envie de rassurer que tout le monde qui est capable de faire, nous faire. Parce que c'est qu'il n'arrive là, pas si vous arrivez. Quand tout le monde s'est avec ça. Et on me fait un appel au calme. Je me dis, je ne peux pas exploiter cette situation là. Je donne l'occasion. Au lieu de penser à une madame et à un petit enfant, puis ce monsieur-là, pousser trop bonne solution, et avec une enflamme, c'est malheureux, mais dit comme ça. Le monde fait l'appel après, il a fait un appel, il m'a dit, mais il faut citer le Facebook, il faut citer. Qui s'en va pas accepter. Il me dit, je ne finis pas par souhaiter à lui, mais chacun va prendre ses responsabilités. Maman, on sort d'un

0: Pagkala si PD, di ba po ang chief ng tribuno? Ipagsiptob sa, yan yung pabulis sa akin.
1: May mga pachatang si pa, pa na TPD o may mga sabi suwi, sabi fesu suwi, yun fini fin plan, hein? Yun fini fin plan, comment je peux faire sa intervention là? Yun fini, yun retikli, là, yun ben rencontre, et tout de suite, comment yun fini, sabi pa perdi le temps. Je suis dit, nous devons bien aller, excuse-nous, nous devons bien aller pour nous capables de sauver la béatifie. Et nous extra satisfaits, nous remercions beaucoup ma ministre, M. Annick Bétu, M. Premier ministre, ma députée dans l'endroit. Je tout, il y en a trop beaucoup. Nous connaissons la population, nous ressuscité également, nous soutenons également, il y a beaucoup de messages. Beaucoup de notifications rentrées au téléphone, pas facile pour répondre N pour N. Mais mon remercie sur tout. Merci pour toute la prière. Et voilà, nous mettons tout dans la même bonté, parce que la foi est une grande affaire. Comme on va dire dans tout mon interview, nous pouvons aller, nous pouvons aller aussi, mais nous pouvons la guerre, nous pouvons manifester. Nous n'avons pas qu'un surprise qui est capable, qui ne peut pas prendre la langue, qui pourrait tourner dans l'ordre. Correct. Il finit, arrive ce qui arrive, nous quittons sur la santé, après là, nous avons pris des temps parce qu'il y a un long chemin pour nous rester. Et que petit, nous avons suivi, nous avons la tête aux épaules. Plus important pour moi, c'est que mon banane retourne en classe.
2: कौन लिव्यू में गोलीबारी की घटना के सिलसिले में डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशंस की सलाह पर आज पुलिस सर्जेंट टकूर रुजिल जिला अदालत के सामने पेश हुए. उन पर पोसेशन ऑफ फायर आर्म विद इंटेंट टू इंडेंजर लाइफ का अस्थाई इल्जाम दर्ज है. इसके अलावा फायर आर्म्स एक्ट की धारा 37(1) का उल्लंघन करते हुए उन पर यूजिंग फायर आर्म टू इंटिमिडेट तथा क्रिमिनल कोड की धारा 239(1) के उल्लंघन में इनवॉलंटरी वाउंड्स और वंस एंड ब्लोज बाय इम्प्रूडेंस के नए अस्थाई आरोप दर्ज हैं. माँ ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में दूसरा स्वरूप है. नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ की जाती है. माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या, त्याग, धैर्य, ज्ञान और भक्ति की देवी हैं. उनकी पूजा करने से भक्तों के मन की शांति मिलती है और उन्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा भी मिलती है. करुणा लालू.
3: श्रद्धा, भक्ति और शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्रि ये हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है. इसके दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है. नवरात्रि के अवसर पर मंदिरों और पूजा स्थलों को आकर्षक ढंग से सजाया जाता है. श्रद्धालु व्रत रखते हैं, माँ दुर्गा से सुख शांति, समृद्धि तथा परिवार की खुशहाली की कामना करते हैं.
4: श्री राम कृष्ण मंदिर होस्टे कांगुब में पूजा कर रहे हैं. आज बहुत से लोग पूजा पाठ में आए हुए हैं और इस 9 दिनों में लोग बहुत भक्ति भाव से रहेंगे, अपना आचरण पर ध्यान देंगे, सब कुछ पर ध्यान देंगे और पूजा पाठ में लीन रहेंगे, दुर्गा माँ की पूजा करके आशीर्वाद पाएंगे.

काल प्रथम रात्रि के दौरान गुजतया के श्री राम कृष्ण मंदिर में मां के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना की गई। मां शैलपुत्री की पूजा हमें जीवन में दृढ़ रहने, कठिनाइयों का सामना करने और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना की जा रही है। उनकी पूजा करने से भक्तों को धैर्य, आत्मविश्वास और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति प्राप्त होती है। वस्तुतः प्रत्येक स्वरूप शक्ति, साहस, ज्ञान और करुणा का संदेश देता है। ये त्यौहार धार्मिक आस्था के साथ साथ सामाजिक एकता, सांस्कृतिक विरासत और आपसी भाईचारे को मजबूत करता है।

स्वच्छता, जहां पर पवित्रता है, जहां पर स्वच्छता है, वहां पर एकता है, यूनिटी। जहां पर स्वच्छता वहां पर एकता, और जहां पर एकता यूनिटी, वहां पर आदर सम्मान है, रिस्पेक्ट। परिवार का मतलब है जहां पर ट्रस्ट विश्वास है, और जहां पर आदर है सम्मान है, और जहां पर दोनों है वहां पर परिवार है, और वहां परिवार में स्वयं माता वास करती है।

नवरात्रि हमें ये संदेश देती हैं कि सत्य और अच्छाई की हमेशा विजय होती है तथा बुराई पर अच्छाई की जीत निश्चित है। ये पर्व महिलाओं के सम्मान, शक्ति और आत्मविश्वास का भी प्रतीक है। माँ दुर्गा से प्रार्थना करें कि वे हमारे जीवन से दुख एवं कठिनाइयों को दूर करें तथा पूरे देश में शांति, प्रेम एवं सद्भाव बनाए रखें।

0: सुबह रात के 3 बजे से लोग CWA के दफ्तरों के सामने खड़े हैं ताकि उन्हें वाटर टैंक एंड वाटर पंप ग्रांट स्कीम से लाभ हो। ऐसे एम हरूफ से शुरू सरनेम वाले आज सैंपल और रुजिल में थे। इस स्कीम के तहत 15,000 रुपये की लागत पर सरकार वाटर टैंक और वाटर पंप देने के लिए रजामंद है। ये बात जाने कि हमारी एक टीम ने वहाँ कतारों को देखा और कुछ लोगों से बात की।
1: सैंपल में सेंट्रल वाटर अथॉरिटी के मुख्यालय में फोन पर और काउंटर पर भी सवालों की बौछार है। टीमें जैसे तैसे मांगों को पूरा करने और जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराने में लगी हैं। वाटर टैंक और वाटर पंप ग्रांट स्कीम से लाभ उठाने के वास्ते सैकड़ों लोग रजिस्ट्रेशन कराने आए। 48 घंटों के अंदर अंदर ये कदम लागू किया गया पानी की कमी की समस्या के चलते।
2: Nous fait un meter reader à l'eau site à fin de vérification check and balance et tout de suite envoyer ça à DBM.
1: रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद मीटर रीडर स्थल पर परीक्षण करने जाता है। मांग DBM भेजी जाती है। 5 दिन लगेंगे। ये ऑनलाइन प्रणाली है जो शनिवार तक पूरी हुई, लेकिन 2-3 चीजें अभी भी बाकी हैं। कई लोग इसके बारे में जानते ही यहाँ आ पहुँचे। सुबह 9 भी नहीं बजे थे, लेकिन कतार का अंत नजर भी नहीं आ रहा था।
3: Depuis qu'il est où là, Madame Denise?
4: C'est du matin. Vous respirez, moi, vous respirez coulé.
3: Pas de pense pour prendre tank, tout ça là avant.
5: Ah, mais tu n'es qu'un tank, mon ramassé depuis de carreau. Sans même, mon tank plastique là, là. Là, là, mon mit, sans même.
1: Lambi Qatar ke bagal mein behti nadi, mano aag ko hawa de rahi ho.
6: Au moins 200-300 personnes devant nous. Je suis capable de faire dans mon centre social, mon place côté.
1: कुछ लोग आगे से सोच कर खाने पीने का सामान भी साथ ले आए थे। देश भर के सेंट्रल वाटर अथॉरिटी के दफ्तरों में पंजीकरण किया जा रहा है। रोजिल में दिन के दौरान मेज की जगह दीवारों ने ले ली। इसी के सहारे लोग खुद ही अपना फॉर्म भरने लगे।
7: Avec un papier de l'eau.

0: c'est pas tout le monde qui nous remplit pomme.
1: दो टैंक और एक पंप के लिए घंटों इंतजार, कतार के अंत में सूखे नल का नजारा फिर कभी न देखने वालों की उम्मीदें भी सूखने लगी। अब सवाल ये भी खड़ा होता है, क्या सैकड़ों घरों में दो टैंक भरने का पानी भी है या नहीं।
2: पानी की सप्लाई को लेकर मुश्किलें और कृषि उत्पादन, पशुपालन और खाद्य सुरक्षा पर इनके अंजाम घटाने के लिए कृषि उद्योग मंत्री अरविंद बुलेल ने एक सामूहिक सहयोग की मांग की। आज उन्होंने मुतालिक साझेदारों से मुलाकात की। देश के उत्तर में खेतिहरों की मदद करने के लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी। इस बैठक के दौरान भूमिगत जलाशयों की एक फहरिस्त भी तैयार की गई ताकि पानी के नए स्रोतों को पहचाना जा सके। माधवी जागोनाथ की रिपोर्ट पर यह विवरण।
1: कृषि उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में विभिन्न संबद्ध पक्षों ने पानी की मौजूदा कमी से निपटने के लिए प्रस्तावित कदमों पर चर्चा की। साथ ही कृषि उत्पादन, पशुपालन और खाद्य सुरक्षा पर पड़ने वाले इसके प्रभावों पर भी विचार विमर्श किया गया। उत्तरी क्षेत्र में खेती करने वाले लगभग 3,000 खेतीहर सूखे से प्रभावित हैं। Planters Reform Association के अध्यक्ष सलील रॉय बताते हैं,
3: मैं कार्ड प्लांटे जेन अ बहुत रिवियर कि अल्वे ला मेयर अलोर सा सेट एन प्ली ग्रैंड वेस्ट।
1: नदियों का पानी सीधे समंदर में जाता है, जाया होता है। कंटेनराइज्ड प्रेशराइज्ड फिल्टर डाल सकते हैं। गंभीर सूखा नहीं है, पानी जमा करने की समस्या है। आशा है ये समस्या जल्द सुलझ जाए। रुस्पेल शुगर स्टेट बोर्ड ने आवश्यकता पड़ने पर पानी की बोरिंग के लिए कुछ स्थलों की पहचान की है। शुगर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट अपनी जमीन उपलब्ध कराने को तैयार है। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड का कहना है कि सब्जियों की कमी होने पर एक योजना तैयार है। उसके जनरल मैनेजर नवीन जयपाल सिंह बताते हैं, बीन्स, ककड़ी आदि हवाई जहाज से ला सकते हैं, बाकी समुद्री मार्ग से। हम तैयार हैं, सूखा हो या नहीं, दिसंबर जनवरी के लिए आयात योजना तैयार है, प्याज, आलू और लहसुन के लिए। कृषि उद्योग मंत्री अरविंद बुलेल ने सभी संबंधित पक्षों से आपसी सहयोग बढ़ाने और उपलब्ध जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने की अपील की। वे बताते
4: हैं,
1: सब्जियों को लेकर समस्या नहीं है, बीज भी है, पशुपालकों के लिए पानी भी, लेकिन सोच समझ कर इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। कुछ इलाकों में पानी तो है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। हमने वाटर रिसोर्सेज से संपर्क किया, हम चाहते हैं कि पानी का इस्तेमाल अच्छे से हो। मॉरिशस केन इंडस्ट्री अथॉरिटी भी साल के अंत में संभावित सूखे की स्थिति के लिए तैयार हैं। प्रशासन का कहना है कि गन्ने की फसल सूखे की स्थिति में भी काफी हद तक अच्छी होती है।
2: गर्मी की शुरुआत से बहुत से लोग एयर कंडीशनर खरीदने लगे हैं, इससे बिजली पर निर्भरता बढ़ने लगी है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का अनुमान है कि इस मौसम गर्मा में 600 मेगावाट बिजली की मांग होगी, इसीलिए सीईबी इस महीने से चेतना अभियान की लॉन्चिंग करेगी। उपभोक्ताओं से मांग है कि वो बिजली को जाया ना करें। बेल एंड रिमांड कोर्ट ने मामी गवातुमांग को जमानत पर रिहा करने की मांग को ठुकराया। मैजिस्ट्रेट का कहना है कि सबूतों में हेराफेरी, गवाहों के साथ बातचीत या फरार होने के खतरे हैं। मामले को अगले 3 नवंबर के लिए स्थगित किया गया। मामी गवातुमांग वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश हुए। उनके वकील सुप्रीम अदालत में इस रूलिंग के खिलाफ अपील करेंगे। आज सुबह भारतीय नौसेना जहाज INS निर्देशक मॉरिशस पहुंचा। ये बहुत ही प्रतीकात्मक माना जा रहा है क्योंकि हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में मॉरिशस और भारत के बीच 20 सालों का सहयोग है। और आपको बता दें कि 15 अक्टूबर से जहाज हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में अपना काम शुरू कर रहा है। नीतूषा जिया की रिपोर्ट।
5: इस पड़ाव के साथ हाइड्रोग्राफी यानी जल सर्वेक्षण के क्षेत्र में मॉरिशस और भारत के बीच सहयोग के 20 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये एक ऐसा विज्ञान है जो भले ही दिखाई नहीं देता लेकिन समुद्री नेविगेशन की सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। INS निर्देशक ने बंदर

0: पर लंगर डाला है। निर्देशक का अर्थ है रास्ता दिखाने वाला। अब ये जहाज हमारे क्षेत्रीय समुद्री जल के बारे में अधिक से अधिक आंकड़े जुटाने की दिशा में मार्गदर्शन करेगा। इसकी मदद से मॉरिशस और रोड्रिग्स के बीच के समुद्री क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जाएगा। ये सहयोग मॉरिशस और भारत के बीच साल 2005 में तय एक समझौते का हिस्सा है। तब से भारतीय टीमें मॉरिशस की टीमों के साथ मिलकर देश की हाइड्रोग्राफी संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम कर रही है। INS निर्देशक पहले ही अगालिगा द्वीप का दौरा कर चुका है। इस मिशन के तहत द्वीप का मैप तय किया गया था। इस जहाज की मदद से हम एक अध्ययन तैयार करेंगे ताकि हमें पता चले कि दोनों द्वीपों के बीच कमर्शियल जहाजों के लिए किन किन नेविगेशन रूट्स हैं, यानी मॉरिशस और रोड्रिग्स के बीच। सर्वे के लिए ये भारत का सबसे बड़ा जहाज है। भारतीय नौसेना में वर्ष 2024 में शामिल हुआ INS निर्देशक 15 अक्टूबर से हाइड्रोग्राफी सर्वेक्षण का काम शुरू करेगा। ये सर्वेक्षण न केवल समुद्र को बेहतर ढंग से समझने में मदद देगा, बल्कि समुद्री नेविगेशन के लिए मौजूद खतरों की पहचान करने में भी सहायक होगा। दोनों देशों की कोशिशों के जरिए हमने नेविगेशन के लिए 13 पेपर मैप्स और 15 इलेक्ट्रॉनिक मैप्स तैयार किए, जो भारत के राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक सेवाओं द्वारा प्रकाशित किए गए। हमने मॉरिशस हाइड्रोग्राफिक सर्विसेज एक्ट का गठन किया है, जो एक महत्वपूर्ण कदम है। इस विधेयक के जरिए मॉरिशस में हाइड्रोग्राफी के लिए कानून भी बिठाए गए हैं।
1: This legislation lays a foundation for a dedicated legal and institutional framework to support hydrographic activities in Mauritius.
0: लगभग 2.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र इसके बदलते स्वरूप को बेहतर ढंग से समझने के लिए अधिक से अधिक आंकड़े जुटाना अब पहले से कई अधिक आवश्यक हो गया है।
2: सूडान के सरहदी इलाके में हवाई हमले किए गए कम से कम 72 नागरिकों की मौत हुई। इमरजेंसी वकीलों का कहना है कि खार्तूम में सूडानी हिस्से में दरियाई नील के पास खान स्थलों को निशाना बनाया गया। रियाद सऊदी अरब में किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमला किया गया। मुसाफिरों के ठहरने के हॉल में आग लगी, एक व्यक्ति की मौत हुई और 11 लोग जख्मी हुए। कल ही इसी हवाई अड्डे पर किए गए हमलों में 13 मौतें दर्ज हुई हैं और 308 लोग घायल हुए थे। विधिमा सिपुरन के साथ अन्य खबरें।
3: राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा उस घोषणा के बावजूद जिसे उन्होंने ऊर्जा युद्ध विराम कहा था, रूसी हमलों के बाद यूक्रेन के 3 क्षेत्रों में बिजली गुल होने की सूचना मिली है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने रविवार की घोषणा पर पहले आश्चर्य व्यक्त किया और बाद में कहा कि अगर मॉस्को इसका पालन करता है तो कीव भी इसका समर्थन करेगा। सऊदी अरब के सिविल एविएशन अथॉरिटी के अनुसार किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 11 लोग घायल हो गए। घायलों को चिकित्सा देखभाल के लिए विभिन्न अस्पतालों में स्थानांतरित कर दिया गया है। पोप लियो 14 ने घोषणा की है कि मेडिकल चेकअप के दौरान उनके फेफड़े में एक गांठ पाए जाने के बाद आने वाले दिनों में उनकी सर्जरी की जाएगी। 71 वर्षीय पोप ने कहा कि उनकी मेडिकल टीम का मानना है कि ऑपरेशन करना सही रहेगा और उन्होंने इस ऑपरेशन के लिए सहमति दे दी है।
2: अब करते हैं मौसम की बात। आम हालत, दक्षिण पूर्व से आ रहे कुछ बादल आज रात से स्थानीय मौसम को प्रभावित करेंगे। मस्केरेंस के दक्षिण में एक जोरदार एंटी साइक्लोन पाया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे इलाके में ठंड है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात और कल सुबह घने बादल होंगे। दक्षिण पूर्व और सेंट्रल प्लाटों में बादल घिराएंगे और रह रहकर वर्षा होगी। कल दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा, सिवाय ऊंचे इलाकों में हल्की बारिश होगी। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। लगून के उस पार समुद्र चंचल रहेगा, 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी दक्षिण और पश्चिम वाले लगूनों में। और आज रात से समुद्र की हालत धीरे धीरे खराब होने लगेगी, इसी वजह से आज रात से दूर समुद्र में न जाने की दरख्वास्त है। तापमान, सेंट्रल प्लाटू में न्यूनतम तापमान 16 से 18, अधिकतम 22 से 24, साहिली इलाकों में

कम तापमान 20 से 22 अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह 5:40 पर सूरज उगेगा और शाम को 6:10 पर सूरज ढल जाएगा।

तो ये थी अब तक की खबरें आप तक के बुलेटिन पहुंचाने में हमें फ्रेंच और समाचार विभाग और हमारे टेक्निकी साथी लुदोविक जोहंगिया की मदद मिली है। आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब थोड़ी देर में आप शोक समाचार सुन पाएंगे। नमस्कार और आदाब।

Mosselman Sitaram, Henrietta Vakwami, Bastard Salke, 62 years old, Shri Rup Singh Sutrugan, Shri Rup Singh Sutrugan, जो गौतम के नाम से ज्यादा जाने जाते थे और भूमि मंत्रालय में पूर्व सीनियर ट्रैफिक सेंसस ऑफिसर थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल 11 बजे इनके घर मोसलमान सीताराम और येता वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्वामा मेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रमेशन टुमारो एट 11 AM। डॉक्टर इद्रिस गुमानी स्ट्रीट प्लेजेंस रोजिल में 77 साल के श्री राजा सिवेन गंगेन, श्री राजा सिवेन गंगेन जो सिवेन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी बुध को 11 बजे इनकी पत्नी विनोदा गंगेन के घर डॉक्टर इद्रिस गुमानी स्ट्रीट प्लेजेंस रोजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लाशोमिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन वेंसडे एट 11 AM। आचाम लेन मोताइलोंग में 69 साल की श्रीमती कमलावती बजन, श्रीमती कमलावती बजन पैदाइशी नाम मीटू जो कमलावती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल 10 बजे इनके बेटे सूरज बजन के घर आचाम लेन मोताइलोंग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए खेव क्यूआ की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 10 AM। तागो स्ट्रीट रोशनुआ में 74 साल के श्री तिमल सिंह लुबिन, श्री तिमल सिंह लुबिन जो कुमार ऑंसियन लाबोया के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल 11 बजे इनके बेटे विशाल लुबिन के घर टैगो स्ट्रीट रोशनुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रोशनुआ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। नंबर 1 रोतेन लेन एवेन्यू बियातो कैट्रोबोन में 90 साल की श्रीमती मायावंती मोनिया, श्रीमती मायावंती मोनिया जो इंदू के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल ढाई बजे इनके घर रोतेन लेन एवेन्यू बियातो कैट्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 2 PM। मिशन क्रॉस रोड लालमाची में 64 साल के श्री जयराज सुखवरिया, श्री जयराज सुखवरिया जो विवेक के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल 9 बजे इनकी पत्नी कविता सुखवरिया के घर मिशन क्रॉस रोड लालमाची से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोंचा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 9 AM। गांधी रोड लालमाची में 92 साल की श्रीमती लीलावती कोलीचन, श्रीमती लीलावती कोलीचन पैदाइशी नाम रामेश्वर, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल 10 बजे इनके घर गांधी रोड लालमाची से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी रोड लालमाची की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 10 AM। मोगू में 61 साल के श्री अनिल रीगा, श्री अनिल रीगा जो पेट्रोल के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल 9 बजे इनकी पत्नी धनवंती रीगा के घर मोगू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दागुची की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 9 AM। नंबर 1 20 डॉक्टर मोंप्ले रोड मुबासे में 63 साल की श्रीमती बसंती चुकराना रायनन, श्रीमती बसंती चुकराना रायनन पैदाइशी नाम ओकाल जो संगीता के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल एक बजे इनके घर डॉक्टर मोंप्ले रोड बुबासन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 1 PM। शोक में दुबे परिवारों से हम हमदर्दी हैं।

इतने आसानी से कुछ नहीं मिलता है, लेकिन मिलने के लिए, प्राप्त करने के लिए अगर हम लोग जितोर मेहनत करेंगे, सो ऑटोमेटिकली हम उस चीज की जो शिद्दत चाह में है, हम लोगों को मिल ही जाएंगे। नमस्कार और आदाब, नई सोच कार्यक्रम में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। इस वक्त शाम के 6:38 हो गए हैं और ऐसे टाइम पर बहुत सारे लोग नवरात को लेकर के काफ़ी बिजी हैं, बहुत सारे लोग काम से निकलकर घर की ओर जा रहे हैं, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यही बहुत बड़ी बात है। लेट मी इन्फॉर्म यू कि मैं आपका साथ दूंगा यहां पर रात के 9 तक। इसका मतलब ये है कि रात के 7 तक हम लोग आपके साथ रहेंगे, फिर इसके बाद 7 से 9 तक दिलों की आवाज़। स्टे कनेक्टेड।

नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC wishes you all a pious navratri।

जी हाँ बिल्कुल, नवरात्र को लेकर के बहुत सारी तैयारियां हो गई हैं और बहुत सारे लोग काफ़ी बिजी हैं, काफ़ी व्यस्त हैं और हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। इसके लिए हम आपको कहना चाहेंगे थैंक यू सो मच। नई सोच कार्यक्रम में बस हम यही कहना चाहेंगे, जितना आप मेहनत करेंगे उसका फल हो सकता है आज आपको नहीं मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, एक हफ्ते के बाद नहीं मिलेगा, लेकिन एक न एक दिन तो ज़रूर मिलेगा। क्योंकि एक इंसान जब एक रेस में जीत हासिल करता है तो वो जो जीत के जो पीछे की जो मेहनत है वो एक दिन या दो दिन या फिर एक हफ्ते या फिर ट्रेनिंग के दौरान में नहीं होते हैं, लेकिन उनकी जो मेहनत है, उनकी जो ट्रेनिंग है, उनकी जो डिसिप्लिन है, उनकी जो कंसिस्टेंसी है, वो हो सकता है 5-10 साल के हो सकते हैं, तब जा करके उनकी जीत होती है।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, अपनी घर ही मिला लीजिए। इस वक्त रात के ठीक का 7 बजे हैं।

यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC विशेस यू ऑल अ पायस नवरात्रि।

जी हाँ बिल्कुल, हम तो ना शायर हैं ना शायरी करने वाले बंदे हैं, बस आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए हम यहाँ पर आ ही जाते हैं, बस आप लोगों के होने का एहसास हो गया है। नमस्कार राडा, वंस अगेन वेलकम बैक। और नई सोच कार्यक्रम के बाद हम दिलों की आवाज़ कार्यक्रम लेकर के पहुँच गए हैं।

उन दिनों जबकि तुम थे यहाँ, जिंदगी जागी जागी सी थी, सारे मौसम बड़े मेहरबान दोस्त थे, रास्ते दावतनामे थे जो मंजिलों ने लिखे थे जमी पर हमारे लिए, पेड़ बाहें पसारे खड़े थे हमें छाँव की शॉल पहनाने के वास्ते, शाम को सब सितारे बहुत मुस्कुराते थे जब देखते थे हमें, आती जाती हवाएं कोई गीत खुशबू का गाती हुई छेड़ती थीं गुजर जाती थीं, आसमां पिघले नीलम का एक गहरा तालाब था जिसमें हर रात एक चांद का फूल खिलता था, और पिघले नीलम की लहरों में बहता हुआ वो हमारे दिलों के किनारों को

कैसे आएगी? आप ये क्यों समझ न पाते हैं, याद तो सिर्फ उनकी आती है, हम कभी जिनको भूल जाते हैं।

चलिए अकेलेपन और वीरानियों को दूर भगाने का सॉलिड आइडिया जो हमारे पास है, अगर आप हमें फोन करेंगे 402-4076 पर 402-8070 पर, डेफिनेटली आप लोगों का यहाँ पर फरमाइश हम लेंगे ही। कौन सा गीत एग्जैक्टली आप सुनना पसंद करेंगे उसको हम यहाँ पर चलाएंगे, या फिर आप मैसेज भी भेज सकते हैं 5250-6200। जिंदगी की सराह हमें अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं यही बहुत बड़ी बात है। आप जहाँ पर भी हैं, आप कोई भी काम कर रही हैं, किसी भी या ट्रैफिक में फंस गए हैं या फिर घर पहुँच गए हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बैकग्राउंड म्यूज़िक में आप सुन रहे हैं और हमारे शो को एंजॉय करते जा रहे हैं, कुछ खाना पक रहा है या फिर नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं, आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं यही बहुत बड़ी बात है। चलिए अगला जो गीत है स्पेशली हम नीतीश लोखन के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे, उनके दो बच्चों और उनके लवली वाइफ, साथ ही साथ उनके दो बहन हैं जिनके नाम हैं सिंधी और अमृता।

0: amore mio, dove sei tu? Hey, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।

यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC wishes you all a pious navratri।

चलिए यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस मिले हैं ऑन 5250-6200 और ये गाना खासकर हम डेडिकेट करना चाहेंगे स्पेशली वी डू हैव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अनीता फम्फी कॉम्फ्ला का. उन्होंने कहा एक बहुत ही सुंदर गाना चलाने के लिए खासकर उनके सभी दोस्तों के नाम और उनके फैमिली मेंबर्स के नाम. हेलो भाई अभी अगला गीत स्पेशली जितने सारे जो बीडीसी परिवार हैं उनके लिए. दिस इज़ फ्रॉम बागवट बीडीसी. ये गाना खासकर हम डेडिकेट करना चाहेंगे सिल्लू के नाम जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं. साथ ही साथ वी डू हैव सभी पेंटाया फैमिली और सिल्लू फैमिली जो इक्वायो के हैं. ये गाना स्पेशली हम डेडिकेट करना चाहेंगे दारन श्वेता रवीश प्रीशा लवेशा अपादू फैमिली के नाम जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं. थैंक यू सो मच सुदेवी जो वाकवा की है हमेशा हमारे साथ जुड़ जाती है एंजॉयिंग द गुड शो अभी. थैंक यू सो मच. अगला गाना खासकर ट्रियोले की दादी ललिता के नाम डेडिकेट करना चाहती है. वी डू हैव अ कुशल फैमिली दीदी सुनीता शुभा देवीना मालेंगा के. वी ऑल्सो हैव कृषय कृष्णी परिणीता और सभी जितने सारे जो रामरतन फैमिली हैं विदाउट फॉरगेटिंग सुशीला और उनके सभी दोस्तों के नाम. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस गाने को सुनने के बाद सुन करके ही शायद उनके लबों पर एक मुस्कान इसलिए आएगी क्योंकि बहुत दिनों के बाद उन लोगों ने ये सुना होगा. दैट वाज द मोमेंट व्हेन आप किसी लड़की से बेमतहाशा मोहब्बत करते थे और आपको पता नहीं है कि किस तरह से आप उनको प्रपोज करें. 90s की बात तो अलग ही थी. तो दैट वाज द मोमेंट जहाँ पर आप अपने दिल की जो बात है वो बयां नहीं कर पाते थे. इस गाने में वो जो जज्बात है वो बयां किया गया है.

वैसे ऐसे सुंदर सुंदर गीत की फरमाइश सुनने के बाद ऐसा लगता है कि हम एक अलग दुनिया में चले गए हैं और थोड़ी देर में हम फर्स्ट आवर ऑफ दिलों की आवाज़ को ख़त्म करने वाले हैं। ये गाना खासकर हम डेडिकेट करना चाहेंगे ज्ञान बिहारी के नाम, उनकी लवली वाइफ है सबीता, साथ ही साथ उनके सिस्टर इन लो हैं गीता, संजीव, सुनील, रनी और रानी और शीतल के नाम ये गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे। एंड राइट नाउ वी ऑल्सो हैव चेतन और चेतन की लवली वाइफ विद्या भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पूनम, नतीन और साथ ही साथ विक्रांत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये गाना खासकर हम डेडिकेट करना चाहेंगे स्पेशली जय के नाम जो पिछे रिविया के रहने वाले

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, अपनी घर ही मिला लीजिए। इस वक्त रात के ठीक 8 बजे हैं।

नमस्कार रदा वंस अगेन वेलकम बैक फॉर यू दिलों की आवाज कार्यक्रम 402-80-70 पर फोन करने का सॉलिड आइडिया है आपके पास. बस फोन कीजिए और कौन सा गीत आप सुनना पसंद करेंगे उसको हम यहां पर चलाने की पूरी कोशिश करेंगे.

वक्त फ्लक्स से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उन्होंने इस गाने की फरमाइश की है और उनके सभी दोस्तों के नाम जो इस वक्त काम कर रहे हैं एट फ्लक का। मैं नाम नहीं लूंगा कहां पर, लेकिन आप जहां पर भी हो हम कहना चाहेंगे हेलो गो।

0: नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC wishes you all a pious navratri.
1: जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत सारे लोग। रात की 8:22 हो गए हैं। हेलो, अभी दीपक हियर फ्रॉम मुचिदा। प्लीज़ अगला गीत मेरी वाइफ मौशिनी के लिए हो जाए। आपने बहुत ही सुंदर गाने की फरमाइश की है। आदाब अभी, थैंक यू सो मच। आपको भी आदाब मोहतरमा है। यहाँ पर रेहाना हमेशा हमारे साथ जुड़ जाती हैं। एक गाना प्लीज़, जालिला के नाम, जो इस वक्त अब्रूद से हमें याद कर रही हैं, और साथ ही साथ रेहाना फिनिक्स हमें याद कर रही हैं। थैंक यू सो मच, व्हाट अ वंडरफुल सिलेक्शन। अभी दिस इज़ दारन, श्वेता, रवीश, प्रीशा, लवशा, अपाडू फैमिली फ्रॉम होशनवा।

पता है ऐसे गीत सुनने के बाद ऐसा लगता है कि मूड भी रोमांटिकली सेट हो गया है। और हमारे साथ जुड़ी हुई है मिस करिश्मा, जो मू सेलमों सैतोंद्रे के रहने वाली हैं, और विनय ने उनके लिए एक बहुत ही स्पेशल गीत की फरमाइश की है। कभी कभी हम ऐसे गीत चला लेते हैं जहाँ पर लोग एक अलग स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं। तो करिश्मा, खासकर अगला गीत स्पेशली हम आपके नाम डेडिकेट करना चाहेंगे। वी ऑल्सो हैव शिमला फ्रॉम थ्रियोली, और उन्होंने कहा कि उसे व्यू ग्रैंड पो जाना है, क्या बात। ये गाना स्पेशली हम डेडिकेट करना चाहेंगे आदित्य के नाम, जितने सारे बेचैन फैमिली हैं जो बिलिया के हैं, और उन्होंने कहा कि अगला गीत उनके दोस्तों के लिए हो जाए। वी ऑल्सो हैव मंगेश, साथ ही साथ है सुबी और वाक्वा, और ये गाना खासकर उनके हस्बैंड धीरज के नाम हम डेडिकेट कर रही है। वी ऑल्सो हैव बबीता बिसेसा फ्रॉम ला फ्लोरा, उनके तीन बच्चे हैं व्योमिनी, और साथ ही साथ है निधीश और जानवी, और उनके छोटे छोटे नाती के लिए जिनका नाम है आधिया। तो ये गाना खासकर आप लोगों के नाम।

सो गाइस टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ नाउ। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमारा साथ दिया। ये जो आने वाले थर्सडे है हम मिलेंगे, तब तक अभी को दीजिए इजाजत। नमस्कार और आदाब, टेक केयर, बाय।

ब्रह्मचारिणी रूप में माता जी दाहिने हाथ में जपकी माला लिए होती है और बाएं हाथ में कमंडल होता है उनके। मैया ब्रह्मचारिणी रूप में श्वेत वस्त्र यानी कि सफेद कपड़े धारण किए होती है।

माँ ब्रह्मचारिणी की कथा और उनका तप इतना प्रेरणादायक है कि इसे सुनते ही भक्तों के मन में भी तप और साधना करने की शक्ति उठती है। माता की भक्ति करने से जीवन में संयम, शक्ति, सात्विकता और

आत्मविश्वास बढ़ता है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा और उनका ये तप जो प्रेरणा देती है, इस प्रेरणा से हम अपने जीवन को बहुत ही महत्वपूर्ण बना सकते हैं और हम इस जीवन में शांति का आभास कर सकते हैं।

रात्रि द्वितीय रात्रि माँ ब्रह्मचारिणी के रूप के पूजन की रात्रि। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा कुछ यूं है। कथा के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी पर्वत राज हिमालय के घर में जन्मी थी। इसके बाद उन्होंने नारद जी से उपदेश लेकर भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। कठोर तपस्या के कारण ही उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। कहा जाता है कि देवी ने अपनी तपस्या के पहले 1000 वर्षों तक केवल फल फूल खाकर बिताए हैं, फिर 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया है, और इसके बाद उन्होंने तो खाना ही बंद कर दिया और उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, सारा खाना सारा पीना त्याग दिया और वे क्षीण बन गई। और इस तरह क्षीण बनने के बाद उनका नाम अपर्णा पड़ा।

माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप कठोर तपस्या, दृढ़ संकल्प और असीम धैर्य का प्रतीक है। उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए हजारों वर्षों तक निराहार बिना भोजन किए रहे ही कठिन तपस्या की। आज की भागदौड़ भरी इस मॉडर्न लाइफ में ब्रह्मचारिणी का यह तपस्या का भाव हमारे जीवन में, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने और मानसिक रूप से मजबूत बनने की सीख देता है। माँ ब्रह्मचारिणी ने जंगलों में कठिनाइयों और मौसम की मार के बावजूद अपना ध्यान भटकने नहीं दिया। बस हमारे इस जीवन में जहाँ सोशल मीडिया से हमारा ध्यान भटक जाता है, बस इतना हम ध्यान रखें कि हमें अपने उद्देश्य तक पहुँचना है, ध्यान भटकने नहीं देना है। जहाँ पर किसी भी फैसिलिटी का, किसी भी सुविधा का प्रावधान है, उसे बस सुविधा तक ही रख कर हम अपने गोल की तरफ, अपने उद्देश्य की तरफ जाएं। हजारों सालों तक ब्रह्मचारिणी ने तपस्या की, तब जाके उनको शिव जी को पति के रूप में पाने का सौभाग्य मिला। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी हमें बहुत लंबा कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तप करना पड़ता है, तो इस तप से घबराए नहीं। माँ ब्रह्मचारिणी का नाम लेकर आप अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते चलिए।

आज नवरात्रि की द्वितीय रात्रि है और द्वितीय रात्रि में हम मां ब्रह्मचारिणी के रूप का पूजन कर रहे हैं। देवताओं, राक्षसों और समाज के तानों या कठिन हालातों के आगे ब्रह्मचारिणी माता कभी नहीं टूटी। मां ब्रह्मचारिणी का भाव हमें सिखाता है कि आंतरिक शांति और संकल्प को कैसे मजबूत रखा जाए ताकि बाहरी परिस्थितियां हमें हिला न सकें। ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना मां ब्रह्मचारिणी की सच्ची पूजा और तपस्या है। तो आप जीवन में आगे बढ़ते रहिए, मां ब्रह्मचारिणी आप लोगों पर कृपा बरसाएं ताकि आपका उद्देश्य आपको प्राप्त हो जाए।

माँ ब्रह्मचारिणी का प्रमुख संदेश तप संयम धैर्य और दृढ़ संकल्प होता है। नवरात्रि की ये दूसरी रात्रि ब्रह्मचारिणी माँ पूजी जाती है और ब्रह्मचारिणी माता हमें सिखाती है कि जीवन में किसी भी बड़े लक्ष्य या आंतरिक शांति को पाने के लिए अनुशासन और आत्मसंयम बहुत जरूरी होता है। यह रात्रि मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पाकर नियंत्रण रखकर आंतरिक ऊर्जा को जागृत करने का संदेश देती है। माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी, जो यह सिखाती है कि सच्ची लगन और धैर्य से हर बाधा को पार किया जा सकता है। उनकी उपासना, माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना से अहंकार, लालच, आलस और स्वार्थ से मुक्ति मिलती है तथा मन में सकारात्मकता का संचार होता है। तो आज की रात्रि का पूजन आपके मन में सकारात्मकता का संचार करे, आंतरिक शक्ति का आगमन करे, यही हमारी प्रार्थना माता ब्रह्मचारिणी से है।

जय जयकार मैया की करते चलते हैं नवरात्रि की दूसरी रात्रि हम माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं जो तप त्याग और वैराग्य की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। माँ का यह रूप हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होना है। माँ ब्रह्मचारिणी की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हम ये विशेष कार्यक्रम नवरात्रि के अवसर पर आज समाप्त करते हैं। कल एक ऐसा ही कार्यक्रम आप सुन पाएंगे, कल एक विशेष कार्यक्रम इसी समय होगा। सो चलिए अंत में हम माता की निराली दया के लिए उनकी जय जयकार करते चलते हैं। जय माता दी, जय माता दी।

0: बस यहीं पर समाप्त होता है हमारा विशेष कार्यक्रम नवरात्रि के अवसर पर।
1: रेडियो मॉरिशस
2: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस,
2: रेडियो मॉरिशस,
3: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के सवाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
4: भोजपुरी, भोजपुरी तड़का,
0: तड़का। तो हर स्वागत करते हैं जब भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में, और हमने के रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन दोनों पर कार्यक्रम चला था। तो हर खातिर प्रस्तुत कर जाओ ही सब गीत जो अमंग बजा। आज एक एक घंटा के कार्यक्रम रही, अभी नवरात्रि चला था तो 9 से 10 बजे के लगभग तक हमने प्रस्तुत करीला जा नवरात्रि के अवसर पर एगो विशेष कार्यक्रम। और हम के भोजपुरी तड़का अभी से शुरू करते हैं जहाँ 11 बजे तक प्रस्तुत करब जा। चला हमने के कार्यक्रम में भाग लिया है जा, टेलीफोने करे खोज बजात 4021808 पर करिया जा, और जे मैसेज भेजे खोज बजात 5251705 पर मैसेज भेजे जा, और ये हमने के कार्यक्रम में अपन पसंद के गाना के फरमाइश करिया जा। चला शुरू शुरू में हमें रत्ना पदारत के आवाज़ में और री राजा बंधु जी के आवाज़ में सुने जाओ गाना जो अभी अभी हाल है ही में आल बा, अभी हाल ही में बनल बा, और तोहरा खूब गमट करावेला।

और हेला उषा सिद्धिला जी के गावल चनन बरसे गाना सुनी जा हमने गाना हमने वीना जी खातिर बजावत है जा कतो बोन से वीना जी गाना मंगले हवन अपन पति देव खातिर।

हमी के भोजपुरी तड़का और भोजपुरी तड़का में तोहर परमाइश के तड़का लगेल और एक सवाद तोहर तक पहुँचाए ला जा। अभी हमने देवी मैया के पूजा करे थे जा, नवरात्रि के पर्व मनावत है जा, और नवरात्रि के पर्व खातिर गायत्री जी मंगले हवन को दुर्गा मैया के गाना, और ये गाना सुनीतानंद कुछ गए हवन चला सुनी जा। नुवेल फ्रांसी गायत्री जी के तरफ से ये गाना उनका बेटा अजय खातिर, माइबू के मामी कल्याणी मोहन खातिर, भाभी शकुंतला खातिर लॉन्ग माउंटेन के, और इन नुवेल फ्रांस के संघतिया गीता बाई खातिर।

अजन मुर्गा मुर्गी के प्रेम कथा वा ये कथा हमने चला सुनिए जा सुदेश बोल चुची से ये कथा हमने सुना थे जा अनीता जी के पसीन पर प्रेम मायों से अनीता जी गाना मंगले हवाना पन पर थी सुदेश के नाम

तो चलो हमने के कार्यक्रम में देवी मैया की गुगी दौरी सुनी जा ये गाना हमने सुनत है सुनब जा बहल गौरी जी के गावल और बहल गौरी जी के गावल ये गीत हमने ललिता जी खातिर बचावत है जात खयोरे से ललिता कुशल जी मंगला हवनी गाना अपन बहन दो खातिर सुदेवी देवी ना ज्ञानी खातिर छोटी जी प्रभावती जी हरीश जी और आत्माराम जी खातिर

सुनीता ननकू जी के गावर एगो गाना हम तलावत है जा और ये गाना हम शांति जी के नाम करब जा शांति जी त्याहूस रहलन उनकर बगल से दागो चेक उनकर मराठी परिवार खातिर पदागो चेक उनकर भगीना ओम खातिर और उनकर भैया बलराम खातिर

0: भोजपुरी तड़का में चला हमने कल्याणी जी के कल्याणी जी के फरमाइश पर एक गाना चला हुआ जय दुर्गा मैया के गाना है कल्याणी जी बोला था उनकर बेटा युधिष के 50वां जन्मदिन बा और इस अवसर पर देवी मैया दुर्गा मैया उनकर बहुत आशीर्वाद दीहन ई प्रार्थना करत हवन कल्याणी जी देवी मैया से युधिष के पत्नी वर्षा उनकर बेटा भविष्य उनकर बेटी हर्षिनी उनकर माँ कल्याणी सब मिलके उनकर जन्मदिन के मंगल कामना देवत हवन जा और यही गाना देवी मैया पर आधारित गौरी ब्रदर्स की आवाज़ में हमने अमृता जी खातिर चलावत है जा पीतों से अमृता जी गाना मंगले हुआ सोनिया परी खातिर मीनाक्षी विशान और पूनम खातिर
1: हे दुर्गा म

अच्छा अब चला दुर्गा माता के और एगो गाना सुनी जा हरे गो परिवार हरे गो माता पिता पर नलिका लुक पर देवी मैया के आशीर्वाद रही यही कामना करत हवन जा विनीता जी भी बबासन से यही कामना करत हवन कि उनकर बेटा बेटी लोग पर देवी मैया अपन ममता के आंचल रख ले रही उनकर लैका

चला आगे बढ़े जा और हमने सुनी जा संभाती दुमन जी के गावले को गाना। ये गाना हमने बजाओ था जा श्रद्धा जी के पसंद पर। श्रद्धा जी दादी बा के खातिर गाना मंगले हवन और अपन फुफू वीरमती जी के नाम करत हवन ये गाना।

रात के 11 बजे में अभी थोड़ा सा मिनट बाकी बा अभी पाँच मिनट बाकी बा और यह हमी के कार्यक्रम भोजपुरी तड़का है जहाँ पर समाप्त हुआ था तो हर साथ मिलल बहुत प्यार से साथ दिलाए कर खातिर बहुत बहुत धन्यवाद ये कार्यक्रम खड़ा करे में तोहर हाथ रहल ई खातिर बहुत बहुत धन्यवाद तो 11 बजे हमी के कार्यक्रम समाप्त हो जाए तो लोग के नाम करब जा आज के सुनहरे पल कार्यक्रम नीलमणि की प्रस्तुति में तो आवत हला फिर मिलब जा शुभ रात्रि नमस्ते बाकी नमस्ते बोले से आगे बता देना जा तो लोग के हमने मीठा मीठा बोल गाना तलक के सुनाओ अब जा स्वीटी रामबरन की आवाज़ में और ही बात पर ध्यान दिया जा कि मीठा बोलला से तो लोग दुनिया सक बजा जीत जाए मीठा मीठा बोलिया जा आवतला फिर मिलब जा शुभरात्रि।

रात की खामोशी में जब दुनिया धीरे धीरे आराम करने लगती है तब कुछ यादें जाग उठती है। कभी किसी पुराने दोस्त की याद, कभी बचपन की गलियां, तो कभी वो लम्हे जो वक्त के साथ पीछे रह गए। नमस्कार, मैं हूं नलमणि और आप सुन रहे हैं सुनहरे पल। चलिए आज की रात को बनाते हैं यादों के नाम 60s, 70s और 80s के उन सदाबहार नगमों के साथ जो दिल के बहुत करीब है।

जरा सोचिए, जब जिंदगी की सबसे बड़ी फिक्र स्कूल का होमवर्क और अगले दिन का इम्तिहान हुआ करता था, ना मोबाइल की चिंता, ना दुनिया भर की भाग दौड़, बस परिवार के साथ बैठना, रेडियो पर गाना सुनना और छोटी छोटी खुशियों में जीना। आज वो दिन लौट तो नहीं सकते हैं, लेकिन उनकी याद जरूर ताजा कर सकते हैं। तो आप जरा बताइए, आपको अपने बचपन की कौन सी बात सबसे ज्यादा याद आती है? सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

एक गाना हजार यादें, कहते हैं कि तस्वीरें आंखों को यादें दिखाती है, लेकिन गाने सीधा दिल तक पहुंचते हैं। कभी एक धुन सुनते ही पुराना घर याद आ जाता है, तो कभी किसी अपने का चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? चलिए एक ऐसा ही नगमा सुनते हैं जो शायद आपको भी किसी खूबसूरत दौर में ले जाए।

वक्त की सबसे बड़ी बात ये है कि वो कभी रुकती नहीं है। कल जो पल हमारे सामने था आज वो याद बन चुका है, लेकिन कुछ लम्हे ना ऐसे होते हैं जो सालों बाद भी दिल में बिल्कुल ताजा रहते हैं। किसी की हंसी, किसी की बात या फिर एक शाम जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। आज की रात उन्हीं लम्हों के नाम है और उन्हीं यादों के साथ एक और सदाबहार गीत आपके नाम।

चतुर नार अम चोड़े जी एक चतुर नार अम पकड़।

0: घोड़ा चतुर एक पैर है ना, या घोड़ा बोला या चतुर बोला का?
1: एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, अपने ही जाल में फंसत जात, हम मरत जात।

तो जनाब सोमवार की इस रात में हमने यादों के गलियों में खूब सैर की। कुछ यादें हमें हंसाती है, कुछ आंखों को नम कर देती है और कुछ बस चुपचाप दिल में बसी रहती है। लेकिन हर याद हमें ये जरूर सिखाती है कि जिंदगी के छोटे छोटे पल कितने अनमोल होते हैं। मैं हूं नलमनी, आप सुन रहे थे सुनहरे पल। अपना ख्याल रखिए और इन मीठी यादों को अपने दिल में संभाल कर रखिए। शुभ रात्रि।

0: मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस
0: रेडियो मॉरिशस
1: रेडियो मॉरिशस।

0: ही आंखों में बातों ही बातों में तूने चुराया जिया।
1: जान तुम्हें तो लगता है तुम्हारे बॉयफ्रेंड की कोई वैल्यू ही नहीं है। 3 साल से इंपोर्टेड कार्स का बिजनेस कर रहा हूँ, कुछ तो वैल्यू मेरी भी होगी। नहीं
0: अब तुम कहोगे तुम मेरे लिए चांद तारे तोड़ कर लाओगे, ऊंचे से ऊंचे पहाड़ कूद जाओगे, यहाँ तक कि मेरे लिए अपनी जान भी दोगे।

0: BBC Radio, 24 hours a day.
1: पैसा, अरे मनी मनी, लगता है अपना भी टाइम फाइन

0: MBC रेडियो योर म्यूजिक कंपेनियन।
1: आज इस मुबारक मौके पर मैं आप लोगों को मेरी और कामिनी की दास्तान सुनाना चाहता हूं, मोहब्बत की दास्तान।